ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 अगस्त सन 2026 सवेरे के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक UPI को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने महज 3 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 3रे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक महोत्सव में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच नजदीकी सहयोग से भारत का फिनटेक क्षेत्र देश के आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के फिनटेक क्षेत्र में विकास के अगले चरण में AI, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन और विश्वसनीय डिजिटल नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज

0: फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस निर्णय पर संसद निर्णय करती है। उन्होंने कहा कि अमरीका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच दिल्ली में कल रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीटिंग वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

वसुंधरा भारत भूमि, पावन इसका धाम, रण में वीर, मन में शौर्य, जग में ऊंचा नाम। हमारी यह भारत वसुंधरा केवल भूमि नहीं, बल्कि शौर्य, संस्कृति और महानता का प्रतीक है। इसलिए मैं भारत भूमि को बार बार नमन करती हूँ।

सुबह की शांत हवा में जब पहला प्रकाश धरती पर उतरता है, उसी समय प्रभु का स्मरण मन को एक अद्भुत शांति से भर देता है। सुबह का ये भक्तिमय समय हमें भीतर की उलझनों से मुक्त करता है और जीवन में नई आशा का दीप जलाता है।

शिव जो संपूर्ण ब्रह्मांड की मौन ध्वनि है और राम जो धर्म मर्यादा और करुणा की जीवंत मूर्ति है, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। एक है शिव जो संहार में भी सृजन ढूंढ लेते हैं और एक है राम जो जीवन में आदर्शों को जी लेते हैं। दोनों को ही मेरा नमन है।

जब हमारा मन श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता है, तब जगत भी हमें कृष्ण भक्ति में रंगा हुआ प्रतीत होता है। चारों ओर भक्ति रस का आनंद होता है। सृष्टि का प्रत्येक कण मानो माधुर्य और प्रेम से भर उठता है। चेतना कृष्ण में लीन होती है। हर कदम, हर श्वास, हर धड़कन श्याम के सौंदर्य में रंग जाती है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कुछ अनमोल विचार आज के चिंतन में।
1: जीवन का पथ सदैव सरल नहीं होता। कभी ये पुष्पों से आच्छादित दिखाई देता है, तो कभी संघर्षों, प्रतीक्षाओं और अनुत्तरित प्रश्नों से भरा हुआ। ऐसे क्षणों में मनुष्य का मन किसी थके हुए पथिक की भांति ठहर कर आकाश की ओर देखता है। वो ईश्वर से पूछता है, मैंने जो प्रार्थना की थी उसका उत्तर कहाँ है? मैंने जो दुआ मांगी थी वो कब पूरी होगी? लेकिन अनेकों बार आकाश मौन रहता है, कोई उत्तर सुनाई नहीं देता, कोई संकेत स्पष्ट नहीं होता। और तब मन के भीतर संशय का एक सूक्ष्म बीज अंकुरित होने लगता है। लेकिन जीवन का सत्य यह है कि ईश्वर का मौन उसकी अनुपस्थिति का नहीं, उसकी गहन उपस्थिति का प्रमाण होता है। वो हर बार शब्दों में उत्तर नहीं देता, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल हमारे प्रश्नों का समाधान करना नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व का परिष्कार करना होता है। वो हमें केवल मंजिल नहीं देना चाहता, वो हमें उस मंजिल तक पहुँचाने में योग्य भी बनाना चाहता है। समय के विस्तृत परिप्रेक्ष्य में जब हम अपने जीवन को देखते हैं, तो अनुभव होता है कि जिन घटनाओं को हम कभी दुर्भाग्य समझते थे, वो वास्तव में किसी नवीन संभावना के द्वार थे। जिस राह के बंद हो जाने पर हमारी आंखें नम हुई थी, वही राह हमें किसी श्रेष्ठतर पथ की ओर मोड़ रही थी। जिस अभिलाषा के अधूरे रह जाने पर हमने शिकायत की थी, उसी ने हमें आत्मबोध, धैर्य और परिपक्वता का अमूल्य उपहार दिया। शायद इसीलिए ईश्वर हमारी हर इच्छा पूरी नहीं करता। वो जानता है कि हमारी दृष्टि वर्तमान तक सीमित है, जबकि उसकी दृष्टि काल के उस पार तक जाती है जहां हम अभी देख भी नहीं सकते। ऐसे ही क्षणों में गोस्वामी तुलसीदास जी की ये वाणी हृदय में विश्वास का दीप प्रज्वलित कर देती है। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होई सोई, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होई। ये दोहा हमें सिखाता है विश्वास का अर्थ सब कुछ जान लेना नहीं है। विश्वास का अर्थ है अंधकार के बीच भी ये अनुभूति बनाए रखना कि कोई अदृश्य करुणामय शक्ति हमारा मार्गदर्शन कर रही है। जब जीवन की पतवार ईश्वर को सौंप दी जाती है, तब भय का स्थान भरोसा ले लेता है और व्याकुलता का स्थान शांति। ईश्वर की कृपा का स्वरूप भी अत्यंत विलक्षण है। वो कभी भी किसी भी असफलता के रूप में हमें सावधान करता है, कभी किसी विलंब के माध्यम से धैर्य सिखाता है, तो कभी किसी अप्रत्याशित मोड़ के द्वारा जीवन की नई दिशा प्रशस्त करता है। उसकी रहनुमाई प्रायः शब्दों में नहीं बल्कि अनुभवों में व्यक्त होती है। वो उत्तर कम देता है, संकेत अधिक, आदेश कम, प्रेरणा अधिक देता है। इसलिए जब जीवन में सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार न घटित हो रहा हो, तो निराश होने के स्थान पर ठहर कर ये विचार करें कि संभव है ईश्वर आपको किसी और दिशा में ले जा रहा हो। संभव है कि जो मार्ग आज कठिन प्रतीत हो रहा है, वो कल आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि का आधार बने। वास्तव में ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान उत्तर नहीं, दिशा है। उत्तर केवल एक प्रश्न का अंत करता है, जबकि दिशा संपूर्ण जीवन को अर्थ प्रदान करती है। उत्तर क्षणिक संतोष दे सकता है, लेकिन दिशा जीवन भर का आलोक बन जाती है। और शायद इसी भाव को ये खूबसूरत शेर अत्यंत सादगी और गहराई के साथ अभिव्यक्त करता है। मुसाफिरों को तो मंजिल का खौफ होता है, हमें तो राह के पत्थर भी अच्छे लगते हैं। क्योंकि जिसे ईश्वर की रहनुमाई पर विश्वास हो जाता है, वो केवल मंजिल से प्रेम नहीं करता, बल्कि उस पथ का भी सम्मान करता है जो उसे मंजिल तक ले जा रहा है। उसके लिए राह के पत्थर भी बाधाएं नहीं रहते, वो तो अनुभव के वो मील के पत्थर बन जाते हैं जो हर कदम पर उसे और भी अधिक परिपक्व, सुदृढ़ और अधिक प्रकाशमान बनाते हैं। जीवन हमें यही सिखाता है कि ईश्वर कभी हमारी प्रार्थनाओं से विमुख नहीं होता। वो हमारी प्रत्येक पुकार को सुनता है, प्रत्येक आंसू को जानता है और प्रत्येक व्यथा को समझता है। लेकिन उसकी करुणा का विस्तार

हमारी कल्पना से कहीं अधिक व्यापक होता है, इसलिए कई बार वो हमें वो नहीं देता जो हम मांगते हैं, बल्कि वो देता है जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है। कभी कभी ईश्वर उत्तर नहीं देता, क्योंकि वो हमें भटकाव से बचाकर हमारी नियति की ओर ले जा रहा होता है। वो उत्तर नहीं देता, दिशा देता है, और जब दिशा सही मिल जाए तब जीवन स्वयं सबसे सुंदर बन जाता है, और सुंदर ही उत्तर बन जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कुछ अनमोल विचार आज के चिंतन में। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज आप जानेंगे बरसात के पानी द्वारा जल संरक्षण कैसे किया जाए, इस विषय पर कुछ जानकारी।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, हम आज के बरसात का दिन चली रहा और इन्हीं बरसात मचे तो अपना कसो इन्हीं बरसात को पानी इकट्ठो करनु ये जाननू भी जरूरी छे। अगर छोटा छोटा अगर उपाय करी लेवान तो अपन इन्हें बरसात का पानी को भी उपयोग करी सकन। हम देखी राज के अपना गांव न में भी पक्का घर बनी गया और छे तो वहाँ पर भी बोरिंग छे, वहाँ पर भी छे तो पानी खूब लगे तो छत न छे, उनको पानी अपन इकट्ठो करी सकन और ओखा भी अपनी खेती बाड़ी में अपना घर का काम को उपयोग करी सकन। अब जैसे अपन देख रहे हैं कि दिन दिन छे तो पानी की खूब कम पड़ी, रोज पानी जितो हम वापरा ओका से ज़्यादा हमको पानी लगज और इना पानी का उपयोग कर लेना अपना का जरूरी छे कि हम कुछ ऐसा उपाय करा जेका से बरसात को पानी अपना का पूरो साल भरी पूरा अपनी खेती बाड़ी में अपना रोज का काम काज में एका लेना। सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जो अपना घर की छत छे वहाँ से अपन पानी इकट्ठो करी सकें, वहाँ से पानी छे तो एक पाइप का द्वारा नीचे गिरे छे तो अपन इकट्ठो करी लेवा। एका लेना छे तो अपन पानी को जो टैंक छे वो सबसे पहला जो नीचे अपन ने बनाए वो खब फिल्टर करना का लेना, वो खब छानना का लेना, रेत बालू रेती पत्थर एक ही परत न बढ़ाई लेवा। एका से काय होएगा कि जो कचरो आई रोज वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। एका साथ एक जमीन का अंदर छे तो टंकी बनाई लेवा और पानी की टंकी में छे तो ये पानी इकट्ठो होतो रहेगा। जैसे अपना आंगन छे या बगीचो छे वहाँ पर एक जमीन का अंदर ऐसी टंकी बनाई लेनु चाहिए और इन्हीं टंकी में छे तो जो अपनो बारिश को पानी है रोज बरसात को साफ सुथरो ओखा पण इकट्ठो करी सकान, एका पण भरी कने रखी सकान। अपना रोज का काम जैसा कि कपड़ा धोनू छे, बर्तन मांजनू छे और दूसरा भी जेमा जैसा बगीचा में पानी देनू या पानी को कहीं उपयोग ही रोज तो अपन इना पानी को उपयोग करी सकान। और छे तो जो अपन ने गड्ढो बनाई रखे बरसात का पानी को इकट्ठो करना का लेना तो ओखा छे तो एक ओमा जो जल को स्तर छे वो बढ़ी जाएगा। साथ छे तो अपना घर में कभी बोरिंग होए है नी ट्यूबवेल अपन ने खोदी रखे तो वहाँ पर भी एको जल को स्तर एक बढ़ी जाए। घर का जो बाहर खुलो गड्ढो होए वहाँ पर छे तो इस तरह की अपन पत्थर बालू रेती ये सब नाखी का ना ओख भरी देवा जेका से उना गड्ढा में पानी इकट्ठो होतो रहे। छत को जो पानी आवेगा इना गड्ढा में अपन छोड़ी देवेंगा तो यो गड्ढो भरे जाएगा। साथ ही एक सोखता गड्ढो भी बनाना चाहिए। ये मछे तो अपना जमीन में जो खुली जगह छे वहाँ पर छे तो इना गड्ढा का अपन बनाई देवा न ओमा भी कंकड़ पत्थर नाखी देवा तो वहाँ पर भी पानी इकट्ठो होतो रहेगा। इस तरह जैसो कि बरसात होए ना पानी असोज भई जाए और छे तो जमीन बाद में सूखी भी जाए तो एकासी अपना का अपना बोरिंग छे कुआ छे इनमें पानी की किल्लत होए पानी की कमी भी जाए तो पानी की कमी नहीं होए एका लेना अपना का यो सोखता गड्ढो भी बनाना चाहिए। अपना किसान भाई बहनों के पास में खेत भी छे, खेत का पास में तालाब या छे तो असो बड़ो सो गड्ढो करनू चाहिए जेमा छे तो पानी इकट्ठो रहे। अगर तालाब बनी लो तो बहुत अच्छी बात है कि एम बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी इकट्ठो हो जाएगा बरसात को और अपनी खेती बाड़ी का काम में भी आवेगा। तो हमारा सभी भाई बहन इन्हीं बात को ध्यान रखेगा और छे तो इना बरसात का पानी में छे तो अपनी खेती

0: वाड़ी सिंचाई ये सब करी सकेगा। आज हमारा किसान भाई बहनों से योज कहनू छे।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। जल संरक्षण बरसात के पानी द्वारा कैसे किया जाए, इस विषय पर जानकारी दी जा रही थी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, सवेरे के 6:40 होने वाले हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग। कलाकार हैं वाणी जयराम।

जनकपुर यात्रा के अंतिम चरण में ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम तथा लक्ष्मण गंगा तट पर पहुंचे, जहां ऋषि ने उन्हें गंगावतरण की कथा सुनाई। जनकपुर पहुंच राजा जनक की नगरी की बनावट और उसकी शोभा देख दोनों भाई अत्यंत प्रसन्न हुए। नगरी में अनेक बावलियां, कुएं, तालाब, उसमें खिले रंग रंग के कमल, पक्षियों का कलरव, वाटिका में फूलों पर गुंजन करते भंवरे और नगर के चारों ओर फूल पत्तों से लदे वृक्षों की मनोहारी सुषमा का वर्णन शब्दों से परे है। नगर के बाजार की अपनी अलग छवि है। सुंदर चौराहे और गलियां जैसे सदा सुगंध से सींची रहती हैं। राजा जनक के निवास स्थान की भव्यता और ऐश्वर्य देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग। कलाकार थे वाणी जयराम। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सुनिए कार्यक्रम विवरण में। सवेरे 7:20 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल। 8:30 सुनिएगा फिल्म संगीत। लोक संगीत का समय रहेगा सवेरे 9:00 का और शाम 6:45 का। कलाकार होंगे तारा सिंह डोडवे और साथी। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवाएंगे वैशाली बकोरे और साथियों को। समय रहेगा सवेरे 9:15 का और शाम 6:30 का।

सवेरे 9:30 बजे शास्त्रीय संगीत में मंगेश जगताप का संतूर वादन सुनिएगा, राग होगा नट भैरव। सवेरे 10:05 से सवेरे 11 बजे तक आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता अगर हमसे जुड़ना चाहें और हमसे बात करके अपनी पसंद का गीत सुनना चाहें तो हमारे फ़ोन नंबर नोट करें 2710223 और 2710224। इंदौर के बाहर के एक श्रोता अगर फ़ोन करते हैं तो STD कोड 0731 लगाना बिल्कुल ना भूलें। समय याद रखिएगा सवेरे 10:05 से 11 बजे तक फ़ोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन में। शाम 5 बजे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी होगा। इस कार्यक्रम में आज का क्रम हेलो फ्रेंड्स सुनवाया जाएगा। इसमें भी हमारे युवा साथी फ़ोन करके अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम का समय होगा शाम 5 बजे युवावाणी के अंतर्गत। शाम 6 बजे सुनिएगा विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। आरंभिक चर्चा होगी प्रतिभा किरण योजना पर। साथ ही सुनवाएंगे एक भेंटवार्ता डॉक्टर डेविस जैन, चेयरमैन एंड चांसलर PIMR इंदौर डीम्ड यूनिवर्सिटी से। 7:30 बजे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा।

रात 8 बजे सुनिएगा इस सप्ताह संसद में, इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर भोपाल से सुर्खियों में रिले होगा। 8:30 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत। 9:15 पर चित्रगीत कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। 9:30 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती रिले होगा और यहीं से 10:00 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले होगा। तो श्रोताओं, एक बार फिर आपको याद दिला दें कि सवेरे 10:05 से 11:00 बजे तक आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। साथ ही शाम 5 बजे युवावाणी में हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम का प्रसारण होगा। हमारे

दोनों कार्यक्रमों का समय याद रखिए, और इन दोनों कार्यक्रमों में अगर आप हमें फोन करना चाहते हैं तो फोन नंबर 2710223 और 2710224, इंदौर का एसटीडी कोड 0731। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण में। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आकाशवाणी इंदौर आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुन सकते हैं, साथ ही गूगल पर आकाशवाणी इंदौर लाइव सर्च करके भी इसे सुन सकते हैं। सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे, पहले संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कम्प्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधि मंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आपसी साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में प्रगति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। श्री नेतन्याहू ने कल श्री मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में ये बात कही। बृहस्पतिवार को टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत इजरायल विशेष रणनीतिक साझेदारी के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्र स्मारक का दौरा करेंगे। वे शहीद स्तंभ पर स्वतंत्रता

0: ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति कल श्री विजयपुरम के फ्लैग प्वाइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी तेज बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है। इधर दिल्ली में कल से ही लगातार बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा,
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात।

0: और
1: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
0: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या
0: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
2: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: पर सुनेंगे कैसे?
0: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: मालवा की शान।
1: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
3: हाँ हाँ क्यों नहीं,
2: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान आकाशवाणी

0: अरे दीदी धीरे धीरे।
1: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खरगोन जिले के कमलगोण को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से किया सम्मानित। भोपाल में आज होगी ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक, सांची का भी करेंगे भ्रमण। और प्रदेश के पन्ना, सतना और रीवा में आज भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस समारोह में 3000 से ज्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, डायरेक्टर गोल्ड मेडल और अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करेंगे। वे आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित एआई आधारित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का वर्चुअली उद्घाटन भी करेंगे। इस सुविधा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और उन्नत कंप्यूटिंग के क्षेत्र में संस्थान की शोध क्षमता बढ़ेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर खरगोन जिले के बुनकर कमल गौड़ को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री गौड़ को महेश्वरी साड़ी बुनाई में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कमल गौड़ को प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान महेश्वरी साड़ी की विशिष्ट पहचान और प्रदेश की समृद्ध हथकरघा परंपरा का गौरव है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार महेश्वर को टेक्सटाइल टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। भोपाल में आज ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक होगी, जिसमें सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक के अंत में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा को अपनाया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों के लिए दोपहर के भोजन का आयोजन करेंगे। बैठक और भोजन के बाद विदेशी मंत्री और प्रतिनिधिमंडल सांची के लिए रवाना होंगे, जहां वे बुद्ध जम्बूद्वीप और विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप का भ्रमण करेंगे। वहीं कल केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका के संस्कृति मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल छिंदवाड़ा से जन विश्वास अभियान की शुरुआत की। यह अभियान जनवरी 2027 तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। अभियान के तहत हर शुक्रवार अधिकारी और प्रशासनिक अमला जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल छिंदवाड़ा में अभियान के तहत आयोजित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया को जनसंचार का प्रभावी माध्यम बताते हुए

0: कंटेंट क्रिएटर्स से सकारात्मक और तथ्यपरक जानकारी लोगों तक पहुंचाने की अपील की।
1: छिंदवाड़ा में हमने इस जन विश्वास अभियान का शुभारंभ किया और अलग अलग प्रकार से एक जिले के अंदर सब प्रकार की चेतना जागृत करते हुए हमारी जन सुविधाएं, विकास की अवधारणाएं, जन भागीदारी और भविष्य का रोडमैप समान रूप से सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साथ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साथ मिलकर चले। इस अवसर पर जब हमने अलग अलग इसके आयाम भी तय किए, एक तरफ हम पुरानी पेंडेंसी शिकायतों की खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी शासन की योजनाओं के जो टारगेट है उस टारगेट की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं।
0: भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कल देर शाम उज्जैन में करीब 18,66,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले न्यायाधीश अतिथि गृह का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहे। करीब 2 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला यह अतिथि गृह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और इसमें भूतल के साथ प्रथम तल भी होगा। अतिथि गृह के निर्माण से विभिन्न न्यायालयों और न्यायिक संस्थानों से उज्जैन आने वाले न्यायाधीशों को बेहतर आवासीय सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल रात उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल और नंदी जी की पूजा अर्चना की। श्रावण मास के दौरान डॉ. यादव ने भगवान महाकाल की शयन आरती में भी हिस्सा लिया और भक्ति में लीन होकर झांझ बजाई। इस दौरान उन्होंने मंदिर में आए श्रद्धालुओं से बातचीत की और दर्शन व्यवस्था की जानकारी ली। मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष और उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री का दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कल से 17 अगस्त तक जन भागीदारी के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू होगा। अभियान के तहत तिरंगा यात्रा, प्रदर्शनी, रंगोली, प्रश्नोत्तरी, साइकिल रैली और तिरंगा एंथम सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेशवासियों से तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने की अपील की गई है। सोशल मीडिया के जरिए अभियान को जन आंदोलन बनाने का भी आह्वान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश की जेलों में बंद 124 पात्र बंदियों को सजा में छूट और विशेष परिहार का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित पात्रता के आधार पर 118 आजीवन कारावास की सजा पाए बंदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। इसके अलावा 6 अन्य पात्र बंदियों को विशेष परिहार का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र बंदियों की समय पूर्व रिहाई से दूसरे बंदियों को भी अच्छा आचरण करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रदेश के वन विभाग ने शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार वर्ष 2023-24 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। वन रक्षा, वन संवर्धन और वन्य जीव सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों के प्रस्ताव 21 सितंबर 2026 तक लिए जाएंगे। संस्थागत श्रेणी में 1,00,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र, जबकि पात्र शासकीय और अशासकीय व्यक्तियों को 50,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। वन्य प्राणियों की सुरक्षा में साहस और सूझबूझ का प्रदर्शन करने वालों को भी 50,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। उज्जैन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कल कार्रवाई करते हुए 2 प्रतिष्ठानों से 8,00,000 रुपए से अधिक कीमत के 1,272 लीटर घी जब्त किया है। अधिकारियों ने दोनों जगहों से घी के नमूने लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब बात मौसम की। प्रदेश के पन्ना, सतना और रीवा जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान 4 इंच तक बारिश हो सकती है, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत 52 जिलों में बूंदाबांदी के आसार हैं। प्रदेश में अब तक औसतन 16.8 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 20% कम है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने वाली सागर जिले की खिलाड़ी यामिनी मौर्य का कल अपने गृह नगर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। यामिनी के रेलवे स्टेशन पहुंचते ही भारत माता की जय और उनके नाम के नारों से पूरा स्टेशन परिसर गूंज उठा। परिजनों, नरियावली विधायक प्रदीप लारिया और खेल प्रेमियों ने यामिनी का पुष्पगुच्छ, माला और शॉल पहनाकर स्वागत किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दमोह के पथरिया विधानसभा

क्षेत्र के 4 शासकीय स्कूलों में कृषि संकाय शुरू करने की स्वीकृति मिली है। इससे विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र में कृषि शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। मंडला में विश्व स्तनपान सप्ताह का आंगनवाड़ी केंद्रों पर समापन हुआ। सप्ताह भर जागरूकता रैलियों, प्रभात फेरियों और सामुदायिक कार्यक्रमों के जरिए स्तनपान के महत्व की जानकारी दी गई। श्योपुर में कलेक्टर शीला दाहिमा ने औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर अधिकारियों को एमएसएमई प्रोत्साहन योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिला स्तरीय पर्यटन क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। छतरपुर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आवारा मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजने का अभियान चलाया जा रहा है। अशोकनगर में विद्युत वितरण कंपनी के संपर्क अभियान के तहत 7 स्थानों पर शिविर लगाए गए। शिविरों में मिली 387 शिकायतों में से 358 का मौके पर निराकरण किया गया। नर्मदापुरम में वार्षिक पर्यटन क्विज बूझो जानो फिर देखो अपना प्रदेश 2026 की जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। खंडवा के सिविल लाइन्स स्थित नमो वन में आज 25,000 पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने लोकसभा में सिंहस्थ 2028 को लेकर ओंकारेश्वर की रेल सुविधाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने नए ओंकारेश्वर रेलवे स्टेशन का निर्माण जल्द पूरा करने और नई रेल सेवाएं शुरू करने की मांग की। और इंदौर में कल 13वीं पश्चिम क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर होगा। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आकाशवाणी इंदौर आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुन सकते हैं, साथ ही गूगल पर आकाशवाणी इंदौर लाइव सर्च करके भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, अब वक्त है आपको सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल सुनवाने का, तो आइए सुनते हैं सुनहरे पल कार्यक्रम।

सुनहरे पल कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। तो श्रोताओं, आज के इस खूबसूरत सुबह की शुरुआत इस खूबसूरत गीत के साथ। लीजिए सुनिए सबसे पहले तुलसी फिल्म का गीत, जिसे गाया है हेमलता और जसपाल सिंह ने, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

0: मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में अभी आपने सुना राजकुमार फिल्म का गीत। गीतकार थे हसरत जयपुरी, संगीत शंकर जयकिशन का।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नज़दीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में वारिस फिल्म का गीत। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत राहुल देव बर्मन का।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया हुआ गीत, जिसे लिखा है SH बिहारी ने। आवाज आशा भोसले की, फिल्म का नाम ये रात फिर न आएगी।

मेरे सनम फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, आवाज मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की थी। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर। और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम जबक, गीत रचना प्रेम धवन की, संगीत चित्रगुप्त का।

जबक फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ लता मंगेशकर की थी। और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम स्वीकार किया मैंने, गीतकार निदा फाजली, संगीत उषा खन्ना का।

0: लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही आज का सुनहरे पल कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दे, नमस्कार।
1: सुनहरे पल।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। समाचार।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेनदेन निःशुल्क रहेगा। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सेनेट में पारित, और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर विषयक शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमता को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक हैं। श्रीवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
7: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
5: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट।
8: यूपीआई के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है।

0: जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेन देन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी UPI उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमरीका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
2: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
3: रेगुलेट द फ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स।
1: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है।
2: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
1: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है।

0: समाचार कक्ष से अमीषा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
2: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
3: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथनामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
4: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान क्यूआर कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर ओपीडी रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के ओपीडी में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार पल।
5: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, एनटीए के ही 3 विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, सीबीआई का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, एनटीए के 3 विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, एनटीए के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से सीबीआई ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी सीबीआई जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली एनसीआर में कल हुई घनघोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है, राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर भारी जल भराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मानसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है, देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियमन संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी, एफसीआरए पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम, राजस्थान पत्रिका में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे।

श्रोताओं, भारतीय सिनेमा में कश्मीर का महत्व सिर्फ एक खूबसूरत शूटिंग लोकेशन से कहीं बढ़कर है। यह हिंदी फिल्मों की कहानी, रोमांस और राजनीतिक परिदृश्य का एक अहम हिस्सा रहा है। कश्मीर का नाम लेते ही आंखों के सामने आ जाती है बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, डल झील का शांत पानी, चिनार के लाल होते पत्ते और वादियों में गूंजती कोई प्रेम की मधुर धुन। कहते हैं, कश्मीर को सिर्फ देखा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। तो आइए आज गीतों के साथ चलते हैं उसी खूबसूरत कश्मीर की वादियों में, जहाँ प्रकृति भी जैसे कोई गीत गुनगुना रही है इतनी तारीफ के साथ।

श्रोताओं, आज़ादी के बाद के दशकों में राज कपूर की बरसात से लेकर शम्मी कपूर की कश्मीर की कली जैसी फिल्मों ने कश्मीर को धरती पर स्वर्ग और प्रेम के पर्याय के रूप में प्रस्तुत किया। डल झील, शिकारा और गुलमर्ग की बर्फ से ढकी पहाड़ियों ने भारतीय दर्शकों के दिलों में एक रोमांटिक जगह बनाई। तो वहीं 1960 के दशक में मणिरत्नम की रोजा और विशाल भारद्वाज की हैदर जैसी फिल्मों ने कश्मीर के राजनीतिक हालातों को और उग्रवाद को और स्थानीय संघर्ष को बखूबी पर्दे पर उतारा था। वहीं शिकारा और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों ने कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और दर्द को मुख्य धारा की कहानियों में प्रमुखता से जगह दी थी। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर ऐसी कई घटनाओं का साक्षी रहा है। आज बात करते हैं सबसे पहले कश्मीर की कली, जो कि 1964 की फिल्म थी। शक्ति सामंता द्वारा निर्देशित फिल्म थी। इस फिल्म ने बॉलीवुड में कश्मीर के सौंदर्य को पर्दे पर उतारने का एक नया आयाम और मानक स्थापित किया। डल झील के बीच शिकारे पर गाए गए शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर के ये गाने आज भी रोमांस के पर्याय माने जाते हैं, और माना जाता है कि इन फिल्मों के गानों के रिकॉर्डिंग और फिल्मांकन के दौरान मोहम्मद रफ़ी और संगीतकार ओपी नैयर के बीच की जुगलबंदी ने इन धुनों को अमर बना दिया था।

श्रोताओं, 90 के दशक से पहले कश्मीर जन्नत माना जाता था, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का सबसे पसंदीदा स्थल हुआ करता था। कश्मीर की हसीन वादियाँ हर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता को अपनी तरफ खींच लेती थी। बॉबी, कश्मीर की कली, आपकी कसम, कभी कभी, रोटी, बेताब और जंगली जैसी सुपरहिट फिल्में 1990 से पहले कश्मीर में शूट हुई थी। श्रोताओं, अब बात करते हैं 1965 की ऐसी ही एक फिल्म की जिसका नाम है जब जब फूल खिले। शशि कपूर ने इस फिल्म में एक कश्मीरी युवा की भूमिका निभाई थी। श्रीनगर की नहरों और पानी के कुमुदनी यानी वाटर लिली वाले इलाकों और पुराने पुलों के बीच फिल्माए गए इन गानों ने कश्मीरी जनजीवन और संस्कृति की खूबसूरती को देश के कोने कोने में पहुंचाया था। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में और इन गानों के पीछे छिपी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक यात्रा की गहराई को जानने का ये सबसे सशक्त उदाहरण था। आइए उसी फिल्म का खूबसूरत गीत आप सभी के लिए।

यश चोपड़ा साहब को कश्मीर से बेपनाह मोहब्बत थी और उन्होंने अपनी फिल्मों के कुछ गाने ऐसे ही बेहद रोमांटिक गाने सर्दियों के मौसम में और बर्फ के बीच फिल्माए गए थे। ऐसा ही एक गाना था कभी कभी फिल्म का। इस गाने में अमिताभ बच्चन और राखी चिनार के पेड़ों से गिरते लाल पत्तों और सफ़ेद बर्फ के बीच नजर आते हैं। शूटिंग के दौरान पेड़ों से गिरते चिनार के पत्तों का सटीक शॉट लेने के लिए यूनिट के लोग पेड़ों को हिलाते थे ताकि पत्तों की बारिश हो सके। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत ने कश्मीर को इश्क की सरजमी के रूप में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। जी हाँ, यही अमर गीत जो फिल्म कभी कभी से आपके बीच में अब आपको सुनवा रहे हैं।

श्रोताओं, कश्मीर घाटी में कई पुरानी फिल्में फिल्माई गई है। उसकी सुंदरता असीम और अथाह है, जो किसी को भी मोहित कर सकती है। कई निर्देशक जो पहले बर्फ से ढके पहाड़ों में रोमांटिक दृश्य फिल्माने के लिए विदेशों में जाया करते थे, कश्मीर के बाद उनकी प्रायोरिटी में कश्मीर पहले नंबर पर आने लगा था। दोस्तों, आपको आराधना फिल्म का एक सुपरहिट गाना तो याद होगा ही। जी हाँ, ये गीत था कोरा कागज था ये मन मेरा। जी हाँ दोस्तों, ये जो गाना था, इसकी मुख्य शूटिंग श्रीनगर के प्रसिद्ध मुगल गार्डन में हुई थी। वीडियो में दिखने वाले खूबसूरत पेड़ पौधे और फंवारे भी यहीं के थे। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माए गए इस सदाबहार गाने में कश्मीर की हसीन वादियाँ और डल झील का किनारा साफ दिखाई देता है।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये था आराधना फिल्म का गीत। जी हाँ श्रोताओं, शर्मिला टैगोर से लेकर आलिया भट्ट तक और शम्मी कपूर से लेकर शाहरुख खान तक सबको कश्मीर की खूबसूरत पृष्ठभूमि में रोमांस करते हुए देखा गया है। यहाँ के लोग जो हमेशा शिकारा वाले या शायद मवेशी चराने वाले भी हुआ करते हैं, वो भी शहर के लोगों की देखभाल करके बेहद खुश होते थे। जी हाँ, हम ये कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री ने कश्मीर के पर्यटन को एक नया आयाम दिया है। बॉलीवुड निर्देशकों को कश्मीर और वहाँ के लोगों के प्रति एक विशेष जुनून रहा है, क्योंकि वे इसे एक सुंदर पृष्ठभूमि के रूप में देखते हैं। श्रोताओं, कश्मीर में फिल्माई गई फिल्मों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन आज के कार्यक्रम में हमने कुछ ऐसी फिल्मों को आप सभी के बीच में लाने का काम किया जो कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बीच में फिल्माई गई थी। और धरती का जन्नत कहे जाने वाला कश्मीर हम सबके दिलों में सदैव था, है और रहेगा। इन्हीं बातों के साथ आज का खूबसूरत चित्र संगीत फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे तारा सिंह डोडवे और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। आइए सबसे पहले सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत और पारंपरिक रचना। गुरु हमारी अनंत शक्ति और अनंत ऊर्जा के प्रतीक हैं और गुरु के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करता एक ऐसा ही लोकगीत। लीजिए सुनिए सबसे पहले इस कार्यक्रम में

तारा सिंह डोडवे और साथियों के गाए मालवे लोकगीत आप सुन रहे हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में। आइए इसी क्रम में सुनवाते हैं कार्यक्रम की अगली रचना, जो है एक बार फिर गुरु के नाम।

माटी की खुशबू, ढोलक की थाप और पुरखों की विरासत, जी हाँ, यही है हमारे लोक संगीत की असली पहचान। और लोक संगीत का यही खूबसूरत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, तारा सिंह डोडवे और साथियों के गाए मालवी लोकगीतों के साथ लोक संगीत के कार्यक्रम में। लीजिए अब सुनिए इस कार्यक्रम की अंतिम रचना।

तारा सिंह डोडवे और साथियों के गाए मालवी लोकगीत आप सुन रहे थे लोक संगीत के कार्यक्रम में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं वैशाली बकोरे और साथी। इनकी आवाज में सुनते हैं इनकी गायी रचनाएं। कार्यक्रम की पहली रचना रचनाकार डॉक्टर रामावल्लभ आचार्य। प्रस्तुत है ये विशेष गणेश वंदना।

वैशाली बकोरे और साथियों के गाए रचनाएं आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में। आइए इसी क्रम में सुनिए मीराबाई की लिखी ये रचना।

सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से, और इसी क्रम में लीजिए सुनिए मीराबाई की लिखी अंतिम रचना, आवाज वैशाली बकोरे और साथियों की।

वैशाली बकोरे और साथियों की गाई इन रचनाओं के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मंगेश जगताप का संतूर वादन, राग है नट भैरव, तबला संगत सचिन भोसले की है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मंगेश जगताप का संतूर वादन, राग था नट भैरव, तबले पर संगत सचिन भोसले की थी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होगी, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: 10 बजने जा रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, आप सुनिए जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है श्योपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अश्विनी बालोठिया, वाचन स्वर शरद बाघेला। श्योपुर जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मौसम की। जिले में पिछले करीब एक पखवाड़े से बारिश नहीं हुई है, इससे खरीफ की फसलों पर असर पड़ रहा है और धान की फसल भी प्रभावित हुई है। जिले में अब तक करीब 272 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो औसत से कम है।

बारिश के मौसम को देखते हुए श्योपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को मौसमी बीमारियों से बचाव की सलाह दी है। स्वास्थ्य और आयुष विभाग ने आदिवासी विकास खंड के कई गांवों में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए हैं। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पानी की जांच के लिए जल परीक्षण किट भी दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत श्योपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नाले और नालियों की सफाई का काम पूरा कर लिया गया है। जिले की ग्राम पंचायतों में कुल 1366 नाले और नालियों की सफाई की गई है। जिले में ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई स्व कराधान व्यवस्था को सराहा जा रहा है। जल कर, स्वच्छता कर, प्रकाश कर और संपत्ति कर के बिल पंचायत दर्पण पोर्टल के जरिए जारी किए जा रहे हैं। अब तक पंचायतों के खातों में 2,50,000 रुपए से ज्यादा की राशि जमा हो चुकी है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू की गई शीर धारा ग्राम योजना के तहत श्योपुर के 34 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में पशुओं की नस्ल सुधार, बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये योजना 3 साल में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। सभी मानक पूरे होने के बाद इन गांवों को शीर धारा ग्राम घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं किश्त के तहत श्योपुर जिले की 1,07,000 से ज्यादा महिलाओं के खातों में राशि पहुंची है। प्रत्येक महिला के खाते में 1,500 रुपए के हिसाब से कुल 15,90,00,000 रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। ये राशि जुलाई महीने की किश्त के रूप में दी गई है। जिले में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में लंबित मामलों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। जिले में नामांतरण के 4,640 मामलों में से 2,950 मामलों का निराकरण हो चुका है, जबकि 1,690 मामले लंबित हैं। श्योपुर जिले में सभी 660 मंदिरों की जानकारी टेम्पल रिकॉर्ड पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक 395 मंदिरों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जिले के करीब 98,000 किसानों की EKYC पूरी हो चुकी है। ये कुल पात्र किसानों का करीब 96% है। प्रदेश के राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव ने श्योपुर जिले का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने छात्रावासों का निरीक्षण भी किया और सामाजिक कार्यकर्ताओं व पत्रकारों से चर्चा भी की। चंबल मल्टी विलेज स्कीम के तहत श्योपुर के वीरपुर क्षेत्र में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आवंटित जमीन से कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। करीब 782 करोड़ रुपए की इस परियोजना से जिले के 385 गांवों में पेयजल पहुंचाने की योजना है। इससे करीब 8,00,000 ग्रामीणों को स्वच्छ पानी मिलेगा। जिले में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत कॉलेज से गांधी पार्क तक हुई इस दौड़ में अधिकारी, विद्यार्थी, खिलाड़ी और आम नागरिक शामिल हुए। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत जिले के 234 हितग्राही परिवारों को करीब 5,03,00,000 रुपए की अनुग्रह सहायता राशि दी गई। इसमें सामान्य मृत्यु के 215 मामलों में 4,30,00,000 रुपए की सहायता शामिल है। जिले के मुंजरी वृहद सिंचाई परियोजना के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। करीब 415 करोड़ रुपए की लागत से अहिली नदी पर बांध बनाया जाएगा। परियोजना से बड़ौदा और कराहल तहसील के करीब 11,575 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा करीब 1,00,000 लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था भी होगी। राजस्व और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ौदा तहसील के बड़ौदिया घाट गांव में अवैध रूप से जमा करीब 1,000 ट्रॉली रेत का विनिष्टीकरण किया। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए रेत को नष्ट करने की प्रक्रिया पूरी की। जिले में नए शाला भवनों के निर्माण के लिए 37 स्कूलों को मंजूरी दी गई है। राज्य शिक्षा केंद्र ने श्योपुर विकास खंड में 24 और कराहल विकास खंड में 13 नए भवनों की स्वीकृति दी है। नए भवन बनने से विद्यार्थियों को बेहतर और सुरक्षित शैक्षणिक माहौल मिलेगा। श्योपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एमएच होटलाइन।
1: हेलो एमएच होटलाइन।
0: एमएच होटलाइन कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को विजया जैन का प्यार भरा नमस्कार।

0: तो श्रोताओं, सावन का खूबसूरत मौसम है और इस वक्त बाहर मौसम बहुत सुहाना हो चुका है और इस सुहाने मौसम में हम हाजिर हो चुके हैं आपकी पसंद के गीतों की फरमाइश पूरी करने के लिए आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है MH हॉटलाइन। तो दोस्तों, आपकी दोस्त आपकी विजया जैन आपके साथ है, स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, जो श्रोता हमें फोन करना चाहते हैं, हम जल्दी से उनके लिए नंबर बता देते हैं। हमारा नंबर है 2710223 और 2710224। अगर आप इंदौर के बाहर के श्रोता हैं और हमसे बात करना चाहते हैं तो STD कोड 0731 लगाना बिल्कुल ना भूलें। और एक निवेदन जो मैं हमेशा हमारे सभी श्रोताओं से करती हूँ, आज फिर करूंगी, कि जिन श्रोताओं ने हमें एक बार फोन लिया है, कम से कम 15 दिन का अंतराल आप अवश्य रखें ताकि हमारे दूसरे श्रोता भी हमसे जुड़ सके और उनसे भी ढेर सारी बातें की जा सके। तो चलिए आज गीतों का सफर शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे पहले श्रोता कौन है इस वक्त लाइन पर। हेलो, MH हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं तहसील बहादुरपुर जिला सोनर MP से सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूँ।
0: सूर्य प्रताप यादव जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: सड़क फिल्म का गाना सुनना है, मोहब्बत की है तुम्हारे लिए।
0: मोहब्बत की है तुम्हारे लिए, बहुत ही खूबसूरत गीत है। ये गीत पसंद करने की कोई खास वजह है?
1: खास वजह तो कुछ नहीं है, मुझे 90s के गाने अच्छे लगते हैं।
0: अच्छा, 90s के गाने आप काफी पसंद करते हैं। तो चलिए, आपका गीत मुझे मिल चुका है तो फरमाइश पूरी करी जाए आपकी।
1: बिल्कुल मैम।
0: चलिए, फोन करने के लिए धन्यवाद। लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। जी।

हेलो, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम। हेलो हेलो,

0: हेलो, हेलो, एमएच हेल्पलाइन कार्यक्रम। मेरा हमारे सभी श्रोताओं से निवेदन है कि जब आप हमसे बात करें या हमें कॉल करें तो अपना रेडियो सेट दूर रखें, ताकि इस तरह की आवाजें जो अभी आपको सुनाई दे रही थी पीछे से वो ना आए। तो चलिए देखते हैं कि हमारे अगले कॉलर कौन है लाइन पर। हेलो, हेलो, हेलो,
1: हेलो
0: एमएच हॉटलाइन
1: हेलो,
0: कार्यक्रम। नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत राधे राधे।
0: राधे राधे। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं वीरों की भूमि बुंदेलखंड की धरती से, यानी महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर जिले के मनकारी गांव से मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ।
0: क्या बात है, छत्रपाल जी की धरती से।
1: राजा
0: जी
1: छत्रपाल
0: जी जी
1: राजा।
0: राजा छत्रपाल की धरती से। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले गीत बता दें, गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: जी जी बिल्कुल। सबसे पहले आप अपना सब नाम बताइए। बहुत
0: मैं विजया
1: शुक्रिया।
0: जैन बात कर रही हूँ। विजया जैन, आपका नाम तो हमने पूछ ही लिया है।
1: जी,
0: जी बताएं कौन सा गीत सुनेंगे सबसे पहले आप?
1: बिल्कुल। फिल्म का नाम है घर हो तो ऐसा।
0: घर हो तो ऐसा। क्या करते हैं आप?
1: जी मैं एक किसान हूँ।
0: अच्छा, किसान है। तो इस वक्त
1: और
0: बुंदेलखंड में बारिश कैसी आ रही है?
1: बुंदेलखंड में बारिश बहुत है, लेकिन बहुत कम है।
0: अच्छा, गीत के बोल भी बताएंगे?
1: हाँ बिल्कुल। फिल्म का नाम है घर हो तो ऐसा, और गीत के बोलेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून जुलाई, और सासों सारा काम करे बहू रानी खाए मलाई।
0: अरे बाप रे बहुत बढ़िया, आप भी सही सोचते हैं क्या?
1: अब देखिए क्या है कि ये तो गाना है और
0: सही
1: गाना
0: बात है, सही बात है।
1: तो
0: अब मुझे लगता है कि ये गीत शायद हमारे पास उपलब्ध नहीं है। कोई और गीत बता पाएंगे आप?
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं
0: जी जी
1: बताएंगे,
0: बताएं
1: बिल्कुल
0: बताएं,
1: बताएंगे
0: कुछ दूसरा गीत बता दीजिए।
1: बिल्कुल। और आज मैं इतना खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ, मैं कि बहुत खुशी हो रही है मुझे।
0: जी जी जी जी बिल्कुल। पहली बार फोन किया है मुझे से लग रहा है आपने।
1: जी मेरा पहली बार फोन लगा है, और मैं आकाशवाणी छतरपुर सुनता हूँ, भोपाल भी सुनता हूँ।
0: बहुत बढ़िया बात है। आप सबसे पहले गीत भी बताएं मुझे दूसरा।
1: जी, जो फिल्म का नाम है ब्रज भूमि।
0: आप तो बड़े यूनिक यूनिक से, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी गाना पता नहीं हमारे पास है कि नहीं है। कोई मतलब जो बहुत, आज एक काम करते हैं, चलिए आपका पहली बार फोन लगा है तो मैं अपनी पसंद का गीत सुनवाऊं
1: नहीं नहीं
0: आपको?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं बिल्कुल।
0: नहीं,
1: ब्रज भूमि आपके पास मिल जाएगी। गीत के बोले के झूला तो पड़ गए अमुआ की,
0: अच्छा
1: बहुत
0: अच्छा
1: प्यारा गाना है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा ओके। तो ठीक है, और कौन कौन है आपके घर में?
1: मेरे घर में सब कोई है, मेरे माता है, पिता है, मेरी बच्चे भी हैं, और बहुत प्यारी सी बीवी है,
0: अच्छा,
1: और सारे सब लोग हैं, पूरा भरा परिवार है मेरा। और खजुराहो देखा है आपने
0: हाँ
1: कभी?
0: हाँ बिल्कुल देखा है खजुराहो हमने।
1: हाँ बस, तो खजुराहो ही हमारा गांव है, खजुराहो बिल्कुल, बस हमारा एक मोहाल है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ओके,
1: और कभी
0: बढ़िया,
1: आइए खजुराहो घूमने के लिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बुंदेलखंड में बहुत
0: हम
1: सारे
0: बिल्कुल
1: स्थान
0: जब
1: हैं।
0: कभी भी खजुराहो घूमने आएंगे तो आपको बिल्कुल याद करेंगे।
1: जी।
0: चलिए, मुझे झूले पे एक अच्छा सा गीत मिला है, मुझे लगता है कि मुझे आज आपको यही सुनवाना पड़ेगा। तो
1: नहीं
0: सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी पसंद का, मतलब हम बहुत सारे श्रोताओं की पसंद है, उनकी पसंद का और आपकी पसंद का भी ये गीत।

हेलो, श्रोताओं, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 2710223 और 2710224, इंदौर का एसटीडी कोड 0731। और हमारे दूसरे श्रोता भी अभी हमसे जुड़ रहे हैं, तब तक सुनिए ये गीत।

0: जी हाँ श्रोताओं, हम भी यही चाहते हैं कि ना आपसे ये प्यार टूटे और ना आपसे ये हमारा साथ छूटे, और इसीलिए हर दिन हम आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम एमए छोटलाइन लेकर आते हैं। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं कि कौन श्रोता है और क्या सुनना चाहते हैं। हेलो, एमए छोटलाइन कार्यक्रम।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं अनिल भंडारी फैजाबाद से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा अनिल भंडारी जी, हमारे बहुत ही नियमित श्रोता हैं आप। चलिए बताएं कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आज आपने कश्मीर की यात्रा करवाई, घर बैठे होते मधुर मधुर पुराने गीत सुना के पुरानी यादें ताजा कर दी, उसके कोटी कोटी धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपने हमारा प्रोग्राम सुना और आप सभी हमारे प्रोग्राम को सराहते हैं, उन्हें सुनते हैं, पसंद करते हैं, इसके लिए हम भी आपका शुक्रिया करते हैं। चलिए अब जल्दी से गीत बता दीजिए।
1: काली घटा का टाइटल सॉन्ग है।
0: काली घटा का टाइटल सॉन्ग है, लता मंगेशकर जी का गाया है।
1: काली घटा छाई प्रेम रुत आई,
0: क्या बात है, क्या बात है। चलिए बिना किसी भूमिका के आपकी पसंद पूरी करती हूँ, लीजिए।
1: धन्यवाद।

0: हेलो, एमए छोटलाइन कार्यक्रम।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैम, श्रीपाल गोयल दिल्ली से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, गोयल जी दिल्ली से बात कर रहे हैं। कौन सा गीत सुनेंगे दिल्ली से आज?
1: मैम, फिल्म है फिर मिलेंगे, गाना है बेताब दिल है धड़कना की कसम।
0: बेताब दिल है धड़कना। ओके ओके, बहुत अच्छा गीत है। आपने क्या करते हैं आप?
1: मैं दिल्ली में काम करते हैं कंपनी में,
0: अच्छा, दिल्ली में
1: ड्यूटी
0: कंपनी
1: खोलते हैं
0: में
1: यहाँ पर।
0: काम कर रहे
1: हाँ
0: हैं।
1: जी, कोल्ड ड्राइव कर रहे थे, फर्स्ट कोल्ड भी लग जाएगा।
0: अच्छा, चलिए, अच्छा लगा आपसे बात होती रहती है, ऐसा मुझे लगता है
1: जी
0: ना?
1: जी मैं बिल्कुल ओके रहती है,
0: चलिए,
1: बातचीत
0: बिल्कुल।
1: कर
0: अभी
1: लेंगे।
0: अभी आज आपका फोन लगा है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, 15 दिन तक फोन नहीं लगाइएगा ताकि दूसरे श्रोताओं
1: मैम
0: को भी मौका मिले, है ना?
1: लास्ट वीक क्या था मैम?
0: जी, लास्ट वीक नहीं, 15 दिन, है ना, 2 वीक के बाद। ठीक है
1: ठीक है, आगे से ध्यान
0: जी,
1: रखेंगे।
0: बिल्कुल। चलिए, आज आपकी पसंद पूरी करते हैं और आपका पसंदीदा गीत सुनते हैं। ठीक है,

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम
1: जी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं
1: जी? मेरा नाम नईम मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ, जिला बड़गाम में हमारा गांव पड़ता है मैडम जी।
0: अच्छा, तो क्या करते हैं नईम जी वहाँ पर?
1: मैं बिजनेस करता हूँ।
0: अच्छा, किस चीज का बिजनेस है आपका?
1: जो सीपी है, सीपी पेंट में जो दीवारों पे लगाते हैं, वही का बिजनेस करता हूँ।
0: हाँ हाँ, तो आपका जो बिजनेस है वो कश्मीर में ही है या बाहर भी है? कश्मीर के बाहर दूसरे प्रदेशों में भी है?
1: नहीं नहीं, हमारी गांव में जहाँ पर मैं रहता हूँ।
0: अच्छा, वहीं पे करते हैं। और परिवार में कौन कौन है आपके?
1: माँ बाप, भाई बहन, इसके अलावा बीवी है। और हाल ही फिलहाल में 2-3 महीने पहले की बात है, तो बाप भी बन चुका हूँ बेटी का।
0: अरे वाह वाह वाह, घर में लक्ष्मी आई है आपके।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो अभी तो खूबसूरत मौसम हो रहा होगा कश्मीर में, है ना?
1: बिल्कुल, लेकिन बारिश भी हो रही है।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बारिश के साथ मौसम सुहाना हो चुका है। तो कश्मीर तो बहुत खूबसूरत है, वैसे भी धरती की जन्नत है।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने।
0: जी जी जी, तो चलिए बताइए, आज आपकी कश्मीर की जन्नत से इंदौर की धरती पर आपने फोन लगाया है, तो कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
1: ये खुददार फिल्म का नगमा है, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है।
0: अच्छा, ये गीत किसके लिए सुन रहे हैं आप?
1: बस अपनी बीबी।
0: अच्छा, वाइफ सुन रही है इस वक्त हमारा रेडियो की
1: मोबाइल ऐप के जरिए हम आपकी प्रोग्राम सुन रहे?
0: अच्छा, मोबाइल ऐप के जरिए सुन रहे। तो आपकी वाइफ भी इस वक्त आपका ये प्रोग्राम सुन रही है?
1: बिल्कुल, और क्या, मुझे रिकॉर्डिंग करना पड़ता है उसके पास।
0: अच्छा, आप रिकॉर्डिंग करके उन्हें भेजते हैं, क्या बात है, बहुत बहुत प्यार करते हैं ऐसा लगता है आपको देखकर।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और बिल्कुल, आप ने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, आपको, आपकी वाइफ को और आपकी फैमिली को ये खूबसूरत गीत सुनवा देते हैं। सुनवा दें?
1: शुक्रिया, बिल्कुल,
0: चलिए सुनिए।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: हेलो,
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: हाँ मैम, नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: मुकेश चंद्र मेहरू बोल रहा हूँ, आज्ञा जागीर तहसील खाचरोद जिला उज्जैन से।
0: अच्छा, खाचरोद से बात कर रहे हैं आप। ओके, क्या करते हैं आप?
1: जी मैम, सिलाई का काम करता हूँ।
0: अच्छा, सिलाई का काम करते हैं। तो मतलब किस तरह के कपड़ों की सिलाई करते हैं? महिलाओं के कपड़े सिलते हैं या पुरुषों के कपड़े सिलते हैं या बच्चों के सिलते हैं?
1: गांव में रहता हूँ, आज्ञा जागीर में, तो टोटली काम करता हूँ।
0: अच्छा, सारे काम करते हैं। ओके, तो अभी तो थोड़ा ठंडा मौसम होगा ना, क्योंकि मुझे लगता है कि शादियों का सीजन भी नहीं है। और
1: बिल्कुल
0: ठीक है,
1: स्कूल के बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह सिल रहे
0: हैं। अच्छा अच्छा, स्कूल के बच्चों का यूनिफॉर्म चालू है, चलिए अच्छी बात है। कौन सा गीत सुनवा दें आज आपको?
1: मैम मुझे आज फिल्म अलग अलग का गीत सुनना है, किशोर कुमार जी की आवाज में दिल में आग लगाए सावन का
0: क्या
1: महीना।
0: बात है, क्या बात है, सावन का महीना है और सावन के महीने में सावन वाला गीत सुनना है आपको।
1: जी मैम,
0: चलिए आपकी पसंद पूरी करते हैं और सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: धन्यवाद।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं आकाशवाणी इंदौर का नियमित श्रोता धीरज रबारी, गांव देर, तहसील जिला पाटन, गुजरात से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, पाटन गुजरात से बात कर रहे हैं आप, क्या बात है।
1: जी,
0: पाटन तक सुनाई
1: हमारा
0: देता है? पाटन तो बड़ा दूर है मतलब।
1: देखा जाए तो जो एप्लीकेशन आई है ना मोबाइल पर,
0: हाँ,
1: उसके जरिए हम आकाशवाणी इंदौर पर जुड़ती है, और आप हर श्रोताओं की जो युवा धन है उनके लिए युवाणी कार्यक्रम, हमारे लिए जो फोन इन कार्यक्रम,
0: जी।
1: महिलाओं के लिए कार्यक्रम, यानी हर तरह के श्रोताओं की फरमाइश, यानी उनकी जो भी फिल्म गीत है
0: जी
1: वो
0: जी
1: आप
0: जी
1: पूरी करते हो, इसके लिए आपको और आकाशवाणी इंदौर को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद कि आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं। तो चलिए बताइए सुरेश जी, सबसे पहले तो गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: गाना सुनना है फकीरा फिल्म का, और गाने के बोल में दिल में तुझे बिठाकर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, फिल्म का नाम अलग बताया था तो माफ
0: हाँ
1: करना।
0: हाँ कोई बात नहीं। नहीं ठीक है, पर आपने बड़ी अच्छी चॉइस है आपका, ये गीत मेरा भी बहुत पसंदीदा गीत है।
1: जी,
0: तो
1: अगर हम श्रोता आपको नम्र निवेदन करें कि आप ये गाना गुनगुनाए तो अच्छा रहेगा।
0: नहीं अभी तो
1: अगर
0: लता जी
1: आपको
0: की
1: इच्छा
0: आवाज में
1: हो
0: ही सुनिए
1: तो
0: आप। अच्छा आप ये बताइए, आप
1: जी,
0: करते क्या हैं? आप करते क्या हैं?
1: मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, और मुझे मुझे अभी 57 साल आयु है, और मैं 17 सालों से, यानी बहुत लंबे समय से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ, और
0: अच्छा
1: आकाशवाणी ने जो दिया है, हमने देखा जाए तो 2-3 बेड़े निकाल दिए है,
0: हाँ
1: जो
0: हाँ हाँ
1: अनाउंसर
0: हाँ
1: पहले थे उसके बाद भी आए अभी भी
0: जी
1: है,
0: जी जी जी
1: यानी आकाशवाणी में जो है वो मेरे ख्याल से दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं है,
0: जी
1: हर
0: जी
1: तरह की
0: जी
1: जानकारी मिलती है यहाँ।
0: बिल्कुल सही बात है। देखिए आकाशवाणी अपने दौर के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है और वक्त में परिवर्तन होता है। तो पहले हमारे सीनियर थे, अब कुछ और हैं, फिर आगे हमारे बाद कुछ और होंगे।
1: बिल्कुल
0: तो चलिए बात
1: नहीं,
0: आपसे बात
1: तालमेल
0: करके।
1: तालमेल मिलाकर आकाशवाणी
0: जी
1: चलती है,
0: जी
1: वो तो
0: बिल्कुल
1: हमने
0: बिल्कुल, हर
1: देखा है।
0: चीज़ दुनिया की, देखिए प्रकृति की हर चीज़ तालमेल के साथ ही चलती है। अगर आप प्रकृति के साथ
1: बिल्कुल
0: तालमेल रखेंगे तो आपका जीवन अच्छा चलेगा, परिवार के
1: बिल्कुल
0: साथ
1: जी, बिल्कुल
0: तालमेल रखेंगे तो जीवन में सुख समृद्धि आएगी, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो हम कोशिश करते हैं कि हर वर्ग का ध्यान रखा जाए और सबकी
1: बिल्कुल
0: हर उम्र के लोगों के लिए प्रोग्राम बनाए जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और
0: और
1: आप श्रोताओं की जो डिमांड होती है, जो सूचन होते हैं, सुझाव होते हैं, उसका समय अनुसार अमल करते हैं, उसके लिए भी हम श्रोताओं आपको धन्यवाद करते
0: बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बात
1: हैं।
0: हमारे सीनियर्स तक भी पहुंच रही होगी और आपकी जो धन्यवाद है वो भी उन तक पहुंच रही होगी। तो चलिए आपका गीत भी हमें मिल चुका है, तो आपकी पसंद अब पूरी करते हैं, लता मंगेशकर जी
1: एक
0: का
1: एक
0: गाया हुआ।
1: एक नम्र बात है दीदी,
0: जी जी जी पता है।
1: हमारा आकाशवाणी फोन इन एकता ग्रुप है, इसमें भारत भर के श्रोता
0: हाँ
1: जुड़े हैं,
0: हाँ
1: उसको ये गाना डेलीगेट रहेगा,
0: जी
1: और इस स्टेशन को जुड़ने के लिए मैं लोकेंद्र भैया का भी धन्यवाद करता हूँ,
0: जी जी
1: उन्होंने
0: जी
1: मेरे
0: जी
1: को प्रेरित किया था, तब जाके मैं आकाशवाणी इंदौर से जुड़ा हूँ।
0: चलिए, तो आपकी जो धन्यवाद है वो हमारे सभी श्रोताओं तक और जो जो आपके थ्रू इस आकाशवाणी इंदौर से जुड़े हुए हैं उन सब तक पहुंच रही है। और आपको, आपके दोस्तों को और आपके रेडियो श्रोता संघ को ये गीत डेडिकेट करते हैं अब।
1: आपका दिन मंगलमय रहे, धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: मैडम नमस्ते, गुमास्ता नगर इंदौर से अनिल कौचाले बात कर रहे हैं।
0: अनिल जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बस बहुत अच्छे, आज दूसरा शनिवार है तो बैंक की छुट्टी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तकलीफ दो थी फोन लगाने की।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप देखिए बहुत अच्छी बात है, आप नियमित रूप से और टाइम का अंतराल का ध्यान रखते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे क्या है ना, दूसरे श्रोताओं को भी मौका मिलता है, प्रोग्राम में वैरायटी आती है।
1: और आपको मतलब श्रोताओं को क्या, अलग अलग श्रोताओं के अलग अलग पसंद के गीत सुनने को मिलते
0: हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, सबकी पसंद एक दूसरे में अच्छे से मिक्स होती है तो मजा आता है ना। जैसे सही बात है, सही बात है, सारे श्रोता अगर आपकी तरह समझ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सभी समझें और माने इस बात को। चलिए आपका गीत बताएं, सबसे पहले कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है दूसरा आदमी।
0: दूसरा आदमी, हाँ जी,
1: और गीत है आंखों में काजल है।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो आज बैंक की छुट्टी है और सावन का महीना चल रहा है और मौसम भी खूबसूरत है, तो खूबसूरत मौसम का आनंद उठा रहे हैं आप गीतों के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और आज का अभी तीन तीन शनिवार लगातार, अगले शनिवार को 15 अगस्त, उसके अगले शनिवार को 14 शनिवार, तो तीन शनिवार को बैंक की छुट्टी है।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, बड़ा अच्छा लगता होगा ना इस तरह की छुट्टियां जब मिलती है तो।
1: सुबह 9:30 बजे घर से निकलो और रात।
0: सही बात है, नहीं नहीं छुट्टियों, काम करने के बाद छुट्टियों का वैसे ही विशेष महत्व होता है, तो मैं समझ सकती हूँ कि जॉब के बाद छुट्टियों का सुख क्या होता है। तो चलिए आपसे बात करके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, तो चलिए आपकी पसंद का गीत मिल चुका है और आप तक पहुँचाते हैं ये गीत, है ना?
1: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है।
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद, सुनिए ये गीत।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम
1: जी, एमएम को नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन साहब बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मैं अरविंद अग्रवाल, श्रीनगर जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से।
0: अच्छा, उत्तर प्रदेश महोबा से बात कर रहे हैं आप। कौन सा गीत सुनना है आज आपको?
1: जी, आज फिल्म का नाम रहेगा दिल का रिश्ता।
0: दिल का रिश्ता, ओके। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, कौन सा गीत है उसका?
1: साजन साजन
0: साजन साजन। चलिए, तो और कैसी चल रही है जिंदगी आपकी?
1: कट रही है, भगवान की जैसी कृपा है, आराम से, थोड़ी कम खुशहाल है लेकिन है अच्छी।
0: कम खुशहाल, देखिए जिंदगी में ना जो भी वक्त है उसमें खुशियां ढूंढनी चाहिए, हम तो यही मानते हैं। तो जीवन में खुशियां मिलती रहे आपको। चलिए, आपकी पसंद पूरी करते हैं और सुनवा देते हैं ये गीत।

0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: नमस्कार मिश्रा जी।
0: नमस्कार जी,
1: मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव पहुँचे। और सबसे पहले ये बताए आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: बस आपसे बात हो गई, दिन बन गया है। आपका संगीत भी बहुत अच्छा था, कश्मीर पर आपने दिया था और मेरा फेवरेट गाना बजाया था, ये चांद पर रोशन।
0: जी जी जी जी, आज मैंने सबको कश्मीर की सैर करवाई थी और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ अच्छा और नया दे सके, बस वही कोशिश में आप लोग बताते हैं हम कामयाब होते हैं कि नहीं। चलिए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: बहुत हद तक आप पूर्णतः कामयाब होते हैं और आज मैं सुनना चाहता हूँ फिल्म का नाम है जब याद किसी की आती है, इसका गीत है लता जी की आवाज में, गाने बोल है तेरे बिन सावन कैसे बीता तू क्या जाने बाल माँ।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा गाते हैं आप तो। चलिए आपकी पसंद पूरी करते हैं, आप इतना अच्छा गुनगुना रहे हैं कि मुझे लगते हैं कि बस अब डायरेक्ट गीत ही चलाना चाहिए मुझे। चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, लता मंगेशकर का ये गीत था, सावन पर केंद्रित ये गीत था। और सावन का महीना चल रहा है, आप सभी के जीवन में सावन ढेर सारी खुशियां लेकर आए, ढेर सारे रंग लेकर आए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का एमए छोट लाइन कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। अपनी दोस्त विजया जैन को नमस्कार।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन,
0: अभी आप सुन रहे थे एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सवेरे के 11 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, आप सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: नमस्कार, फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी नीरजा। कार्यक्रम में आज का विषय है घर आंगन में बागवानी। इस विषय पर हम जानेंगे आपके विचार, साथ ही आप सुनेंगे हमारी पसंद के सुमधुर गीत। तो आइए बिना देर किए जल्द

0: से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।
1: हेलो
0: हेलो,
1: हाँ जी मैडम, संतोष कुमार राव बात कर रहा था, आदिवासी बहुल क्षेत्र उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: कैसे हैं, क्या हाल है?
1: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके कार्यक्रम सुनते हैं और जो कार्यक्रम चल रहा है बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का विषय क्या है बताएं ताकि हम विषय संबंधित आपसे बात कर पाएं।
0: कार्यक्रम में विषय है घर में बागवानी। घर में बागवानी यानी घर में जो पेड़ पौधे लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, उस बारे में बात कर रहे हैं हम। आप लगाते हैं घर में?
1: जी मैडम, स्वयं के घर में ही बागवानी करना एक अच्छी बात होती है, पर्यावरण को एक अच्छा बल मिलता है। यदि हम आसपास फूल लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, तो जीवन भी हरियाली की तरह चलता है। और जीवन में यदि हम पेड़ लगा करके चलेंगे तो हमें वायु का संचारण भी करवाता है, और पेड़ लगाना ही चाहिए जीवन में। फूल लगाएं, पेड़ लगाएं, ताकि पक्षी भी आएंगे आपके घर में और आसपास चहल पहल बनी रहेगी।
0: बिल्कुल सही बात कही संतोष जी। और आपका पसंदीदा फूल कौन सा है जो आप घर में अक्सर लगाते रहते हैं?
1: मैडम यहाँ पे गुलाब के फूल लगे हैं और साथ में जो गुड़हल का फूल होता है ना, हाँ? वो भी लगा हुआ है, क्योंकि मंदिरों में पूजा जब हम लोग करने जाते हैं इस समय तो सावन का सोमवार भी चलता है, तो फूलों की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। हाँ? तो ऐसे में हम लोग स्वयं के मतलब फूल लगाते हैं, और मुझे खास करके गुलाब का फूल सबसे अच्छा लगता है और गुड़हल का फूल भी अच्छा लगता है। और साथ में हम लोग गेंदे की भी फूल लगाते हैं अगल बगल, खास करके घरौंदों में लगाते हैं अगल बगल, जो हमारा घरौंदा होता है उसके अगल बगल लगा देते हैं, ताकि उसमें जो पीला पना था तो अलग सा संतुलन बनता है और उसमें देखने का नजरिया भी अच्छा होता है और जब उसका सुकून भी अच्छा होता है। मैडम जी
0: यानी जब देखते हैं हरियाली की तरफ तो एक सुकून सा मिलता है आंखों को, अच्छा लगता है।
1: जी बिल्कुल मैडम, और इसमें क्या होता है ना, भावरे भी आते हैं जब हम लोग गेंदे के फूल लगाते हैं, तो उसमें कई प्रकार के मतलब ऐसे लोग भी आते हैं जो उसकी सुगंध को लेने के बाद आते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसे में, और मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे पेड़ पौधों की संख्या बहुत ज्यादा तादाद में होती है मैडम, और हम लोग पेड़ भी लगाते हैं और वृक्ष भी बचाते हैं मैडम।
0: अच्छा अच्छा,
1: और यहाँ हुआ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है, यहाँ के आसपास लोगों में खास करके आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसलिए यहाँ के लोग बहुत ही सामान्य होते हैं, उनकी मीठी मीठी बोली भाषा भी बहुत ही अच्छी लगती है मैडम।
0: मीठी बोली तो आपकी भी है
1: जी, ये सब कुछ सीखते हैं आप मतलब खास करके आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण चलते हैं ना, डीटीएच के माध्यम से सुना जाता है आपका संचलन, बहुत ही साफ स्पष्ट आवाज आती है आपकी। सबसे पहले तो आपको और सुनने वाले तमाम श्रोताओं को, क्योंकि 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं बहुत ही अच्छा मैडम जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सभी को शुभकामनाएं। चलिए संतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद
1: जी मैडम, बहुत बहुत आभार, नमस्कार
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: आदरणीय नमस्कार जी। जी
0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: जी धन्यवाद जी।
0: नाम जानना चाहेंगे आपका?
1: जी मैं आपका नियमित श्रोता जय नरसिंह देव FM रेडियो ग्रुप ग्राम करकवेल तहसील गोटे गांव जिला नरसिंहपुर से कमलेश कहार बात कर रहा हूँ जी।
0: जी जी तो जी। आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं घर में बागवानी विषय पर। घर में जो पेड़ पौधे हम लगाते हैं, छोटे मोटे फूल लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, उनके विषय में हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके घर में कौन कौन से फूल लगे हैं, सब्जियां कौन सी उगाते हैं आप?
1: देखिए मैम जी, फूलों से प्रेम है लेकिन लगाने की बात हुई है तो लगाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है
0: जी,
1: क्योंकि जगह की कमी है।
0: अच्छा, जगह की कमी है
1: जी। सबसे पहले तो जगह चाहिए कि जगह यदि पर्याप्त है तो आप बागवानी भी कर सकते हैं, छोटे मोटे पेड़ पौधे फूल भी लगा सकते हैं।
0: अच्छा,
1: और
0: अगर
1: जगह जरूर है कि तुलसी जरूर लगी हुई है।
0: हाँ, वही हम बात कर रहे हैं कि घर में किस तरह से बागवानी कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा जगह जिनके पास नहीं होती है, खेत खलियान की बात तो नहीं कर रहे हम, घर में गमलों में कैसे लगा सकते हैं, टमाटर हुए, मिर्ची हुई, इस तरह?
1: देखिए अनुभव मेरा कुछ ऐसा नहीं है लेकिन हाँ, अनुभवी लोग यदि जुड़ेंगे तो इस कार्य

0: की जरूर शोभा बढ़ेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जो पेड़ पौधे लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं घर में, उसका ध्यान हम किस तरह से रख सकते हैं?
0: देखिए मैम, ये मेरे पुराने अनुभव की बात करें तो पेड़ पौधों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। जिस तरह हम बच्चा पालते हैं अपना खुद का, उसी तरह से पेड़ पौधों या छोटे पौधों की देख रेख करनी पड़ती है। समय समय
1: हाँ
0: पर उनको खाद पाउडर भी चाहिए, पानी
1: हाँ
0: भी चाहिए, उनकी साफ सफाई भी चाहिए। यदि
1: बिल्कुल।
0: पत्तियां गल रही हैं तो उन्हें तोड़ के फेंकिए, यदि कोई कीड़ा लगा है उसे भी हटाइए, इस प्रकार की पत्तियां यदि कटफट गई हैं तो उन्हें भी फेंकिए। तब
1: हाँ
0: कहीं जाकर ये स्वस्थ और कह सकते हैं सामान्य पौधा अपनी ग्रोथ कर सकता है और हमें अच्छे सब्जियां या फूलों को हमारे बीच प्रस्तुत कर सकता है। मैम जी
1: बिल्कुल
0: अगरवाल
1: बिल्कुल। और बताइए कमलेश जी, क्या
0: अगरवाल
1: हाल चाल है मौसम के वहाँ?
0: लेकिन मैम जी, बादल बिल्कुल छाए हुए हैं, मंद मंद बयार चल रही है, तेज भी चल रही है, वातावरण अनुकूल है।
1: जी
0: परमपिता परमेश्वर से यही निवेदन है कि बारिश हो जाए, सभी को अपेक्षा है इन बादलों से कि बरस जाए,
1: जी
0: और जिससे कि बागवानी की बात हुई है तो इनमें भी एक जान आ जाए।
1: ठीक है कमलेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।
0: जी, आपको भी धन्यवाद, और निवेदन करूंगा सभी श्रोताओं को 0755-2660-902 पर कम से कम 10 दिन या 8-9 दिन के पश्चात ही फोन लगाएं।
1: जी बिल्कुल, ताकि सभी को कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिले।
0: जी जी जी
1: जी नमस्कार।
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद जी आपको और आपकी टीम को।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: जी,
0: क्या नाम है आपका?
1: जिला संभल ग्राम सिरसा से सचिन बात कर रहा हूँ।
0: कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है घर में बागवानी। जो घर में हम फूल पौधे लगाते हैं, छोटी मोटी सब्जियां लगाते हैं, मिर्ची हुई, टमाटर हुए, उसके विषय में हम जानकारी चाहते हैं कि आप अपने घर में कौन से पौधे लगाते हैं, उनका ध्यान किस तरह से रखते हैं।
1: मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे घर में फुलवारी के बहुत से पौधे हैं, जैसे कि गुलाब हो गया, देखी और गुड़हल हो गया जिसपे बड़े बड़े फूल आते हैं, और तुलसी के पौधे हुए, और जो अपने घर में उसका मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, जैसे खजूर के साइज का जो पौधा होता है वो है।
0: अच्छा।
1: जो चलते हैं जाते हैं वो वाला है ना, वो है। और लगभग 20 से 25 पौधे होंगे, बहुत तरह के पौधे हैं, और बकांत के भी पौधे हैं अपने घर पे, लगभग 25 फीट की उसकी ऊंचाई होगी।
0: अच्छा।
1: और फुलवाड़ी और ऐसे अनेक पौधे हैं, घर पे खुशहाली और हरियाली बहुत अच्छी लगती है मैम हमारे घर पे।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके घर में हरियाली है, और इनका ध्यान कैसे रखते हैं आप?
1: मैम समय से इनको पानी और जो खाद है निराई गुड़ाई वो हम करते रहते हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे कोई घास का वो दिखा हमें तो उसको हटा देते हैं, और यदि जैसे ही पानी की या उसको और अन्य चीज की आवश्यकता हो तो उसको समय से हम देते हैं।
0: अच्छा।
1: ऐसे में जब मेरा फोन मध्य प्रदेश में लगा है तो मैम बहुत खुशी हो रही है मुझे।
0: सभी को, जितने भी श्रोता हैं उनसे बात करके बहुत ज्यादा खुशी होती है, अच्छा लगता है कि आप नियमित हमारे कार्यक्रम सुनते हैं।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार
0: नमस्कार। कार्यक्रम बात आपकी गीता मारे।
1: जी। मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: क्या हाल चाल है?
1: जी मेरे हाल चाल भी बढ़िया हैं और इस समय मौसम का आनंद ले रहे हैं।
0: कैसा मौसम है वहाँ?
1: बादल और बारिश हो रही है। जी
0: अच्छा,
1: जी
0: कार्यक्रम बात आपकी गीता मारे में जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं वो है घर में बागवानी। घर में जो फूल लगाते हैं, पौधे लगाते हैं,
1: जी
0: टमाटर, मिर्चें, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि आप इस बारे में क्या जानते हैं। अगर आपके घर में आप

0: बागवानी करते हैं, पौधे लगाते हैं, फूल लगाते हैं, उनका ध्यान कैसे रखते हैं, ये हम जानना चाहेंगे।
1: विषय चुना है तो जैसे कि घर में बागवानी हम करते हैं, जैसे टमाटर होते हैं, मिर्ची होती है या फूल होते हैं, तो इसका ध्यान इस तरह से रखा जाना चाहिए कि समय समय पे इसमें जो है पानी का छिड़काव करना चाहिए, और पानी जो है ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, जितनी जरूरत हो तो उतनी है पानी का छिड़काव करना चाहिए, कि
0: जी
1: अगर हम ज्यादा ज्यादा करेंगे तो फिर वो फूल खराब भी हो जाते हैं, लेकिन हमें मौसम के अनुसार क्या बोलते छिड़काव करना चाहिए, और समय समय पे उसकी देख रेख में करते हैं तो ज्यादा कीटनाशक या केमिकल का ना डाले, क्योंकि इसमें हमारा स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, जैसे हम मिर्ची खाते हैं, टमाटर खाते हैं, तो अगर इसको हम खाने का उपयोग अगर हम छिड़काव करेंगे ज्यादा से, फिर हमारे स्वास्थ्य पर भी क्या बोलते हानिकारक हो सकता है।
0: बिल्कुल। आपके घर में कौन कौन से पौधे लगे हैं, फूल लगे हैं, बताएंगी?
1: जैसे एलोवेरा है, गुलाब का है, और हमारे बागवानी में जो है एप्पल भी आते हैं, तो ये चीजें भी हम यूज करते हैं, पेड़ पौधे तो हम करते हैं, ये बागवानी क्षेत्र में आते हैं। हमारे सेब जो होते हैं ये वो होते हैं, और प्लम जो होते हैं, नाशपाती, ये कहीं कहीं तो कीवी की भी खेती कर रहे हैं, तो ये बागवानी क्षेत्र में जो आता है हम इसका है फ्रूट और फलों का जो है, या टमाटर या मिर्च भी हमने लगा रखी है।
0: जी, और आपका पसंदीदा फूल कौन सा है?
1: हाँ, तो हमारा फूल जो है गुलाब का फूल पसंद है। जी
0: गुलाब का फूल बहुत पसंद है आपको, तो
1: जी जी
0: आपके घर में भी जरूर होगा गुलाब का फूल।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे घर में जरूर है, बिल्कुल है।
0: कैसे पेड़ पौधे लगा सकते हैं घर में? गमले अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए, बताएंगे?
1: अगर आप के अगर गमले नहीं है तो आप जमीन में भी लगा सकते हैं, और अगर गमले है तो गमले में लगा, ज्यादातर जो हमारे जो है फूल है गमले में कम है, लेकिन हमारे जमीन में जो है लगा रखे।
0: अच्छा,
1: जी जी जी जी
0: बहुत
1: जी
0: अच्छा लगा आपसे बात करके राकेश जी, धन्यवाद।
1: जी जी धन्यवाद।

0: हेलो।
1: नमस्कार सर जी। गीत
0: नमस्कार।
1: आपके हैं क्या हमारे हैं?
0: गीत हमारे हैं। आज नाम जानना चाहेंगे आपका? अनोखी
1: अनोखी सिंह।
0: सिंह।
1: हाँ,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जिला धार।
0: धार से। बताइए क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप?
1: नॉर्मल है सर जी, सावन अभी सूखा चल रहा है,
0: तो बारिश नहीं हो रही है?
1: बारिश अभी रुकी हुई है कई भी 5 दिन से समझो।
0: अनोखी जी, आज कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है घर में बागवानी, यानी जो घर में हम पेड़ पौधे लगाते हैं, टमाटर मिर्चें सब्जियां लगाते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है सर जी, आप अपना राशन खुद अपनी उत्पादन कर सकते हो, ये तो करना ही चाहिए कुछ भी अभी टाइम है बारिश का।
0: आपसे जानना चाहेंगे आपके घर में कौन कौन से फूल लगे हैं, कौन सी सब्जियां लगी हैं?
1: सीताफल है, मीठा लीम है, सफेद फूल है।
0: ये आपके घर में है सारे?
1: हाँ, ये घर में बिलायती इमली है।
0: इतनी जगह है आपके घर में?
1: हाँ,
0: अच्छा
1: क्यों नहीं है
0: अच्छा
1: सर जी।
0: जैसे अगर खेत नहीं है आपके पास, बहुत सारी जगह नहीं है, फिर भी घर में आप छोटे मोटे पौधे कैसे लगा सकते हैं? लेकिन आपके पास तो कई सारे पेड़ पौधे हैं ना।
1: हाली में बड़ा एक अच्छा हमारे घर पे। हाँ,
0: अच्छा, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए पौधों की?
1: देखभाल तो ऐसे सर जी कि आप पौधा लगाइए, पौधा लगाने के बाद उस पौधे तक जाने की जगह भी बनाना चाहिए सर। और प्रकृति के आधार पे अब हम तो इसमें कोई वैज्ञानिक तरीका अपनाते नहीं है कि ये दीजिए कि वो दीजिए।
0: जी, खाद वगैरह देनी चाहिए पौधों को, पेड़ों को?
1: पेड़ों को अभी सीताफल ली में बिलायती इमली है, इनको क्या है कि कुछ चाहिए ही नहीं है तो ऑटोमेटिक चलते ही रहते हैं सर जी।
0: यानी इसमें ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप फलते फूलते हैं ना?
1: हाँ, साफ सफाई और पानी की व्यवस्था इनको।
0: और आपकी
1: हाँ,
0: पसंद का फूल कौन सा है?
1: अब फूल सर जी हमारी पसंद का क्या फूल है, दिल के अंदर जो फूल खिले वो फूल है, वो अर्पण कर देना चाहिए।
0: बहुत अच्छी बात
1: बिल्कुल
0: कही आपने। बहुत अच्छा लगा आपसे अनोखी जी बात करके। कार्यक्रम से आप जुड़े, धन्यवाद
1: धन्यवाद सर जी, धन्यवाद सर
0: जी।
1: जी।

0: हेलो, नमस्कार।
1: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्ते
1: मैम, मैं ग्राम बोतराई तहसील पथरिया जिला दमोह से बात कर रहा हूँ, लक्ष्मण सिंह।
0: दमोह से बात कर रहे हैं, लक्ष्मण सिंह। कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है?
1: बिल्कुल बढ़िया है मैम, बस अब पानी का इंतजार कर रहे हैं मैम। काश 10-12 दिन से पानी नहीं गिर रहा तो फसलें अलग नष्ट हो रही है मैम।
0: जी लक्ष्मण जी, आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं घर में बागवानी विषय पर, जो घर में पेड़ पौधे लगाते हैं, घर के अंदर, घर आंगन में, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए। आपसे भी जानना चाहेंगे आपके घर में कौन से पौधे लगे हैं, सब्जियां लगी हैं।
1: जी मैम, हम तो लगना है मतलब घर की बागवानी अपनी डिब्बा हो, तो मैम भटा के भी लगना है, टमाटर के भी लगना है और फूलों के भी लगना है, जैसे गुलाब है,
0: हाँ
1: जासून है, इनके सब लगा है सर पर।
0: अच्छा,
1: और हम टाइम टाइम पे उनको पानी भी देते हैं, खाद भी जो है डालते हैं।
0: और आपकी पसंद का कोई फूल है जो आपको बचपन से ही बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और आपने घर में भी लगाया है?
1: जी जी बिल्कुल, गुलाब का मैम पसंद है, और गुलाब हमारे 2 प्रकार के लगे हैं, सफेद वाले भी और गुलाब वाले भी।
0: सफेद और लाल, बहुत अच्छी बात है। और क्या बताना चाहेंगे कि देखभाल किस तरह से करें, खाद देना चाहिए,
1: जी,
0: पानी?
1: मैं ऐसा होता है जैसे ज्यादा दिन का पेड़ा होगा, जैसे 1 साल का हो गया है, तो उसकी अपन कटाई छटाई भी क्या करते हैं, उसमें पेड़ अच्छा बना के देख रेख करो चाहिए, जैसे उनका जो डालियाँ सूख जाती है उनको अपन काट दो,
0: हाँ ठीक है।
1: हो जाएंगे।
0: और आज के समय में अगर किसी के पास ज्यादा जगह नहीं है, छोटी सी जगह है, तो किस तरह से हम पेड़ पौधे लगाएं, सब्जियां उगाएं, किस तरह से मैनेज करना चाहिए?
1: देखिए, यदि जगह पर्याप्त नहीं है आजकल तो सर मैम आप देखती होंगी छत पर भी आप उगा सकते हैं, हर पेड़ भी लगा
0: हाँ
1: सकते हैं अपने घर की लाल
0: हाँ
1: बागवान कर देते हैं, छत पे भी कर सकते हैं आप।
0: हाँ जिनके यहाँ पर ज्यादा जगह नहीं है, वो छत पर मिट्टी फैलाकर उसमें खाद वगैरह डाल के आप पौधे लगा सकते हैं,
1: जी मैम,
0: और धूप भी मिल जाएगी इस तरह से, और कुछ इस तरह से व्यवस्था की जाए कि उनकी देखभाल अच्छे से हो सके। बिल्कुल
1: जी मैम,
0: ठीक है लक्ष्मण जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद।
1: ओके, धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार
0: जी। नमस्ते मैम, मैं अरविंद बैरागी बोल रहा था।
1: जी अरविंद जी, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है?
0: ठीक हूँ मैम।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: मैं कुकड़ेश्वर जिला नीमच।
1: नीमच से। अरविंद जी, आज कार्यक्रम में विषय है घर में बागवानी, बात करते हैं उसके बारे में। आपके घर में फूल लगे हैं, पौधे लगे
0: जी,
1: हैं, कौन सा फूल पसंद है आपको?
0: मैं गुलाब भी लगा रखे मैं,
1: गुलाब के
0: और
1: लगाए हैं।
0: गुलाब और हाँ और हजारी के पौधे, जो गेंदा फूल होता है ना, वो
1: हाँ,
0: अपने घर के सामने।
1: तो इसी विषय पर आज कार्यक्रम में बात कर रहे हैं कि घर के अंदर बागवानी किस तरह से कर सकते हैं,
0: जी मैम, क्योंकि
1: कौन से पौधे लगा सकते हैं जिनको ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा
0: जी
1: मेहनत नहीं लगती और हरियाली देखकर घर में अच्छा लगता है। खेत अगर नहीं है, सभी के पास नहीं होते, तो घर के आंगन में किस तरह से हम पौधे लगा सकते हैं या छोटी मोटी सब्जियां लगा सकते हैं,
0: जी मैम,
1: उसी बारे में
0: अच्छा
1: बात कर रहे हैं।
0: विषय है। और प्रकृति से तो अगर मानव का जुड़ाव अगर रहेगा तो खुशियों की उसमें कमी नहीं रहेगी,
1: हाँ,
0: ये बात तो
1: प्रकृति से
0: है।
1: जुड़ाव होना चाहिए।
0: प्रकृति से जुड़ाव। और जहाँ तक बागवानी का और विषय का सवाल है मैम, मैं किस्मत वाला हूँ कि मेरे जो घर के सामने काफी अच्छी लंबी खासी अच्छी खासी जगह है,
1: अच्छा।
0: तो वहाँ पे फूलों का भी होता है, फूल तुलसी मैया का भी मैंने पौधा लगा रखा है, और फूल भी हजारी के और गुलाब के फूल लगे हुए हैं।

0: और एक बारहमासी का पौधा आता है वो हमेशा फूलता रहता है, उसको पानी गर्मी में पानी की आवश्यकता होती है तो उसको गर्मी में भी फूल आते हैं उसके।
1: अच्छा,
0: तो इस प्रकार से जामफल है, पपीता है, ऐसे पौधे घर के सामने काफी अच्छी खासी मात्रा में है मैम।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है
0: जी मैम।
1: ठीक है अरविंद जी, आप जुड़े कार्यक्रम से, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।

0: और इसी नगमे के साथ फ़ोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 11:58 हुए हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेशे इस घंटे की खास खबरें। भोपाल में ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन के चौथे दिन आज केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में आयोजित बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री सहित सदस्य देशों के अधिकारी प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जबकि मिस्र वर्चुअल माध्यम से जुड़ा है। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, इसे अपनाया जाएगा। साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। मध्य प्रदेश भवन ऑडिटोरियम नई दिल्ली में 10 अगस्त को साड़ी ड्रेपिंग और हैंडलूम डेमोन्स्ट्रेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भारतीय हस्तकरघा परंपरा को बढ़ावा देना और साड़ी पहनने की विभिन्न पारंपरिक और आधुनिक शैलियों को प्रोत्साहित करना है। प्रदेशव्यापी मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 का कल शुभारंभ हुआ, जो 8 जनवरी 2027 तक प्रत्येक शुक्रवार को संचालित होगा। यह अभियान शासन को सीधे जनता से जोड़ने, सेवा वितरण को सुदृढ़ बनाने और नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जुलाई 2026 सत्र की विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम कल घोषित कर दिए गए हैं। रुक जाना नहीं योजना की कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम करीब 60% और कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 52% से अधिक रहा। और मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के पन्ना, सतना और रीवा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि अन्य जिलों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के आसार हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम में सबसे पहले जिस गीत को हमने आपके लिए लिया है, वो गीत है स्वयंवर फिल्म से। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। राजेश रोशन ने इस गीत का संगीत तैयार किया है और बोल हैं गुलजार के। सुनना चाहते हैं हमारे ये सभी श्रोता कवाई सालपुरा ज़िला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव। साथ में इसी गीत को सुनने के लिए चिट्ठी लिख भेजी है छत्तीसगढ़ के हमारे इन सभी दोस्तों ने। दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला नगमा ये रहा।

0: और आपकी फरमाइश में अब हम शामिल कर रहे हैं हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय। दुबीहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से ही ये अगली चिट्ठी आई है अवधेश राय, प्रीति और नवनीत राय की। इन सभी दोस्तों ने सुनना चाहा है किशोर कुमार और आशा भोसले को। साहिर के बोल हैं राहुल देव बर्मन की धुन, फिल्म का नाम दीवार।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है,

और अब हम शामिल कर रहे हैं हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश। ये हैं ग्राम पंचायत बैठना से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, रेखा और धनेश्वरी वर्मा। सारा गांव से सुजन, सुहाद्रा, आयुषी और कृत वर्मा। अगली चिट्ठी आई है बोरखेड़ा उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक, साथ में हैं चेतन, दीक्षा, कुश और इनका पूरा परिवार। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में वो गीत जिसकी धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने, बोल हैं गुलशन बाबरा के, फिल्म का नाम है खेल खेल में।

और आपकी फरमाइश के हमारे अगले श्रोता हैं शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और स्वीट बेबी प्रियांशी मनवर। इन्होंने सुनना चाहा है कुदरत फिल्म का वो गीत जिसे आवाज़ दी है आशा भोसले ने। मजरूह ने इस गीत को शब्द दिए हैं और धुन तैयार की है राहुल देव बर्मन ने, और इसी गीत को सुनवाना चाहा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक और प्रतीक मल्होत्रा। साथ में है जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज ने भी इसी गीत को सुनवाने की हमें इसी गीत के लिए अपनी फरमाइश लिख भेजी है। तो ये रहा हमारे इन दोस्तों की फरमाइश का गीत।

ये गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इस गीत को शब्द दिए हैं और तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम मेरी जंग। इस गीत को सुनवाने के लिए अपनी चिट्ठी लिख भेजी थी हमारे इन सभी दोस्तों ने, कृष्णा नगर टीवी टावर नागपुर महाराष्ट्र से, नाना डोंगर दिवे, रमा ताई डोंगर दिवे, सीमा ताई, रीमा ताई, दीक्षा ताई और राहुल डोंगर दिवे ने। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने भी इसी गीत को सुनना चाहा था।

0: और इसी नगमे के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब ख़त्म हुआ। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 12:25 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
5: मालवा की शान
6: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत।
5: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। मालवा की शान
6: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत।
5: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: शाम 5:02 पर।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। 12:23 हुए हैं। ये समय है संग्रहालय से कार्यक्रम का। इसमें अब हम आपको सुनवा रहे हैं कामिनी का है कांतारे की 24वीं कड़ी।
2: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 24वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि शब्द के उस रहस्य को जानने के लिए जिससे उसका अर्थ प्रकट या प्रकाशित होता है पुनः महल से निकल जाते हैं। अब आगे

वज्र भैरव के जाते ही भर्तृहरि फिर अकेले हो गए। एक विचार ये आया कि अवंती लौट चलें, जहां महालय उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, जिसमें पहुंचकर वो मनुष्य नहीं रहते, अवंती नरेश हो जाते हैं। जहां उनके वक्ष से लिपटती शची के आलंगन में वो मुक्त आवेग और ऊष्मा नहीं रहती, जिसका अनुभव उन्हें पैठार में हुआ था।

0: कोई है? अरे कोई है?
1: स्वागत है अतिथि, कहाँ से आए हो?
0: मालव राज्य में महाकाल की नगरी उज्जैनी से आया हूँ।
1: अरे इतनी दूर से? तब तो अतिश्रांत क्लांत हो गए। आओ पर्णकुटी में बैठकर विश्राम कर लो। नंदिनी
2: जी,
1: इधर आओ पुत्री, अपनी माँ को साथ लिए आना।
2: जी।
1: द्वार पर अतिथि हैं, कुछ उपहार सामग्री भी।
2: मैं उपहार सामग्री लेकर आती हूँ।
1: अब चलें। योगी, भूमिपाल, विराज, बाहुज, क्या कहूँ तुम्हें, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
0: भर्तृहरि।
1: सुकल्पित, ललाम नाम है तुम्हारा, भर्तृहरि। किसने सुझाया?
0: उज्जैनी में देवज्ञ भास्कराचार्य हमारे पुरोहित हैं।
1: हैं? भास्कराचार्य? अरे वो तो मेरा सहपाठी रहा है, 8 वर्षों तक हम एक ही गुरुकुल में थे। आओ आओ बैठकर समाचार कहो भास्कर के, अब तो वो भी मेरी भांति वृद्ध हो गया होगा। कैसा है वो?
0: पूज्यवर, इतनी दूर की यात्रा करके आपके पास आया हूं, आपकी कृपा चाहता हूं। वाक का रहस्य जानने की उत्कट जिज्ञासा है मन में, आपका बड़ा यश सुना है।
1: जिस वांछा के लिए तुमने इतनी दूर और इतने दिवस की यात्रा की है, उसे तुरंत पाना चाहते हो? अभी विश्राम करो भर्तृहरि, इस विषय में मैं तुम्हें तदर्थ इत्यलम ज्ञान ही दे सकूंगा, क्योंकि यह वैयाकरण आगम का विभाग है, मैंने वेद शाखा का अध्ययन मनन किया है। हाँ, इस विषय की निष्णात आचार्य का पता मुझे अवश्य ज्ञात है, यदि तुम वहां तक पहुंच सको।
0: देव, जब यहां तक आ गया तो वहां तक भी पहुंच लूंगा, बताने की कृपा करें।
1: वत्स, वो एक स्त्री है।
0: ज्ञान पर पुरुष का एकाधिकार नहीं है पूज्यवर।
1: वह एक वेश्या है, तब भी जाना चाहोगे भर्तृहरि?
0: देव, शास्त्र वचन और अपने अनुभव के आधार पर मेरी मान्यता है कि स्त्री केवल जननी होती है, उसका वेश्या अथवा ब्राह्मणी होना तो केवल काल और परिस्थितिगत अवस्थाएं हैं।
1: भर्तृहरि, तुम विद्या के लिए सुपात्र हो, यह विद्या लुप्त हो रही है क्योंकि शुष्क और कठिन है। इस गंभीर और प्रसन्न विषय को समझने का प्रयास मैंने भी किया था, किंतु साध नहीं सका। सुयोग्य पात्र को सौंपे बिना विद्या नष्ट हो जाती है, यह सोचकर मैंने अपने एक योग्य शिष्य को इस दिशा में प्रेरित किया। जानना चाहोगे कि वह शिष्य कौन है?
0: अवश्य ही देव।
1: वो मेरा दामाद, मेरी पुत्री का पति है। 8 वर्ष पहले वो इस अध्ययन के लिए श्रीपुर गया था, वहां जाकर हीरा नाम की वेश्या का दास बनकर उसके खूंटे से बंध गया। नंदिनी 8 वर्ष से उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रही है। हीरा पारंगत है आगम, वाक्य, प्रकीर्ण, तीनों विषयों में।
0: पूज्यवर, आपने अपने जागृत को वापस लाने का कोई प्रयास नहीं किया?
1: किया था, कैसे न करता, हीरा की आवाज पहुंचा था, उसने मुझे जामात्र से मिलवाया भी था, द्वार पर ही बैठा था वो, मुझे चुपचाप एकटक देखता रहा, न बोला न बात की। मैंने भांति भांति से उसे समझाया, आग्रह अनुरोध किए, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जैसे वो हीरा के सामने अवश विवश हो।
0: और हीरा ने क्या कहा?
1: उसने कहा कि यदि वो जाना चाहे तो सहर्ष ले जाओ, मैं न किसी को बुलाती हूं और न किसी को रोकती हूं। जाने किस अभिचार से उसने जामात्र को मायाबद्ध कर रखा है। हीरा से ज्ञान प्राप्त करना बहुत

0: कठिन है। भर्तृहरि, फिर भी तुम चाहो तो प्रातः किसी दल के साथ हो जाना। 52 योजन है यहां से श्री पुरुषार्थ विपणक तीर्थ यात्री इसी मार्ग से निकलते हैं। तुम उज्जैनी महाकाल क्षेत्र से हो, वहां योगिराज कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी। तुम्हारे पास बोध है, धैर्य और विनम्रता भी है, कष्ट सहन करने की क्षमता भी है। यह वृद्ध ब्राह्मण तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना करेगा। मेरा एक स्वार्थ भी है।
1: कहे देव।
0: कदाचित तुम ही मेरे जामात्र का उद्धार कर सको।
2: बंधु, तुम्हें वो श्रीपुर में मिलेंगे। उनसे कहना कि नंदिनी प्रतिदिन उनकी प्रतीक्षा करती है। हीरा से भी कहना कि नंदिनी को उसके पति की भिक्षा दे दे।
3: तीर्थयात्रियों के एक दल के साथ भर्तृहरि श्रीपुर पहुंच जाते हैं। मंदिरों का ये नगर 3 व्यवसायिक भूमार्गों के मुहाने पर स्थित है। सार्थवाहों, व्यापारियों के लिए ये छोटा सा नगर एक पड़ाव है, जहां महीनों घर से निकले हुए यात्री अपनी थकान उतारने के लिए कुछ समय के लिए ठहर कर विश्राम करते हैं। इसलिए यहां सदा ही चहल पहल रहती है। भर्तृहरि ने वहां पहुंचने पर पहला दिन मंदिरों के दर्शन भ्रमण में बिताया और दूसरे दिन प्रातः वैश्या हीरा की खोज में निकल पड़े। उनकी भेंट एक मालिन से हुई।

0: क्षमा करें, आप महिषी हीरा की आवास का मार्ग बता सकती हैं?
1: मार्ग क्या बताना, मैं आपको उनके द्वार तक पहुंचा सकती हूं। किंतु क्यों, मुझे क्या मिलेगा?
0: मेरे पास तो कौड़ी दमड़ी तक नहीं है।
1: और चले हैं वेश्या के घर। मुझे क्या, दाहिनी ओर एक वेश्या विधि है, नासिका की सीध में चलते जाइए, सबसे अंत में उत्तरमुखी धवल सौध दिखेगा, बस प्रवेश कर जाइए। वहाँ मोगरे की मेड़ी सजाए जो भी भव्य व्यक्तित्व वाली स्त्री मिले, समझ लेना वही आपकी महिषी है। जाने से पहले यह भी सुन लीजिए, हीरा के आवास तक पहुंचने के मार्ग में रूप के अनेक द्वार पार करने पड़ेंगे योगी महाराज, कहीं अटक मत जाना। रूप की चिकनाहट में योग की फिसलन सभी ने देखी है।
0: संभवतः यही है हीरा का आवास, लेकिन इस विशाल उद्यान में तो कोई भी नहीं दिखता। किससे पूछूं, कैसे पता चले कि वो यहीं रहती हैं? कोई है, कोई है, अरे कोई है, चलो द्वार ही खड़खड़ाऊं। कुछ देर यहां बैठकर प्रतीक्षा कर लूं, शायद कोई हो जो आता हो।
2: कौन देश से आए जोगी, कहां तुम्हारा भाव, कौन तिहारे सर्ग सहारे, कहां धरोगे पांव?
0: किसका स्वर है और कहां से आ रहा है? संभवतः भवन के गवाक्ष से, वहां तो एक सुंदर स्त्री है, अवश्य यही हीरा होगी। उत्तर देश से आया जोगी, तत्व हमारा भाव, धरती हमारी सगी सहेली, माया के सिर पांव।
2: जोगी प्यास लगी हो तो आलिंद पार कर आंगन में आ जा, मैं अभी उतरती हूँ।

किंतु हीरा अभी तक नहीं आई। यहां कोई अन्य भी नहीं कि जिससे पूछने पर पता चले। वहां आंगन के द्वार से टिका खड़ा एक व्यक्ति है तो, लेकिन

0: वो तो अविचल संज्ञाहीन सा खड़ा है, आसपास की जैसे कोई सुध ही ना हो उसे। हाँ, स्मरण आया, शायद यही है देव कृष्णपाद का जामात्र, जिसे हीरा के मायापाश ने बांध रखा है।
1: हीरा के घर में स्वागत है तुम्हारा जोगी। बिराजे, अर्ध्य ग्रहण करें।
0: आपके कूप का जल बहुत मीठा है महेशी, मैं कृतकृत्य हुआ।
1: मैं इस वेश्या के यहाँ तुम्हारे आने का प्रयोजन जानने को उत्सुक हूँ।
0: महेशी, मैं यहाँ वाक के रहस्यों को समझने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं शब्द में अर्थ की प्रतीति के संयोजन सूत्र जानना चाहता हूँ। ये जानने की विकलता ही मुझे यहाँ लाई है।
1: तो तुमसे भी अर्थ लाभ की आशा करना व्यर्थ है। उधर देखो, वो जो पुरुष द्वार से टिककर खड़ा है, तुम्हारी ही भांति आया था। तुम योगी बनकर आए हो, वो ब्राह्मण बनकर पहुंचा था। मेरे अर्जित का बंटवारा करना चाहता था, अब मेरा बंधक है। ये ज्ञान अनेक आचार्यों को संतुष्ट करने के बाद मैंने अर्जित किया है। योगी, तुम पुरुष हो, नहीं समझ सकते कि गिलगिलाते हुई वासना को सहन करना कितना कठिन होता है। मुझे भी अपने ज्ञान का मूल्य चाहिए।
0: अधिक तो नहीं, किंतु पर्याप्त राशि है मेरे पास। मेरे पास गुप्त रूप से सहेजे कुछ अनमोल रत्न हैं, जिनके विक्रय से तुम ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकती हो।
1: योगी के पास रत्न, योगी के लिए उसका क्या मूल्य? और तुम ऐसी अकारथ बिना मूल्य की वस्तु देकर इतनी बड़ी निधि चाहते हो? तुम तो व्यापारी निकले।
0: फिर क्या चाहिए तुमको? मेरे पास जो भी है, मैं उसे देने को प्रस्तुत हूँ।
1: इस बंधक ब्राह्मण को देख रहे हो योगी? गुणनिधि नाम है इसका। अमरावती के अति प्रसिद्ध वेदाचार्य कृष्णपाद स्वामी का जामात है ये। इसकी पत्नी भी रूप शील संपन्न विदुषी बताई जाती है। बेचारी भाग्य का लेख भुगतती हुई मुझ पर दोष रख रही होगी, किंतु ऐसे दोष हम वैश्याओं के लिए सामान्य है। इसे जिस अनुबंध में मैंने बांध रखा है, वह तुम भी सुन लो।
0: आप कहें, मैं सुन रहा हूं।
1: वाक का सर्वांग ज्ञान मैंने आचार्यों को सभी प्रकार से संतुष्ट करके प्राप्त किया है। उनकी सेवा और संतुष्टि के लिए मैंने ना तो उनकी वय देखी और ना उनका रूप। इसी अनुबंध पर मैं अपने ज्ञान का विनिमय कर सकती हूँ। ये भौतिक साधना है योगी, देह और मन को संतुष्ट करना। असफलता तुम्हें भी इसी ब्राह्मण की तरह यहीं बांध कर रख छोड़ेगी।
0: मुझे सोचने का समय दे।
1: आज का बचा हुआ दिन और पूरी रात्रि है तुम्हारे पास सोचने के लिए। आज तुम मेरे अतिथि हो, यथासंभव सत्कार करूंगी। तुम चले गए तो उत्तर स्पष्ट है, और ठहरे रहे तब भी। उस तरफ वो पर्ण मंडप है ना, वहां जाकर विश्राम करो और सोचो तुम्हें क्या करना है।
0: कल जो भी हो, अभी मुझे दो संदेश पहुंचाने की अनुमति दीजिए।
1: कह डालो।
0: देवी, मैं यहां अमरावती से होकर आया हूं। वेदाचार्य कृष्णपाद स्वामी की पुत्री और तुम्हारे बंधक गुणनिधि की पत्नी नंदिनी ने तुमसे अपने पति की भिक्षा चाही है, और उसने तुम पर कोई लांछन नहीं लगाया।
1: और दूसरा संदेश?
0: दूसरा संदेश भी नंदिनी का ही है, अपने पति के लिए भेजा है उसने।
1: कहा होगा, मैं मृत्युशैया पर पड़ी हूँ, मुंह देखना हो तो चले आओ। यदि पति के हाथों मुखाग्नि नहीं मिली

0: नरक में भी ठोर नहीं मिलेगा। सुनो योगी, वैश्या के व्यापार में ये सारे अभिनय सामान्य हैं, प्रतिदिन सुने जाते। चलो तुम भी दोहरा दो। गुणनिधि, ये महाशय तुम्हारे लिए संदेश लाए हैं, कह डालो योगी।
1: कैसे हो विख्यात वेदज्ञ आचार्य विष्णुपाद स्वामी की रूप गुणशीला विदुषी पुत्री नंदिनी के पति?
0: मैंने तुम्हें केवल संदेश पहुंचाने की अनुमति दी है योगी, व्याख्यान की नहीं।
1: क्षमा चाहता हूं देवी।
0: मैं तुमसे 3 बार अपने लिए देवी का संबोधन सुन चुकी हूँ। स्मरण रहे, मैं देवी नहीं हूँ, मैं वैश्या हूँ। तुम मुझे वैश्या कहो या फिर मेरे नाम से पुकारो, हीरा।
1: क्षमा करें, मैं धृष्टता कर बैठा। कई आचार व्यवहार ऐसे हैं जिनसे मैं अनभिज्ञ हूं, अब से मैं कल्याणी संबोधन करूंगा।
0: चल होगा, मुझे सीधे वैश्या कहो या फिर हीरा, संदेश कहो।
1: हाँ गुणनिधि, तुम्हारी विदुषी पत्नी ने तुम्हारे लिए संदेश दिया है।
2: उनसे कहना कि नंदिनी प्रतिदिन उनकी प्रतीक्षा करती है। हीरा से भी कहना कि नंदिनी को उसके पति की भिक्षा दे दे।
0: हो गया तुम्हारा संदेश? चलो गुणनिधि। योगी, निर्णय करने के लिए प्रातः तक का समय है तुम्हारे पास, मैं कल आऊंगी।
3: हीरा के यहाँ कोई दुराव नहीं, छद्महीनता है। हीरा की स्पष्टता वक्र भी है और तीक्ष्ण भी। ऐसी स्त्री की थाह पाना कठिन है। सोचते रहे भर्तृहरि, हीरा से पार पाना भी एक चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार करना ही है। प्रातः जब वो अपने आवास से उतरकर आई तो उद्यान के लतागृह में भर्तृहरि उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे।
0: तो योगी, तुमने गुणनिधि के भविष्य को ही चुन लिया।
1: पुरुष के भाग्य को कोई नहीं जानता कल्याणी।
0: त्रिया के चरित्रों को भी कोई नहीं। ऐसा कहा गया है। अब ध्यान से सुनो, मैं 3 माह तुम्हारी पात्रता की परीक्षा करूंगी। इस अवधि में तुम्हें मेरा पूरा उपवन अम्लान, उर्वर और श्यामल बनाना है। तत्पश्चात मैं तुम्हें आगम, वाक्य और प्रकीर्ण में पारंगत बनाऊंगी। ये वेश तुम्हें छोड़ना होगा। योगी से रति की संगति नहीं बनती। मेरी वह तुमसे 10 वर्ष अधिक है। और यह भूलना मत कि ये वेश्या का घर है। वचन भंग और विश्वासघात को छोड़कर यहां कुछ भी वर्जित नहीं है।
3: बीस माह बाद भर्तृहरि अब वापस जा रहे थे महिष्मति के मार्ग पर। कंधे पर वही झोली, हाथ में वही लकुट, कंठ में रुद्राक्ष की माला और बढ़े हुए केश। अमरावती से उन्हें महिष्मति की ओर जाता हुआ सार्थवाह मिल गया था और सार्थवाह ने उन्हें ब्राह्मण मानकर साथ ले लिया। मार्ग में एक विश्राम स्थल पर सार्थवाह जब संध्या समय ठहरा हुआ था, तभी यात्रियों के दल में किसी पथिक के गुनगुनाने का स्वर भर्तृहरि ने सुना।
1: अरे, ये तो लोक गायक बसंत लगता है, वृंदा का भाई। बंधु, अपनी वाणी को मुक्त करो तो हमें भी विश्राम मिले।
4: जाति पुष्प समान उत्तम नर की दोए गति, कैसर चढ़े सुजान के जंगल।

0: चिपोरे झरे।
1: साधु साधु।
2: अवधूत महाराज नहीं, स्वयं राजा भर्तहरि।
1: बंधु तुम भले ही बसंत हो, किंतु मैं यहां अभी एक ब्राह्मण हूं। भेद खुला तो भोजन नहीं मिलेगा।
2: आप फिर बिलमा गए?
1: अब फिर लौट रहा हूं। भला हुआ कि तुमसे भेंट हो गई। अच्छा ये बताओ कि पैठार कब गए थे? वहां सब लोग कैसे हैं?
2: आपके लिए एक सुसंवाद है। शची ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया है।
1: अरे वाह, तुमने तो मुझे एक अत्यंत आह्लादकारी सूचना दी है गायक। कब गए थे उज्जैनी?
2: शची उज्जैनी में नहीं, पैठार में है। आपके जाने के कुछ दिन बाद वो पैठार चली गई थी।
1: कोई असुविधा थी उसे राजभवन में?
2: पता नहीं, शायद इसलिए कि वनवासियों को भवनों के जीवन का अभ्यास नहीं होता।
1: गायक अब किधर जाने के लिए निकले हो?
2: देव, मुझे चारुमित्रा का संदेश मिला है। वो कुछ पदों का आशय मुझे समझाना चाहती हैं। शीघ्र बुलाया है, सो वहीं जा रहा हूं।
1: क्या ही अच्छा हो कि तुम एक दिवस भर उज्जैनी का आतिथ्य स्वीकार करो। आगे की यात्रा के लिए वहां वाहन आदि की व्यवस्था हो जाएगी।
2: तब आप क्यों पद यात्रा कर रहे हैं? नहीं जानते कि वाहन आदि का सुख प्रिय मिलन की आशा के सामने तिनके के समान तुच्छ है।
1: तो तुम्हारी यात्रा शुभ हो गायक। प्रिय से मिलने के जिस सुख की ओर तुमने जो संकेत किया है, उसका मर्म राजा महाराजा नहीं जान सकते। संभव हो सके तो वहां से लौटते हुए उज्जैनी अवश्य आना। अभी हमारी भेंट अधूरी रह गई है गायक। एक प्रश्न अभी भी अनसुलझा है। चारुमित्रा के प्रति तुम्हारा ये प्रेम है या फिर आदर? उसने मुझसे तुम्हारी चर्चा बहुत आत्मीय भाव से की थी।
2: देव, आपसे असत्य नहीं कहूंगा। चारुमित्रा मेरी सांसों की गति है। उसे आप जो भी नाम दें, प्रेम कहें या प्रमाद उन्माद, उसकी स्मृति के साथ जब मैं चलता हूं तो न थकान होती है और न भूख प्यास शीत घाम का ही प्रभाव होता है।
1: चारुमित्रा भी तुम्हें चाहती है?
2: निश्चय ही महाराज, अन्यथा मुझे बार बार क्यों बुलाती?
1: इससे प्रेम का होना सिद्ध नहीं होता बसंत। ये तुम्हारी कला के प्रति सराहना और सम्मान का विषय भी तो हो सकता है।
2: मैं जंगल का रहने वाला वनवासी ये सारे दंड फंदों को नहीं जानता। ऐसी जांच परख तब होती है जब प्रेमी से कुछ पाने की प्रत्याशा हो। मैं अपनी चाह से संतुष्ट हूं। चारुमित्रा से मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना रूप ना धन। जितना साथ मिले उतनी ही मेरी निधि है। राजन, प्रिय के साथ बिताया हुआ एक क्षण भी पूरा जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। दर्शन मात्र में प्रेम की संपूर्णता हो जाती है।
1: तुम ठीक कहते हो गायक।
3: बसंत से ये जानकर कि शची ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, राजा भर्तृहरि प्रसन्नता से भर जाते हैं।

0: अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखी उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 24वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार चेतना भारद्वाज, भर्तृहरि अरविंद बिलगैया, कृष्णपाद विजय दिंडोरकर, मालिन नीति पांडे, हीरा शिवांगी पवार, बसंत बालेंद्र सिंह और नंदिनी अक्षता राजन। परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ढौंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।
1: संग्रहालय से, इसमें भी आपने कामिनी काय कांतारे की 24वीं कड़ी का प्रसारण सुना।

0: प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 12:58 होने जा रहे हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: भोपाल में ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन के चौथे दिन आज केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में आयोजित बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री सहित सदस्य देशों के अधिकारी प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जबकि मिस्र ने वर्चुअली सहभागिता की है। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, को अपनाया जाएगा। साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। मध्य प्रदेश भवन ऑडिटोरियम नई दिल्ली में 10 अगस्त को साड़ी ड्रेपिंग एवं हैंडलूम डेमोंस्ट्रेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारतीय हथकरघा परंपरा को बढ़ावा देने तथा साड़ी पहनने की विभिन्न पारंपरिक एवं आधुनिक शैलियों को प्रोत्साहित करना है। प्रदेश में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान 8 जनवरी 2027 तक चलाया जाएगा। प्रत्येक शुक्रवार को संचालित यह अभियान शासन को सीधे जनता से जोड़ने, सेवा वितरण को सुदृढ़ बनाने तथा नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। बारिश के बीच राजधानी भोपाल में मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बना हुआ है। अब तक डेंगू के 51, चिकनगुनिया के 14 और मलेरिया के 8 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से एहतियात बरतने की सलाह दी है। और मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के पन्ना, सतना और रीवा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि अन्य जिलों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के आसार हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। एक बज चुके हैं, अब प्रस्तुत है महिला सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र का योगदान है।

बूढ़े भारत में भी आए, फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं हूं स्मृति और मैं पुनः हाजिर हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा में, जिसमें होंगी ढेरों बातें और गीत संगीत। तो बिना देर किए शुरू करते हैं कार्यक्रम महिला सभा। श्रोताओं, हमारे देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी केवल अधिकारों का उपयोग करना नहीं है, अपितु अपने कर्तव्यों का पालन करना भी है। हमें अपनी प्रकृति, अपने कानून, देश में बनाए गए नियम, शांति, सुरक्षा, स्वच्छता एवं देश की अखंडता को बनाए रखने में अपना पूरा योगदान देना चाहिए और विकट परिस्थिति आने पर एकजुट होकर समस्या का हल या निवारण भी करना चाहिए। जैसा कि हमने अभी कुछ ही वर्ष पूर्व कोरोना काल में एक साथ मिलकर कोरोना नामक महामारी से जंग जीती है, और इससे भी बड़ी महामारी गुलामी, जी हाँ गुलाम भारत, विदेशियों ने अपने हाथ की कठपुतली बनाकर रखा था हमें, जिससे उभरने के लिए ना केवल पुरुष बल्कि हमारे देश की महिलाओं ने भी अपने शौर्य और साहस का अद्भुत

परिचय दिया जिसका देश सदैव ऋणी रहेगा। तो आइए आज हम बात करते हैं उन महान वीरांगनाओं की जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सीधे फिरंगियों से मुकाबला करने को जंग छेड़ दी थी। जी हाँ बहनों, भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। जब अनेकों क्रांतिकारी पुरुष जेल में बंद कर लिए गए, तब उनकी कमान हमारी माता और बहनों ने संभाली थी, खुद रैली निकाली और जुलूसों का नेतृत्व किया एवं लोगों को फिरंगियों के खिलाफ एकजुट करती गईं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी अपनाया, क्रांतिकारियों के पास गुप्त संदेश पहुंचाने लगी। कितनी ही महिलाओं ने तो जेल की सजा भी सहज ही स्वीकार कर ली, लेकिन आंदोलन से पीछे नहीं हटी। जैसे कि अगर हमारे देश के किसी भी बच्चे से पूछ लिया जाए कि झांसी की रानी कौन है, तो वह सहज ही बता देगा कि रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चने चबाए और धूल चटवाई। इन्हीं के बीच रानी दुर्गावती, झलकारी बाई, मातंगिनी हाजरा इत्यादि ऐसी वीरांगनाएं हैं। साथ ही कुछ अन्य महिलाएं हैं जिनका नाम लेना चाहूंगी, जैसे कि अरुणा आसफ अली, मुंबई के गोपालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराया और आंदोलन को नई दिशा दी। उषा मेहता, गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाकर पूरे देश में आंदोलन की खबर पहुंचाई। सुचेता कृपलानी, भूमिगत संगठन और जनगणना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सरोजनी नायडू, जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं को भी स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय चेतना जगाई, जिसके चलते कई बार जेल भी गई। तो बहनों, ये रही हमारे देश की महिलाओं की शौर्य गाथा, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार महिलाओं ने अपने देश की खातिर बुद्धि और विवेक के साथ साहस का परिचय दिया और इतिहास में अमर हो गई। मुझे यकीन है कि इनके वंशज जहाँ भी होंगे तो अपने पूर्वज के द्वारा किए गए इस महान कार्य से आज भी गौरवान्वित हो रहे होंगे। श्रोताओं, हमारी बातें अभी और होंगी, इसके पहले सुने यह देशभक्ति गीत। फिल्म है कर्मा, आवाज दी है कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज एवं साथी कलाकारों ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हम पुनः अपनी बातों में आते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका के बारे में बात करने। लेकिन अब हमसे बात कर रही हैं बघेली साहित्यकार श्रीमती इंदिरा अग्निहोत्री। तो आइए सुने उनसे यह भेंट वार्ता स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका।

0: इंदिरा जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार,
0: कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी
0: इंदिरा जी, आज हम आपसे बात करना चाहेंगे स्वतंत्रता संग्राम में हमारी बहनों का, हमारे देश की महिलाओं की क्या भूमिका रही है। तो इस विषय में आज आप हमारी बहनों को थोड़ा सा बतलाइए।
1: बिल्कुल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है।
0: बिल्कुल,
1: वे न केवल आंदोलन में शामिल हुई बल्कि पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर जेल भी गईं। महिलाओं ने लाठियां खाई, अपनी संपत्ति गवाई और भारत की आजादी के लिए वर्षों जेल की काल कोठरी में बिताई। जेल जाने वाली मुख्य महिला स्वतंत्रता सेनानी में पहला नाम आता है कस्तूरबा गांधी का। महात्मा गांधी की धर्मपत्नी जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुणे के आगा खां पैलेस में कैद रही और वहीं उनका निधन हुआ। दूसरा नाम आता है सरोजिनी नायडू का। भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह, धर्शाना और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई बार जेल गईं। फिर तीसरा नाम आता है अरुणा आशिफ अली। 1942 में मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराया, भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया और जेल भी गईं। फिर चौथा नाम आता है कमला नेहरू का। कमला नेहरू जवाहरलाल नेहरू की पत्नी।
0: बिल्कुल,
1: जिन्होंने विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। फिर पांचवा नाम आता है सुचेता कृपलानी का। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रही, महीनों तक भूमिगत रहने के बाद 1944 में गिरफ्तार हुई। छठवा नाम आता है फिर स्वरूप रानी नेहरू का। स्वरूप रानी नेहरू मोतीलाल नेहरू की पत्नी, जिन्होंने लाठी चार्ज का सामना किया और जेल की सजा काटी।
0: बिल्कुल,
1: महिला सेनानियों का मुख्य योगदान रहा सशस्त्र क्रांति। भीखाजी कामा ने विदेश में भारत का झंडा फहराया। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने आजाद हिंद फौज की झांसी की रानी रेजिमेंट का नेतृत्व किया। क्रांतिकारी गतिविधियां इस तरह रही, कनकलता बरुआ और मातंगिनी हाजरा जैसी वीरांगनाओं ने पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए तिरंगे को झुकने नहीं दिया।
0: बिल्कुल,
1: सत्याग्रह और धरने, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारों महिलाओं ने शराब और विदेशी सामान की दुकानों की पिकेटिंग धरना की, गुप्त रेडियो संदेश भी दिया। उषा मेहता ने 1942 के आंदोलन में दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाया ताकि जनता तक खबरें पहुंचाई जा सके।
0: बिल्कुल,
1: हम बहनों को अपने देश के प्रति गहरा सम्मान और समर्पण होना चाहिए, तभी हमारे राष्ट्र का विकास होगा। जैसा कि महिलाओं का योगदान हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए कम नहीं रहा, जितने आप पुरुषों ने सहयोग दिया स्वतंत्रता के लिए, उतना ही महिलाओं ने भी योगदान दिया। उनका भी हम नाम बहुत गौरव से लेते हैं और हम यही अपने बहनों को कहना चाहते हैं, अपने देश के लिए कहना चाहते हैं कि हमें अपने देश के प्रति गहरा सम्मान और समर्पण होना चाहिए, तभी तो राष्ट्र का विकास होगा। अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठा होनी चाहिए, अपने कामों में ईमानदारी से पालन करना चाहिए और सबसे जरूरी बात एकता की होती है। अगर हमारे देश में एकता होगी तो दूसरा देश कोई वार नहीं कर सकता है, सेंध नहीं मार सकता है।
0: बिल्कुल,
1: हमें अपने देश के नागरिकों के साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना चाहिए, यही हमारी मन की भावनाएं हैं।
0: बिल्कुल,
1: और बहनों के प्रति हम सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं जो वीरांगनाएं हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए लाठी खाई, जेल गई, बहुत बहुत कष्ट से आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, जिसमें हम सुख चैन से

0: रह सकते हैं, जी सकते हैं, चल सकते हैं और हर काम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल इंदिरा जी, थोड़े ही समय में आपने हमारी बहनों के संघर्ष की सारी गाथा को सुनाया। हमारी बहनें इससे सीख लेंगी और अपने देश के प्रति उनकी भी भावना समर्पण आएगा। एक साथ मिलकर संघर्ष करने की, किसी भी विषम परिस्थिति में साथ रहने की जरूर प्रेरणा मिलेगी। हमारे कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, जब बात चल रही है महिलाओं के शौर्य की, तो हम बाकी क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं के बारे में भी जानते हैं, जिन्होंने अपनी सूझबूझ एवं से देश में अपना नाम कमाया है। आज अगर देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां हमारी बहनों की मौजूदगी ना हो, जैसे जल सेना, थल सेना, वायु सेना, शिक्षा जगत, खेल जगत, विज्ञान जगत, चिकित्सा जगत, राजनीति और अन्य सारी जगहें। श्रोताओं, महिलाओं को थोड़ी आजादी और अपनों का साथ मिल जाए तो वह आसमान की ऊंचाई को भी नाप सकती हैं। इस बात को सिद्ध किया है हमारी बहनों ने, इस देश की बेटियों ने, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स जैसी बेटियों ने। इन्हीं के बीच हम बात करते हैं देश की पहली महिला पायलट सरला ठकराल। जी हाँ, सरला ठकराल के बारे में। सन 1936 में 21 साल की उम्र में साड़ी पहनकर उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला पायलट बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए बात करते हैं सरला ठकराल के बारे में कुछ प्रमुख बातें। सरला ठकराल को पहली महिला पायलट का लाइसेंस मिला था। उन्होंने जिप्सी मॉथ विमान भी उड़ाया है। वे लगभग 1000 घंटे की उड़ान भर चुकी थी और आगे व्यावसायिक पायलट बनने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उनके पति की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण एवं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आगे का सपना उनका अधूरा ही रह गया। लेकिन इसके बाद उन्होंने चित्रकला और फैशन डिजाइन में अपनी पहचान बनाई। सरला ठकराल भारतीय महिलाओं के लिए साहस, आत्मविश्वास और नए रास्ते बनाने की प्रेरणा स्रोत मानी जाती हैं। आखिर में कहेंगे कि सरला ठकराल भारतीय विमान इतिहास की अग्रणी महिला थी, जो कई क्षेत्रों में अपना नाम और पहचान बनाई है। बहनों, इसी के साथ एक और गीत का आनंद लिया जाए। 1970 में आई फिल्म महबूब की मेहंदी, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर, हेमलता और साथी ने।

0: श्रोताओं, बरसात का मौसम हो तो जाहिर सी बात है कि चटपटा खाने का मन करता ही है, और हमारे बच्चे भी जब खेलकर कोचिंग स्कूल से थके खेलकर या कोचिंग या फिर स्कूल से थके हारे आते हैं और अब घर पर भी बैठकर पढ़ाई करनी है, तब उन्हें छोटी सी भूख परेशान करती है, उनकी जरूरत होती है स्वल्प आहार की। ऐसे में हम उन्हें भारी खाना नहीं दे सकते, क्योंकि भारी भोजन लेने के बाद उन्हें नींद सताने लगेगी और पढ़ाई में व्यवधान आएगा। इसलिए हम घर में कुछ छोटे हल्के फुल्के जो फटाफट बनकर तैयार हो जाएं, ऐसी डिश तैयार करते हैं। तो आज एक नया व्यंजन बनाते हैं, मखाना भेल, जिसके लिए हमें चाहिए मखाना आधा कप, बारीक कटा प्याज आधा कप, बारीक कटा टमाटर आधा कप, खीरा बारीक कटा हुआ आधा कप, एक चम्मच कुटी हुई मूंगफली, मुरमुरे एक बड़ा कप, जीरा आधा छोटा चम्मच, इमली की चटनी छोटा चम्मच, पुदीने की चटनी छोटा चम्मच, धनिया बारीक कटा, मिर्च बारीक कटा, आधा चम्मच नींबू का रस एवं सेव सजाने के लिए। अब इसको बनाना कैसे है यह भी जानते हैं। तो मखानों को थोड़े से घी में भून लें और मुरमुरों को बिना घी के भूनें। अब बड़े बॉल में मखाने डालें और इसमें सारी कटी सब्जियां भी मिला दें। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें इमली की चटनी एवं पुदीने की चटनी को मिलाएं। मूंगफली और मुरमुरे, हरा धनिया अच्छी तरह से मिलाएं और अब तैयार भेल में सेव को मिलाएं। सेव को मिलाकर फौरन खाएं, क्योंकि ये ज्यादा देर नहीं रखा जा सकता। बहनों, इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक दीजिए अपनी बहन स्मृति को इजाजत। नमस्कार।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: मालवा की शान,
3: आकाशवाणी इंदौर से

वाणी मध्य प्रदेश से 1:30 हो चुके हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं लोक संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र का योगदान है और कलाकार हैं उमाशंकर कुशवाहा। इस कार्यक्रम की पहली भेंट ये रही जो है एक वर्षा गीत।

उमा शंकर कुशवाहा की आवाज में आप सुन रहे थे झूला की, और आइए अब सुनते हैं अगला भजन। थोड़ी ही देर में

उमाशंकर कुशवाहा की आवाज़ में आप सुन रहे थे दादरा, और इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं प्रिया त्रिपाठी। आप सुनेंगे इनकी आवाज़ में चंद भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रिया त्रिपाठी के गाए भजन। इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: मालवा की शान
2: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत,
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत फिल्म मिशन कश्मीर से। शंकर महादेवन और जसविंदर नरूला का गाया ये गीत है, साथ दिया है सुनिधि चौहान और साथियों ने। राहत इंदौरी के बोल हैं और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

मिशन कश्मीर के साथ इस फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें और स्वयं से प्रश्न करें कि उनके कार्यों से देश को किस प्रकार लाभ हो सकता है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। श्री मोदी ने ये बातें IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है। उन्होंने कहा कि स्नातक विद्यार्थियों द्वारा अगले 30 से 35 वर्षों में किए जाने वाले कार्य का देश के विकसित भारत के मार्ग पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा।
1: आज आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है, क्योंकि ये आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने यहां कहा कि न्याय केवल निर्णय नहीं है, न्याय समान अवसर है, न्याय समानता है, न्याय विश्वास है। उन्होंने कहा कि न्याय प्रत्येक नागरिक के भीतर यह भावना उत्पन्न करता है कि संविधान उसके साथ खड़ा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण इसी संवैधानिक भावना को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। श्री मेघवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जनजाति परंपराओं और सामाजिक विविधताओं का अद्भुत संगम है। राजा भोज की सुशासन परंपरा और देवी अहिल्याबाई होलकर की न्यायप्रिय शासन व्यवस्था हमें प्रेरणा देती है कि सुशासन का वास्तविक आधार न्याय ही है। भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रेक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। आज के कार्यक्रम की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। अन्य सदस्य देशों की ओर से वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि मिस्र वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में जुड़ा हुआ है। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून की बेरुखी के बीच आज पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम

विभाग ने इन तीनों जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 इंच तक बारिश का अनुमान जताया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के 52 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत कल ग्वालियर में जिला स्तर से 60 अधिकारी मैदान में उतरे। घाटी गांव में अभियान के तहत पहला जिला स्तरीय जन विश्वास शिविर लगाया गया। प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री और आगर मालवा के प्रभारी नागर सिंह चौहान कल जिले के प्रवास पर रहेंगे। जबलपुर में 18 वर्ष तक के बच्चों और किशोरों के लिए निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन कल जिला अस्पताल में किया गया। शिविर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया था। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में चल रहे विश्व स्तनपान सप्ताह का समापन हो गया है। जन्म के बाद शिशु को स्तनपान कराने के लिए जागरूक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए गए। शिवपुरी जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल जिला स्तरीय पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
1: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
0: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही सीआईडी ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है, जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
4: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को, क्रिप्को, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है। और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।

0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है, जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
2: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष

यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं चांदनी फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत, जिसे आवाज दी है सुरेश वाडेकर और अनुपमा देशपांडे ने। संगीत है शिवहरि का और बोल हैं आनंद बख्शी के। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिवाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनू राज शिमाली। और इसी गीत को पसंद किया है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, डूमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सरीमपुर बक्सर से राज एंड डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। साथ ही जेल रोड दिल्ली से हमें पत्र लिखा है लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती ने। तो आइए श्रोताओं, उनकी पसंद का सुनते हैं चांदनी फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं साथी फिल्म का बहुत ही खूबसूरत नगमा कुमार सानू की आवाज़ में। साथ हैं विपिन सचदेवा, बोल हैं हसरत जयपुरी की और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं जरूर वरूड महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाड़ूदे, मीनाक्षी रजनी कार्तिक और युवराज, और छत्तीसगढ़ से देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रचक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। तो सुने साथी फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपका पसंद का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है आधी रात की बात। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं, प्रेम धवन का गीत है और संगीत चित्रा गुप्त का। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं महाराष्ट्र से बसंती जी हजारी, प्रमोद हजारी और परिवार के उनके सभी सदस्य, और कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिक पलख और करण, गीतू, निहारिका, हरप्रीत, वंश बत्ता और उनके सभी सदस्य।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं आपकी पसंद के गीत कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौण, मोहम्मद शादाब खत्री, इन्होंने पत्र लिखा है वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से। और एक और पत्र हमारे हाथ में है यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार ने, साथ है जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार। ये सब

शुदा सुनने के ख्वाहिशमंद है। हीरा पन्ना फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और सुरों में पिरोया है आर डी बर्मन ने।

राजा हिंदुस्तानी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में समीर के बोल हैं और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने। इस गीत को पसंद किया है सनावत से राजकुमार बोडाना, रानू लक्ष्मी और यश कुमार बोडाना, रिंगिनी छत्तीसगढ़ से विनेश वर्मा, करुणा वर्मा। और एक और पत्र हमारे हाथ में है जिसे लिखा है गौरीनगर इंदौर से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या, करिश्मा कामले। तो आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। स्वयं से यह प्रश्न करें कि उनके कार्यों से देश को किस प्रकार लाभ हो सकता है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भोपाल में आयोजित ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स देश केवल आर्थिक या राजनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि वे साझी संस्कृति, शांति, पारस्परिक सम्मान और समावेशी विकास की गहरी भावना से एकजुट हैं। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा रुक जाना नहीं सहित अन्य परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। 10वीं में 59.89% एवं 12वीं में 52.44% परीक्षार्थी

सफल हुए हैं। मध्य प्रदेश भवन ऑडिटोरियम नई दिल्ली में 10 अगस्त को साड़ी ड्रेपिंग एवं हैंडलूम डेमोंस्ट्रेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारतीय हथकरघा परंपरा को बढ़ावा देने तथा साड़ी पहनने की विभिन्न पारंपरिक एवं आधुनिक शैलियों को प्रोत्साहित करना है। और मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के पन्ना, सतना और रीवा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि अन्य जिलों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के आसार हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। एक नज़र हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के शेष कार्यक्रमों पर। शाम पाँच बजकर दो मिनट पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा वाणी। हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6 बजे और रात्रि 8:30 पर। शाम 7:30 पर प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें आप सुनेंगे भेंटवार्ता। विषय रहेगा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु उपयोगी उन्नत कृषि यंत्र, और जानकारी देंगे डॉक्टर SZ सिद्दीकी। हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8 बजे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे इस सप्ताह संसद में कार्यक्रम, और 8:15 पर होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। रात्रि 9:30 पर हम प्रसारित करेंगे कार्यक्रम संस्कृति भारती, और रात्रि 10 बजे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे गटिम मालप्पा का ख्याल गायन। ये दोनों कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 3:02 होने को है। मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। सांध्यकालीन सभा में 5 बजे कार्यक्रम को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक हमारा ये प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युव वाणी।

0: नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त अनुष्का।
1: और मैं काजल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिन है शनिवार का और आज बारी है आपके सबसे पसंदीदा कार्यक्रम की, जिसका नाम है फोन इन प्रोग्राम। तो आज हम करेंगे आपसे ढेर सारी बातचीत और सुनेंगे आपके पसंदीदा गीत।
0: तो श्रोताओं, हमसे कनेक्ट होने के लिए आप इन नंबर्स पे फ़ोन कॉल कर सकते हैं। तो पहला नंबर है 0731-271-0223 और इसी के साथ हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0731-271-0224।
1: साथियों, आपके लिए हम नंबर दोहरा देते हैं। हमारा पहला नंबर है 0731-271-0223 और 0731-271-0224।
0: तो श्रोताओं, इसी के साथ आपको ये भी बता दें, और काजल, हमें जैसा कि पता ही है कि आज हमारे लिए बहुत दो खास दिन हैं, जो कि दो ऐसे हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए।
1: बिल्कुल करनी चाहिए। और उनमें से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
0: बिल्कुल। और श्रोताओं, इतिहास सिर्फ किताबों में दर्ज तारीखें नहीं होता, बल्कि वो कहानियां होती हैं जो हमें बताती हैं कि आज़ादी की एक सुबह के पीछे कितने संघर्ष और कितने सपने छिपे थे। आज बात एक ऐसे ही ऐतिहासिक अध्याय की है, जो कि है भारत छोड़ो आंदोलन।
1: बिल्कुल अनुष्का। तो साल 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ता चला जा रहा था। इसी माहौल में 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान, जिसे आज अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, वहां महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था।
0: और इसी आंदोलन के साथ गूंजा वो ऐतिहासिक नारा, करो या मरो, यानी अब आज़ादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं।
1: बिल्कुल। अंग्रेज़ों ने आंदोलन को रोकने के लिए अगले ही दिन महात्मा गांधी समेत कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नेतृत्व और गिरफ्तार करने के आंदोलन, उसका जो आंदोलन था वो रुका नहीं, बल्कि ये आम जनता का आंदोलन बन गया।
0: यानी आंदोलन की कमान सिर्फ नेताओं के हाथ में नहीं रही है, ना काजल?
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने अनुष्का। और इसी के साथ युवाओं, छात्रों, महिलाओं और आम नागरिकों ने भी आगे बढ़कर आंदोलन में हिस्सा लिया, उसे जीवित रखा। जगह जगह लोगों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई और अपने अपने स्तर पर स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाया।
0: यही तो इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत थी, एकता। जी हाँ, यूनिटी। अलग अलग वर्गों के लोग एक ही संकल्प के साथ खड़े थे।
1: और भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत को साफ संदेश भी दे दिया था कि अब भारत गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, बिल्कुल भी तैयार नहीं है वो इस चीज के लिए। और इस आंदोलन ने स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई को नई दिशा और नई ऊर्जा भी दी।
0: श्रोताओं, भारत छोड़ो आंदोलन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि लाखों लोगों के साहस, संघर्ष और दृढ़ संकल्प का परिणाम है।
1: तो आइए उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को हम और उन आम नागरिकों को हम नमन करते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना इतना बड़ा योगदान दिया।
0: और याद रखिए दोस्तों, आज़ादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन इसकी कीमत और इसके महत्व को समझना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
1: इसी संदेश के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के उन वीरों को हमारा नमन। और अब इसी सुंदर सी बात के बाद आइए सुन लेते हैं एक सुंदर सा गीत।

0: तो आइए श्रोताओं, जानते हैं कि आज के हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो।
0: हेलो फ्रेंड्स, हेलो, नमस्ते।
1: हेलो, हेलो, नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: क्या बात है, कैसे हैं आप भगवान सिंह जी?
1: बहुत अच्छे हैं दीदी, अभी आपका कार्यक्रम सुन रहे थे, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी भारत छोड़ो अभियान के तहत।
0: जी, हमारा काम है ये। और इसी के साथ हमें जल्दी से ये बता दीजिए कि आपकी आज की फरमाइश क्या है।
1: फिल्म का नाम है दिल का रिश्ता और गाने के बोले साजन साजन।
0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद इस गाने की याद दिलाई है किसी ने। दिल का रिश्ता हमने भी बहुत ही पहले देखी थी और आज कई दिनों बाद इस फिल्म का गाना सुनने वाले हैं। क्यों अनुष्का? तो कोई खास वजह इस गाने के पीछे?
1: नहीं नहीं दीदी, वो अच्छा लगता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है ये गीत।
0: क्या बात है, तो फिर चलिए ठीक है, आपको पसंद है ये गाना तो फिर हम आपको सुनवा देते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कॉल रिसीव करने के लिए।
0: धन्यवाद।

0: कुछ भी। तो चलिए दोस्तों, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ
0: जी। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप?
1: मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश।
0: क्या बात है, शिमला से आप बात कर रहे हैं, मतलब ये सुन के ही मेरा तो एकदम दिल खुश हो गया सर। बताइए सबसे पहले तो आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी, गाने की बोल है चाहा है तुझको, और मूवी का नाम है मन।
0: क्या बात है। तो अभी है? कैसा मौसम है शिमला में? सबसे पहले तो मेरी यही रुचि है कि मैं ये जान सकूं।
1: शिमला का मौसम साफ है और बीच बीच में बारिश होती है, और हल्की फुल्की बारिश होती है, और बादल छाए है, और मस्त जो है ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आप घूमने आएंगे शिमला तो बहुत अच्छा रहेगा। ठंडी
0: जी, मैं एक बार तो आ चुकी हूँ वैसे, पर जब मैं इतना घूम नहीं पाई थी, तो अब तो काफी सारा डेवलपमेंट हो गया होगा नहीं शिमला में?
1: जी जी, शिमला में अब काफी डेवलपमेंट हो गया। अब तो हर चीज की सुविधा है, होटल की बुकिंग है, अगर आप होटल में रहना चाहते हैं तो कमरा भी ले सकते हैं, और खाने पीने का भी सब कुछ है, और चिड़ियाघर
0: और मतलब हाल ही में काफी सालों में ये भी देखने में आया कि टूरिज्म भी काफी बढ़ गया है, मतलब बहुत सारे लोग विजिट कर रहे हैं इन दिनों हिमाचल को।
1: जी जी जी

0: जी
1: तो उससे भी काफी फर्क पड़ा होगा ना वहां की ग्रोथ पे, इकोनॉमी पे।
0: फर्क तो पड़ा है, क्योंकि क्योंकि इससे क्या होता है, जितनी हवाई आज जो गाड़ियां होती है तो उससे वायु प्रदूषण जो है फैल जाता है, क्योंकि काफी लोग जो है आते हैं, कुछ हिमाचल के भी अपने अपने घरों में गाड़ियां रखी, तो फिर कुछ लोग जो है बाहर के भी आ जाते हैं घूमने, टूरिस्ट।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। और जो पहाड़ वाली जगह होती है वो वैसे ही मतलब काफी सेंसिटिव
2: सेंसिटिव
1: होती है,
2: होती
1: नहीं
2: हैं।
1: काजल?
2: बिल्कुल बिल्कुल सही। ये जो बात इन्होंने अभी हाईलाइट की है, ये भी बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि हम सभी शहरों से, बहुत धूल मिट्टी भीड़ और पोल्यूशन वाली जगहों से पहाड़ों में जाते हैं सुकून के लिए, फ्रेश एयर के लिए, पर वहाँ पर भी इतनी भीड़ होने की वजह से वहाँ की भी जो प्रकृति है उस पर भी असर पड़ता है। तो इस
0: जी
2: बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी जिम्मेदारी उसे बचा कर रखना।
1: बट अब तो
0: जी
1: ऐसा
0: जी
1: है कि हिमाचल में भी बहुत सारी ऐसी छुपी हुई जगह है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: पर मुझे लगता है कुछ ऐसी जगहें रहनी भी
1: बिल्कुल, जो
2: चाहिए।
1: कभी फेमस ना हो। चलिए
0: जी,
1: सर जी,
0: हमारे शिमला जिले की कोट खाई, वो छुपी हुई जगह है, और उसका जो है बहुत सुंदरता है, वहाँ पेड़ पौधे सब कुछ है, और पहाड़ों भी वहाँ हरी हरी हरियाली है, लेकिन जो प्रॉपर शिमला की बात है तो वहाँ तो भीड़ ज्यादा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर,
2: चलिए, हम आशा करते हैं कि हिमाचल की, शिमला की, और हमारा पूरा देश जो है वो हमेशा खूबसूरत बना रहे। और इसी के साथ फिर लीजिए, सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।
0: जी जी धन्यवाद।

0: जी नमस्ते जी।
1: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
0: जी हम मुरादाबाद यूपी से बोल रहे हैं, रणबीर सिंह जेठालाल।
1: रणबीर सिंह जी कैसे हैं आप, सबसे पहले हमें ये बताइए।
0: बढ़िया मैम, आपके गाने सुनना है। मतलब मौसम भी बढ़िया है।
1: अरे वाह, तो इस अच्छे से मौसम में आप कौन सा गीत सुनना चाह रहे हैं?
0: चांदनी फिल्म का गीत है मैम, लगी या सावन की फिर वो जड़ी है।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो बारिश हो रही है वहाँ पे?
0: नहीं मैडम, बारिश नहीं हो रही, मगर मौसम सुहाना हो रहा है।
1: यानी बारिश की के आसार नजर आ रहे हैं क्यों अनुष्का?
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुरादाबाद से हैं सर, तो वहाँ पे क्या ऐसी खास चीजें हैं जो हम घूमने जा सकते हैं, या फिर जो हमारे युवा साथी और ये कार्यक्रम सुन रहे हैं तो उनको भी कुछ जानकारी मिले?
0: जी हमारे एक तो प्रेम बंडल लैंड है मुरादाबाद में।
2: जी जी,
0: वो बहुत फेमस है मैम। उसमें गर्मी में आपको जल क्रीड़ा करिए, वो करिए सब वो है। और एक साई मंदिर है हमारे बहुत बड़ा।
2: क्या बात है।
0: और एक काली का मंदिर है हमारे यहाँ, बहुत नामी मंदिर है काली का। और ये अब कांवर का महीना चल रहा है ना मैम,
2: तो
0: जितने कांवरे हैं पूरे मुरादाबाद में एक ही जगह चढ़ती है चौरासी घंटे मंदिर।
2: क्या अच्छा, बात है। तो इसके पीछे कोई रीजन है सर, कुछ आस्था का प्रतीक है ये?
0: हाँ बिल्कुल मैम, हम तो जब से बचपन में हो संभाला ना मैम, हमने जब से कांवरे ही चढ़ती हुई देखी है।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर।
0: हाँ, तो सर, और मैं आपको ये फोटो ना वीडियो बना के ना वहाँ की आपको भेजना, कोई बात तो नहीं है व्हाट्सएप नंबर पर? नंबर पर
2: बिल्कुल, आप हमें मेल,
1: आप आकाशवाणी के, हाँ आप आकाशवाणी के कॉन्टेक्ट नंबर पर बिल्कुल भेज सकते हैं।
0: जी जी हाँ।
2: तो मुझे तो आप ये बता सकते हैं सर कि वहाँ पहुँचा कैसे जा सकता है, मतलब क्या साधन हो सकते हैं?
0: दिल्ली से मिलती ट्रेन में हमारे मुरादाबाद को।
2: अच्छा,
0: बस से 4 घंटे का रास्ता है मैम दिल्ली से।
2: अच्छा
0: हाँ, तो दिल्ली से जब आप बरेली के साइड जाओगे, लखनऊ के साइड जाओगे ना, तो वो मुरादाबाद होके जाएगी गाड़ी।
2: तो कौन सा सीजन सबसे अच्छा रहता है वहाँ जाने के लिए, घूमने के लिए?
0: जी सीजन तो यही है, क्या नाम है इसका, या तो इससे पहले दिवाली से,
2: मॉनसून बोल रहे हैं,
1: या तो ठंड का मौसम या फिर बरसात का मौसम?
0: नहीं नहीं बरसात का नहीं मौसम, बरसात में तो कुछ जरा हो जाता है।
1: ठंड के मौसम की बात कर रहे हैं आप?
0: हाँ ठंड का मौसम बढ़िया होता है, वो तो सबके लिए बढ़िया है मैम, है कि नहीं है?
2: जी बिल्कुल, उस मौसम में तो आप कहीं भी घूमने निकल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होता।
0: जी जी जी
1: बिल्कुल। तो
0: सबसे बढ़िया तो आप इतने अच्छे गाने सुनवाती हैं मैम।
1: तो इतनी सारी जानकारियाँ दे दी हैं आपने हमें, तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको आपकी पसंद का गीत सुना दें।
0: हम एक शेर सुनाना चाहते हैं मैम।
1: जी
2: जी जी बिल्कुल,
0: सुनाती हैं?
1: हाँ बिल्कुल सुना दीजिए।
0: टूटे दिल को जोड़े कैसे ये बताते जाओ, टूटे दिल को जोड़े कैसे ये बताते जाओ, जिंदा रहने की हमको एक वजह दे जाओ।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए फिर सुनते हैं इसी के साथ आपकी पसंद का ये गीत।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: तो चलिए श्रोताओं, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉलर की ओर। तो हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो फ्रेंड्स।
2: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्ते सर, क्या नाम है आपका?
2: जिला सागर, तहसील बंडा, मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, चरण सिंह
0: जी। चरण सिंह जी, तो मुझे बताइए सबसे पहले कि आप आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
2: दिलासकाना का ओ कॉलेज की लड़कियों।
0: तो कोई खास वजह सर ये गीत सुनने की?
2: हाँ, अच्छा लगता है।
0: अच्छा, क्या बात है।
1: तो आपने ये फिल्म देखी थी जब ये रिलीज हुई थी थिएटर में?
2: हाँ, अच्छी लगी, पसंद आई थी।
1: अरे वाह, क्या बात है। तो आपके सागर में मौसम कैसा है इस वक्त?
2: हाँ, बादल छाए हुए तो रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है अब थोड़ी थोड़ी।
0: तो लगभग मतलब मॉनसून का, बारिश का जो मौसम है वो वहाँ शुरू हो चुका है ना?
2: हाँ, अब गिरेगा, बादल छाए हुए है।
0: तो चरण सिंह जी, मुझे आप ये बताइए कि आप करते क्या हैं, मतलब आपका क्या प्रोफेशन है?
2: हम किसान, खेती बाड़ी का काम करते हैं।
1: अच्छा। क्या बात है। तो अभी खेतों में कौन सी फसलें लहरा रही हैं?
2: अबे है, सोयाबीन है, मूंगफली है, उड़द है।
1: क्या बात है।
0: तो मुझे ये बताइए कि मतलब कौन से सीजन में कौन सी फसलें जो होती हैं वो अच्छे से ग्रो करती हैं, मतलब अभी जो मानसून का सीजन है इसमें क्या यही फसलें ग्रो करती हैं?
2: जी, अबे यही सीजन पे फसलें आती हैं, कौन सी?
0: अच्छा, तो अभी उनके लिए बारिश तो बहुत अच्छी होगी, मतलब काफी उनको बेनिफिट मिलेगा ग्रो होने में।
2: हाँ जी, जितनी बारिश होगी उतनी फायदा होती है फसल के लिए।
0: तो चलिए हम दुआ करते हैं कि इस साल खूब अच्छी बारिश हो, है ना काजल?
1: बिल्कुल, और आपकी फसलें भी खूब अच्छे से बड़ी हो और अच्छे से बिक भी जाए। और इसी के साथ फिर चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: धन्यवाद।

0: तो चलिए श्रोताओं, देखते हैं कि हमारे आज के अगले कॉलर कौन है। हेलो फ्रेंड्स
1: जी। हेलो,
0: नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल।
0: जी नरेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: अरविंद
0: अग्रवाल जी, सॉरी अरविंद जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम बढ़िया, आप भी अच्छी होंगी।
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं और आकाशवाणी के तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्या, कौन से गीत की फरमाइश है आज?
1: जी फिर आप अपने ही पसंद का सुना दीजिए, हमराज फिल्म का।
0: जी हमारी पसंद का गाना हमराज फिल्म से।
1: जी तुम अगर साथ देने का वादा करो।
0: अच्छा, वैसे तो आपने अपनी फरमाइश अगर बता ही दी तो हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया है, तो आपकी पसंद का ही गीत सुना देते हैं हम आज।
1: जी
0: ठीक है, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी धन्यवाद सुनने के लिए।

0: तो चलिए साथियों, इसी के साथ जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो फ्रेंड्स, हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार मैडम जी, मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश कानपुर के पास में पड़ता है, मेरा जिला फरुखाबाद जिला पड़ता है, वहाँ से बात कर रहा हूँ मैडम जी।
0: जी क्या बात है, तो बताइए इसी के साथ आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आकाशवाणी की तरफ से?
1: मौसम कैसा आपके तरफ इंदौर में? इंदौर तो माना हुआ शहर है, वो राष्ट्रीय शहर माना जाता है, अच्छा लगता है कि इंदौर सबसे फेमस, मध्य प्रदेश में इंदौर फेमस है सबसे ज्यादा।
0: जी सर, हम इंदौर के बारे में और भी ढेर सारी बातें करेंगे, पर पहले आप मुझे ये बताइए कि आप गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: मोहरा गाने बोले तो चीजें बड़ी मस्त मत की, और आपके इंदौर के बारे में बताइए, क्या बारिश वारिश होती, क्या होता, फिर मैं अपने फरुखाबाद जिला का बताएंगे।
0: जी इंदौर की तो सबसे खास बात तो यही है कि वो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, मतलब सबसे साफ शहरों में से एक है, और इसके लिए नो डाउट हमारे जो सफाई मित्र हैं वो भी दिन रात काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसी के साथ इंदौर जो है हमारा वो खाने पीने में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसा कि आप जानते ही होंगे।
1: हाँ वो इंदौर बहुत ज़्यादा फेमस है। चलो अब जैसे मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ कि मेरे इधर तो बारिश हो रही है, अभी धान वानों की फसल लगा दी है, तो अभी तो बारिश के मौसम में सुबह सुबह नाश्ता में तो जानती होगी मैडम जी, कचौड़ी हो जाए, पकौड़ी हो जाए, तो चाय नाश्ता में तो बहुत अच्छा लगता है। कि और बचपन में सावन के मेले, सावन के दिन में तो ऐसे झूला उला पड़े गया मेरे गांव में, तो बहुत अच्छा लगता है।
0: सावन का जो मजा है वो गांवों में तो बहुत अलग ही होता था, मतलब जो एक मेले लगते हैं, और
1: जाए तो नई पीढ़ी है लेकिन इतना मजा नहीं जैसे बचपन में। मैं
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: के पेड़ पे डाल लेते थे, झूला झूलते थे, मेरे दोस्त आते थे तो बहुत अच्छा लगता था,
0: झूले और अच्छी अच्छी खाने की चीजें, काफी सारी चीजें जो है वो बहुत फेमस होती हैं, है ना।
1: कबड्डी वगैरह टिक्का मिच्ची बारिश के और द्वारे द्वारे पे लौटते थे तो बहुत अच्छा लगता था, आपके जो भोरियां वगैरह जो बनाते थे तो बहुत अच्छा लगता था खाने में, और बचपन में और गेल गिंडी इंडा बहुत खेले थे मैडम जी। और आपने बचपन में जैसे आपने भी शरारत की होगी, स्कूलों में जाती होगी, किताब चुरा ली होगी, पढ़ दी होगी, तो बहुत शरारत बचपन में तो ऐसी शरारत बहुत की है मैंने।
2: क्या बात है, लगता है आपकी सावन की आपके बचपन से ये सब जो यादें हैं ये बहुत ज़्यादा गहराई में बसी हुई हैं आपके मन में, ये बहुत ही सुंदर बात है, और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।
1: अब जैसे 15 अगस्त आ रही है, तो 15 अगस्त पे हम तो कहना चाहता हूँ नया झंडा खरीदें, नया झंडा फहराएं, लगाएं और स्कूलों में लगाएं, बच्चों के साथ जाइए स्कूलों में, उनके साथ जाइए, तो 15 अगस्त बढ़िया।
2: तो इसी के साथ आपको और आप सभी को, हम सभी को एडवांस में ही स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: आपको 15 अगस्त की ढेर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और रक्षाबंधन की ढेर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।
2: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जैसे कांवड़ यात्रा जाते हैं तो उनको भी ढेर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि कांवड़ यात्रा जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मेला से लग जाता है तो बहुत अच्छा लगता है इस बारिश के मौसम में। तो
2: जी हाँ, अब आपका ये गीत भी हमें बहुत अच्छा लगेगा, ये सुनते हैं आपका गीत।
1: जी धन्यवाद।

0: श्रोताओं, ये था आज का हमारा युवाणी कार्यक्रम। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आया होगा,
1: और जिनकी हमसे आज बात हुई है हमें उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जिनकी हमसे आज बात नहीं हो पाई है वो निराश ना हो क्योंकि अगली बार फिर मौका मिलेगा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए काजल
0: और अनुष्का को।
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए आपको सुनवाते हैं सिर्फ तुम फिल्म का गीत। स्वर हैं उदित नारायण के, बोल हैं समीर के और धुन है नदीम श्रवण की।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से। स्वर हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू के, रचना है जावेद अख्तर की और संगीत है आर डी बर्मन का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
1: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं विकसित होता भारत।
2: बढ़ते कदम, बदलता भारत, विकसित होता भारत।

0: बढ़ते कदम बदलता भारत, विकसित होता भारत।
1: नमस्कार श्रोताओं, विकसित होता भारत के इस अंक के साथ हाजिर हूँ मैं नीलम चौरे। श्रोताओं, भारत आज केवल विकास की ओर नहीं बढ़ रहा बल्कि एक विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत 2047 का विजन, जिसका उद्देश्य ऐसा भारत जो

आर्थिक रूप से समृद्ध, सामाजिक रूप से मजबूत और तकनीकी रूप से उन्नत ऐसा भारत जहां प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, नेतृत्व क्षमता और सुरक्षित वातावरण इस विजन के प्रमुख स्तंभ है। क्योंकि कहते हैं श्रोताओं, किसी भी राष्ट्र के विकास की सबसे मजबूत नींव उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। यदि शिक्षा सशक्त है तो समाज भी सशक्त, और यदि समाज सशक्त तो राष्ट्र का विकास तो यकीनन सुनिश्चित है कि वर्ष 2047 भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र, नवाचार से परिपूर्ण, ज्ञान और कौशल से भारत अपनी समृद्ध पहचान का, अपनी उपलब्धियों का परचम लहराएगा।

0: ऐसे लगा हम खेल ही नहीं, पहले ही कंधे घेर दोगे फिर कैसे लड़ो।
1: जब तू इन स्विंगर डालता है तो बैट्समैन को टेलीग्राम क्यों भेज रहा है कि तू इन स्विंगर डालता है? ग्रिप छुपा।

0: श्रोताओं, शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करता भारत आज तेजी से बदल रहा है। इसी के साथ बदल रही है हमारी शिक्षा प्रणाली, नई शिक्षा नीति। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर दाविश जैन, चेयरमैन एंड चांसलर इंदौर में पदस्थ हैं। आइए जानते हैं उनसे 2047 में शिक्षा की उपलब्धियां क्या होंगी, क्या क्या बदलाव होंगे जो विद्यार्थियों के भविष्य की नींव होगा। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम विकसित होता भारत में।
1: नमस्कार
0: सर, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में शिक्षा नीति को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है।
1: नमस्कार, आज भारत केवल बदल नहीं रहा बल्कि एक युग की ओर बढ़ रहा है। विकसित भारत 2047 का सपना केवल आर्थिक प्रगति का नहीं बल्कि यह एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प है जो ज्ञान, नवाचार, संस्कार और आत्मनिर्भरता के आधार पर विश्व का नेतृत्व करे, और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति है शिक्षा। लंबे समय तक हमारी शिक्षा व्यवस्था डिग्री और अंकों पर सीमित रही।

0: लेकिन आज समय बदल चुका है। अब दुनिया केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि कौशल, रचनात्मकता, तकनीक और नेतृत्व क्षमता को महत्व देती है। नई शिक्षा नीति इसी सोच को केंद्र में रखकर तैयार की गई है। आज का विद्यार्थी केवल नौकरी पाने वाला युवा नहीं रहना चाहता, बल्कि वह स्टार्टअप बनाना चाहता है, नवाचार करना चाहता है और समाज की समस्याओं का समाधान खोजने वाला नागरिक बनना चाहता है। इसीलिए अब शिक्षा में कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और वोकेशनल स्किल्स को विशेष महत्व दिया जा रहा है। मुझे सबसे अधिक खुशी इस बात की है कि आज भारत का ग्रामीण विद्यार्थी भी डिजिटल माध्यम से विश्व स्तरीय शिक्षा तक पहुंचना रहा है। एक छोटा सा मोबाइल फोन गांव के बच्चे को भी बड़े सपने देखने की शक्ति दे रहा है। यह शिक्षा का लोकतंत्रीकरण का नया दौर है। केवल तकनीक पर्याप्त नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य अच्छे प्रोफेशनल्स बनाना ही नहीं बल्कि अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक बनाना भी है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो विद्यार्थियों में संवेदनशीलता, नैतिकता, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम का भाव विकसित करे। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आने वाले समय डिग्री आधारित प्रतिस्पर्धा का नहीं बल्कि दक्षता आधारित उत्कृष्टता का होगा। भविष्य उन्हीं युवाओं का है जो सीखना नहीं छोड़ते, जो बदलाव को स्वीकार करते हैं और जो अपने सपनों को राष्ट्र के सपनों से जोड़ते हैं। यदि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें केवल स्मार्ट क्लासरूम नहीं बल्कि स्मार्ट सोच वाले विद्यार्थी तैयार करना होंगे। यही नए भारत की असली पहचान होगी।
1: बिल्कुल सही कहा सर आपने। 2047 का भारत ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था की कल्पना करता है जो शिक्षा को देश के अंतिम छोर तक पहुंचा सके। यही विकसित भारत का संकल्प है। सर, 2047 की नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के भविष्य को किस प्रकार बदल सकती है?
0: नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं बल्कि जीवन में सफल होने के लिए तैयार कर रही है। अब शिक्षा का केंद्र केवल अंक नहीं बल्कि कौशल, रचनात्मकता और नवाचार है। आने वाले समय में विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे जो नई तकनीकों को अपनाएंगे, समस्याओं का समाधान खोजेंगे और आत्मनिर्भर बनने की सोच रखेंगे।
1: सर, आपसे जानेंगे कि आपके अनुसार कौशल आधारित शिक्षा और AI शिक्षा को स्कूल स्तर पर लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
0: सबसे बड़ी चुनौती तकनीकी संसाधनों और प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता है। AI और डिजिटल शिक्षा केवल मशीनों से नहीं चलेगी, उसके लिए शिक्षकों को लगातार अपडेट होना पड़ेगा। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट और डिजिटल सुविधाओं को मजबूत करना बहुत आवश्यक है।
1: क्या आपको लगता है कि डिजिटल शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से लाभदायक है?
0: निश्चित रूप से। आज केवल गांव का विद्यार्थी भी मोबाइल के माध्यम से देश और दुनिया के श्रेष्ठ शिक्षकों से सीख सकता है। मैंने स्वयं देखा है, ग्रामीण प्रतिभाओं में अद्भुत क्षमता होती है। यदि उन्हें सही अवसर और डिजिटल संसाधन मिल जाएं, तो वे किसी से पीछे नहीं हैं।
1: नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद शिक्षा पद्धति में कौन कौन से बड़े बदलाव देखने को मिले हैं?
0: अब शिक्षा रटने की प्रक्रिया नहीं रही। प्रोजेक्ट आधारित अध्ययन, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंटर्नशिप, मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा और टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षण को बढ़ावा मिला है। विद्यार्थियों को अब क्या याद है से अधिक क्या समझा और क्या कर सकते हैं के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। आज उद्योगों की सबसे बड़ी मांग केवल डिग्री नहीं बल्कि दक्षता है। इसीलिए शिक्षा में कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप,

0: टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे जीवन कौशलों पर जोर दिया जा रहा है। विद्यार्थियों को इंडस्ट्री एक्सपोजर और वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ना समय की आवश्यकता है।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में शिक्षकों की क्या भूमिका होगी?
0: शिक्षक केवल पाठ पढ़ाने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के शिल्पकार होते हैं। एक प्रेरणादायी शिक्षक हजारों विद्यार्थियों का भविष्य बदल सकता है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब शिक्षक विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नैतिकता और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करेंगे। स्कूलों में तकनीकी शिक्षा के साथ साथ रिसर्च, इनोवेशन, वित्तीय साक्षरता, मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रयोग, संवाद और अनुभव से सीखने का अवसर देना चाहिए।
1: सर, अब एक बात और कि आपके अनुसार विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु स्कूलों में कौन-कौन से सुधार होने चाहिए?
0: यह अत्यंत प्रभावी कदम है। कोडिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बच्चों में तार्किक सोच और समस्या समाधान की दक्षता विकसित करती है, जबकि वोकेशनल एजुकेशन उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। छोटी उम्र में कौशल आधारित शिक्षा बच्चों में आत्मविश्वास और रचनात्मकता दोनों बढ़ाती है।
1: क्या नई शिक्षा पद्धति विद्यार्थियों के मानसिक दबाव को कम करने में सहायक होगी?
0: हाँ, नई शिक्षा नीति का एक बड़ा उद्देश्य विद्यार्थियों को परीक्षा के अत्यधिक दबाव से मुक्त करना है। अब रुचि आधारित विषय चयन, गतिविधि आधारित शिक्षण और निरंतर मूल्यांकन पर जोर दिया जा रहा है। इससे विद्यार्थी डर के बजाय आनंद के साथ सीख सकेंगे।
1: आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर, ताकि वे नई शिक्षा नीति और सुधारों का सही लाभ उठा सकें?
0: मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि वे केवल अंक प्राप्त करने की दौड़ तक सीमित ना रहें। नई चीजें सीखें, तकनीक को अपनाएं, अपने कौशल विकसित करें और बड़े सपने देखने का साहस रखें। याद रखिए, भविष्य उन्हीं का होता है जो सीखना कभी बंद नहीं करते। भारत का भविष्य आपके हाथों में है, इसीलिए स्वयं को केवल सफल नहीं बल्कि उपयोगी और जिम्मेदार नागरिक बनाइए। धन्यवाद।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और विषय से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। इसके लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। वाकई शिक्षा वह प्रकाश है जो सपनों को साकार करने का अवसर देती है, लेकिन कई बार आर्थिक परिस्थितियां प्रतिभा के मार्ग में बाधा बन जाती हैं। श्रोताओं, चूंकि बात हम कर रहे हैं शिक्षा की, तो शिक्षा वाकई वह प्रकाश है जो सपनों को साकार करने का मार्ग दिखाता है, अवसर देता है, लेकिन कई बार आर्थिक परिस्थितियां प्रतिभा के मार्ग में बाधा बन जाती है। ऐसे में आवश्यकता होती है ऐसे प्रयासों की जो योग्य और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। इसी उद्देश्य को साकार करती है प्रतिभा किरण योजना। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्थिक सहायता देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसका उद्देश्य

यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिभा किसी भी परिस्थिति में संसाधनों के अभाव के कारण पीछे न रह जाए। श्रोताओं, प्रतिभा किरण योजना मध्य प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जाने वाली आर्थिक सहायता योजना है, जो शहरी क्षेत्रों की BPL धारकों को वित्तीय मदद देती है। समान स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ₹5,000 प्रतिवर्ष, ₹500 प्रतिमाह 10 महीने के लिए। श्रोताओं, चिकित्सा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए ₹7,500 प्रतिवर्ष, 10 महीने के लिए 750 प्रतिमाह दिए जाते हैं। इसके लिए जरूरी पात्रता है श्रोताओं, छात्र मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए, कक्षा 12वीं की परीक्षा 60% अंकों से उत्तीर्ण हो, छात्रा किसी मान्यता प्राप्त शासकीय या अशासकीय महाविद्यालय में स्नातक कोर्स अध्ययनरत हो। इसमें आपके लिए जरूरी दस्तावेज है 12वीं कक्षा की अंक सूची, BPL कार्ड, समग्र ID, शहरी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी और आय प्रमाण पत्र। आवेदन आप ऑनलाइन मध्य प्रदेश स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं। श्रोताओं, और अधिक जानकारी के लिए आप इंडिया स्कॉलरशिप इन प्रतिभा किरण योजना गाइड पर उपलब्ध है, तो जुड़िए और जोड़िए इस योजना से, ताकि बेटियों का भविष्य, विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित रहे।

0: श्रोताओं, अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि विकसित होता भारत का सपना तभी साकार होगा जब हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसे विद्यार्थियों नागरिकों को तैयार करेगी जो आत्मनिर्भर, संवेदनशील, अनुशासन प्रिय और रचनात्मक भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगा, जो अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहेंगे। इसलिए कहा भी गया श्रोताओं कि 2047 शिक्षा नीति विकसित भारत की आधारशिला है। आइए श्रोताओं, हम सब मिलकर एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प लें जहां शिक्षा हर सपने को उड़ान दे और हर नागरिक राष्ट्र के विकास का सहभागी बने। इसी उम्मीद और आशा के साथ विकसित होता भारत के हर सपने को साकार करने के संकल्प के साथ आपसे फिर नए अंक के साथ हाजिर होंगे। और अब बता दें, कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार और अब दे अनुमति नीलम चौरे को। नमस्कार।
1: बढ़ते कदम बदलता भारत, विकसित होता भारत। समर्थ हम, सशस्त्र हम, स्वच्छ भारतम, विकसित भारतम, विकसित भारतम।
2: बढ़ते कदम बदलता भारत, विकसित होता भारत।
3: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हमारी कलाकार हैं वैशाली भकोरे और साथी, तो आइए सुनते हैं उन्हीं के स्वर में ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है सुगम संगीत, और लीजिए पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत वैशाली बकोरे और उनके साथियों के ही स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत में वैशाली बकोरे और उनके साथियों को। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में आज हमारे कलाकार हैं तारा सिंह डोडवे और उनके साथी। तो आइए सुनते हैं उनके स्वर में ये मालवी लोकगीत।

श्रोताओं, अभी हम सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत और आज हमारे कलाकार हैं तारा सिंह डोडवे और उनके साथी, और सुनते हैं उन्हीं के स्वर में ये मालवी लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में उभर रहे नए क्षेत्र युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। गृहमंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा। इससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। सरकार ने प्रमुख उद्योगपतियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप्स के साथ कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी पर भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
2: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति में नाविकों की भूमिका सबसे प्रमुख है। मुंबई में नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर एक कार्यक्रम में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में से एक बनकर उभरा है। इस अवसर पर व्यापक डिजिटल समुद्री गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ई समुद्र का भी शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। यमन में हौसी विद्रोहियों के खिलाफ सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने कहा कि हौसी विद्रोहियों के बार बार हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अश्मिता चलेहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज और कल की सभा के मुख्य कार्यक्रम। पहले सुनिए आज की सभा के शेष कार्यक्रम। प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले होंगे 7:10 पर, 7:20 पर सुन सकेंगे चर्चा एवं लोकगीत, और 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा किसान वाणी। प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। 8:00 सुनिएगा दिल्ली से रिले होगा इस सप्ताह संसद में। सुर्खियों में 8:15 पर रिले होगा भोपाल से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम 8:30 पर होगा। चित्रगीत का कार्यक्रम 9:15 पर होगा। राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती दिल्ली से रिले होगा 9:30 पर। दिल्ली से ही रिले होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम 10:00। ये थे आज की सभा के शेष मुख्य कार्यक्रम। कल की सभा के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है। भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन सुनिएगा वंदना सुबह 6:05 पर। चिंतन सुनिएगा सुबह 6:30 पर। आकाशीय बिजली से बचाव अपना और खेती का जानेंगे खेती की बातें में सुबह 6:35 पर। वसुंधरा सुन सकेंगे 7:20 पर। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल सुनिएगा 7:35 पर। कल के सितारे बच्चे हमारे ये कार्यक्रम होगा 7:30 पर। कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा कविता प्रेरक प्रसंग और आज़ादी के मायने, इस पर चर्चा बच्चों से होगी। 9:00 लोक संगीत के कलाकार में होंगे भाई राम रनसौरे और उनके साथी। 9:15 पर सुगम संगीत में कलाकार होंगे राजेंद्र नागले। पर कार्यक्रम होगा शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में सुनिएगा गायन विदुषी जयश्री पाटनेकर का, राग होगा तोड़ी। जिले की चिट्ठी भोपाल से रिले होगा 10:00। MH हॉटलाइन ये फोन इन कार्यक्रम होगा 10:05 पर। फोन करें गीत सुने ये फोन इन कार्यक्रम होगा भोपाल से 11:00। 12:02 पर और दोपहर 2:00 सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम भोपाल से ही रिले होगा। भोपाल केंद्र से ही दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम होगा संग्रहालय से। महिला कार्यक्रम 1:00 भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा। 1:30 पर भोपाल केंद्र से सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम भोपाल से ही रिले होगा 1:45 पर। बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान सुनिएगा भोपाल केंद्र से रिले होगा 2:30 पर। शाम 5:00 युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा 5:45 पर और रात 8:45 पर। सुगम संगीत में कलाकार होंगे राजेंद्र नागले। कार्यक्रम होगा 6:30 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में कल कलाकार होंगे भाई राम अंसोरे और उनके साथी। खेती गृहस्थी कार्यक्रम होगा 7:20 पर। कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता घुटना एवं कूल्हा प्रत्यारोपण एवं रोबोटिक सर्जरी पर चर्चा करेंगे डॉक्टर कृष्णकांत नीमा। 8:00 भोपाल केंद्र से सुनिएगा सुर्खियों में डगर विकास की भोपाल से ही रिले होगा 8:15 पर। चित्रगीत ये कार्यक्रम सुन सकेंगे 9:15 पर। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन सुनिएगा रात 9:30 पर। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा दिल्ली से रिले होगी रात 10:00। ये थे कल की सभा के मुख्य कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला कार्यक्रम भोपाल से होगा, प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक में सांस्कृतिक संपदा को वापस लाने पर मंथन, अंतिम दिन भोपाल, घोषणा पत्र जारी। इंदौर में आज से 2 दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस शुरू। सीजेआई न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, न्याय तभी संभव जब हम पीड़ित के दुख दर्द को उसकी भाषा में समझें। और कल से प्रदेश में शुरू होगा हर घर तिरंगा अभियान, सभी जिला कलेक्टरों को संबंधित निर्देश जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें और स्वयं से यह प्रश्न करें कि उनके कार्यों से देश को किस प्रकार लाभ हो सकता है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। श्री मोदी ने ये बातें आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है। उन्होंने कहा कि स्नातक विद्यार्थियों द्वारा अगले 30 से 35 वर्षों में किए जाने वाले कार्य का देश के विकसित भारत के मार्ग पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा।
4: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
3: इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। भोपाल में चल रहा 4 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 आज संपन्न हो गया। अंतिम दिन ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई। इसके समापन अवसर पर भोपाल घोषणा पत्र जारी किया गया। साथ ही सभी देशों के कलाकारों को मौका देने, चोरी या गलत रास्ते से विदेशों में पहुंची सांस्कृतिक संपदाओं को वापस लाने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि घोषणा पत्र सदस्य देशों और साझेदार देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यवहारिक और दूरदर्शी ढांचा प्रदान करता है।
5: भोपाल घोषणा पत्र का मूल उद्देश्य जो है वो सांस्कृतिक सहयोग के संस्थागत ढांचे को विकसित करना था, उसको सुदृढ़ करना था और उसके साथ साथ में संस्कृति और विरासत हमारी हेरिटेज के समकालीन और पारंपरिक क्षेत्रों के एक विस्तृत श्रृंखला के लिए साझा रोडमैप हमने इस पर बनाया। इसके साथ ही बाजार तक पहुंचने के शिल्पकारों रचनाकारों के अवसरों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भोपाल डिक्लेरेशन में विस्तार से बातचीत की गई।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन में सहभागिता करने वाले ब्रिक्स देशों से आए प्रतिनिधियों एवं अन्य डेलीगेट्स का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक का आयोजन हमारे लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए स्वर्णिम अध्याय को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का सशक्त अवसर रहा। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि भारत विविधताओं का देश है, जहां क्षेत्र के हिसाब से समस्याएं बदलती है। इसलिए न्याय व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को पीड़ित की भाषा, व्यवहार और प्रकृति के अनुरूप ही संवाद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि संवाद सही तरीके से ना हो तो व्यक्ति अधिकारों से वंचित रह जाता है और व्यवस्था असफल मानी जाएगी। इसलिए सभी को समान अधिकार मिले यह सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत आज इंदौर में आयोजित 2 दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। यह दो दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस न्याय तक पहुंच बढ़ाने विषय पर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। उन्होंने न्यायिक सुधारों के बारे में बताया।
6: आज नालसा केवल एक वैधानिक संस्था नहीं बल्कि भारत की जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का सबसे मानवीय चेहरा बन चुकी है। इसने करोड़ों नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की है। लोक अदालत, लीगल एड क्लिनिक, विक्टिम कंपनसेशन, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, मीडिएशन तथा पैरा लीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से न्याय को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का नालसा ने सराहनीय कार्य किया है।
3: अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
3: प्रदेश में कल से 17 अगस्त तक जन भागीदारी के साथ हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा, तिरंगा मेला, प्रदर्शनी और साइकिल रैली जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। तिरंगा बाइक और ई बाइक रैली के साथ मानव श्रृंखला और तिरंगा एंथम भी आयोजित किया जाएगा। लोगों को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे भी अभियान से जोड़ा गया है। राज्य सरकार ने लोगों से उत्साह और देशभक्ति के साथ अभियान में शामिल होने की अपील की है। इस संबंध में सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खरगोन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभियान के अंतर्गत 13 अगस्त को बड़े पैमाने पर तिरंगा बाइक रैली तथा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। रीवा एयरपोर्ट से भोपाल और कोलकाता के लिए 72 सीटर नियमित विमान सेवा 9 अगस्त से शुरू होगी। इसके साथ ही रीवा सीधे प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ साथ पूर्वी भारत के प्रमुख महानगर कोलकाता से भी हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा। रीवा को विंध्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। लंबे समय तक इस क्षेत्र के लोगों को हवाई यात्रा के लिए प्रयागराज, जबलपुर, खजुराहो या वाराणसी जैसे शहरों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब रीवा में आधुनिक एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध होने के बाद यहां से देश के प्रमुख शहरों के लिए हवाई संपर्क लगातार विस्तार ले रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस की साइबर पुलिसिंग में किए जा रहे नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पहचान मिली है। भोपाल साइबर क्राइम में पदस्थ उप निरीक्षक भरत लाल प्रजापति को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 6 एवं 7 अगस्त को आयोजित फ्यूचर क्राइम समिट के दौरान फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन द्वारा FCRF एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्री प्रजापति को यह सम्मान इन्वेस्टिगेशन कैंप के विकास तथा साइबर पुलिसिंग एवं डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में तकनीक के प्रभावी उपयोग के लिए प्रदान किया गया है। अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून की बेरुखी के बीच आज पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन तीनों जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 इंच तक बारिश का अनुमान जताया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के 52 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा महापौर परिषद के 4 वर्ष पूर्ण होने पर कल आयोजित अमृत मीडिया संवाद में महापौर अमृता अमर यादव ने नगर निगम की विकास उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत झाबुआ जिले के पेटलावद में जन शिकायत निवारण शिविर आयोजित किया गया। दतिया जिले के भांडेर में जन विश्वास अभियान के तहत आयोजित शिविर में कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर छिंदवाड़ा जिले के सोसर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें उत्कृष्ट बुनकरों को सम्मानित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो पिछले 1 साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी सुनने वाले सभी किसान भाइयों को पूजा ठाकुर की राम राम। बारिश की बूंदें जब तपती धरती पर पड़ती है तो खेतों में हरियाली की नई उम्मीद जागती है। वर्षा ऋतु हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खरीफ की अनेक फसलों की खेती इसी मौसम में की जाती है, लेकिन अच्छी बारिश के साथ साथ अच्छी फसल के लिए ज़रूरी है सही फसल का चुनाव, स्वस्थ मिट्टी, संतुलित खाद और उर्वरक, उचित जल निकास तथा समय पर कीट रोग नियंत्रण। किसान भाइयों, वर्षा ऋतु में सामान्यतः सोयाबीन, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, बाजरा, धान और तिल जैसी खरीफ फसलें प्रमुख होती हैं। फसल के लिए अच्छी मिट्टी होना चाहिए। यदि संभव हो तो किसान भाई खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरम, पोटाश, सल्फर तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की स्थिति का पता चलता है। मिट्टी की जांच के आधार पर ही खाद और उर्वरक की मात्रा तय करना बेहतर रहता है। किसान भाइयों, ज़रूरत से ज़्यादा खाद डालना अच्छी खेती नहीं है, संतुलित खाद ही अच्छी खेती है। बारिश के मौसम में मिट्टी में नमी रहती है, इस समय खेत में जैविक पदार्थ बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट या उपलब्ध जैविक खाद का उपयोग मिट्टी की संरचना सुधारने में मदद करता है। फसल अवशेषों को बिना जरूरत जलाने के बजाय उनका उचित प्रबंधन करके खेत में जैविक पदार्थ बढ़ाया जा सकता है। जैविक पदार्थ मिट्टी में नमी बनाए रखने और मिट्टी को भुरभुरा बनाने में सहायक होते हैं। किसान भाइयों, वर्षा ऋतु में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खेत में पानी की ज़रूरत है, लेकिन पानी का लंबे समय तक खड़ा रहना नुकसानदायक हो सकता है। खासकर सोयाबीन, मक्का और दलहनी फसलों में जल भराव से जड़ों को नुकसान हो सकता है और फफूंदजनित रोग बढ़ सकते हैं, इसलिए खेत में उचित जल निकास की व्यवस्था रखें। जहां ज़रूरत हो वहां मेड़, नाली या उचित ढाल बनाकर अतिरिक्त पानी को खेत से बाहर निकालने की व्यवस्था करें। बारिश से पहले खेत की नालियों और जल निकास के रास्तों को साफ कर लेना बहुत उपयोगी होता है। किसान भाइयों, हमेशा प्रमाणित और अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित बीज का ही चुनाव करें। बुवाई से पहले बीज का उपचार करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। बीजोपचार से शुरुआती अवस्था में कई बीज एवं मृदाजनित रोगों से बचाव में मदद मिलती है। बीजोपचार के लिए कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या स्थानीय कृषि विशेषज्ञ द्वारा अनुशंसित विधि और मात्रा का ही पालन करना चाहिए। फसल उगने के बाद किसान भाई खेत केवल बारिश के भरोसे ना छोड़ें, नियमित रूप से खेत का निरीक्षण करें। देखें कि पौधे की बढ़वार कैसी हो रही है, कहीं पौधे पीले तो नहीं पड़ रहे हैं, पत्तियों पर धब्बे तो नहीं हैं, तना कमज़ोर तो नहीं है और कहीं कीटों का प्रकोप तो नहीं दिखाई दे रहा। शुरुआती अवस्था में समस्या की ही पहचान हो जाए तो नियंत्रण करना आसान हो जाता है और खर्च भी कम लगता है। तो ये भाई हम बात कर रहे थे मिट्टी की, खेत की, बीज की, खाद की और उर्वरक की। तो क्यों ना सुन लें फतेह सिंह परमार का ये लोकगीत।

0: किसान भाइयों, आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, जो भोपाल केंद्र से रिले होगा। प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: बुंदेली समाज।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम किसान
1: वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई

0: बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भैयाहरों को और बिन्ना हरों को खूब स्वागत आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम में। तो सबसे पहले स्वीकार करें रानी बहन की दो हाथ जोड़ के राम राम, जय सीताराम। भैयाहरों कैसे का हाल चाल है और हमारी बिन्ना हरे कैसी है? घर में सब अच्छे हैं? जेठे स्याने बाल गोपाल सब नौने हुई है भैयाहरों? जैया कुशल मंगल कामना स्वीकारत है। और भैयाहरों देखो सावन की रिमझिम फुहार बढ़ गई है और हमारी सोंधी सोंधी खुशबू की मिट्टी जो है वह महकन लगी है और हमारे किसान भैया हरे खूब मेहनत कर रहे हैं, अच्छी फसल की तैयारी कर रहे हैं ताकि उत्पादन खूब अच्छे हुए। और किसान कल्याण वर्ष 2026 भी मध्य प्रदेश सरकार को एक बड़ो अभियान है जैमे समृद्ध किसान और समृद्ध प्रदेश को आगे बढ़ाओ जा रहा है। किसान पूरे समाज को पेट भरत है और उनको जीवन बेहतर बने जैया सरकार को कर्तव्य है। यही पे सोच पे 2026 को कृषि कल्याण वर्ष मनाए जावे को लक्ष्य रखो गौ है। किसान भैया हरो, मृदा हमारी माता है, जब धरती ही अपनी गोद में अन्न उपजात है और सबको पेट भरत है। मनो मृदा को स्वास्थ्य अच्छो होए एके लाने अपन उन्नत कृषि तकनीकी यंत्रों को उपयोग कर सकत हैं। कैसे का करने हैं इन यंत्रों को उपयोग और कौन कौन से हैं, जैया विषय के लाने आज हम आपको सुनाते हैं भेंट वार्ता। विषय है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु उपयोगी उन्नत कृषि तकनीक। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जेड सिद्दीकी और इनसे भेंट करी है मनोज सक्सेना भैया ने। तो सुनते हैं जा भेंट वार्ता।
3: किसान भाइयों, खेती बिना मिट्टी के हो नहीं सकती और मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, जितनी तंदुरुस्त होगी, फसल उतनी ही अच्छी होगी, ये हम सभी जानते हैं। पर हाँ, मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, कितने पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन सी मिट्टी में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती हैं और उन्नत तरीके से कैसे खेती की जा सकती है, अगर ये बात हम किसी विशेषज्ञ से करें और उसके ज़ुबान से सुने तो वाकई हमें आत्मविश्वास हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं वह सही है या गलत है, या हमें क्या करना चाहिए। कुछ ऐसी ही बातचीत आज हम आपके लिए लेकर आए। हमारे साथ हैं श्री शेख जिया उद्दीन सिद्दीकी, जो कि रिटायर्ड यानी कि सेवानिवृत्त तकनीकी अधिकारी हैं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नवीबाग भोपाल से। आपका बहुत बहुत स्वागत।
4: नमस्कार किसान भाइयों।
3: और जैसा कि हमारा आज का विषय है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु उपयोग होने वाली उन्नत कृषि तकनीकें, इस पर सबसे पहले तो आपका क्या उद्बोधन है, क्या कहना चाहेंगे?
4: किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारी काया निरोगी रहती है, तो हम अपने सभी कार्य बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। और जब हमारे कार्य सभी समय पर पूर्ण होते हैं तो हम मतलब बीमारियों से भी दूर रहते हैं और हमारे परिवार में भी खुशी बनी रहती है। तो इसी तरह फसलों के उत्पादन के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी जो मिट्टी है वो स्वस्थ हो। मिट्टी स्वस्थ होने का मतलब मिट्टी में भरपूर उसमें मतलब जो भी पोषक तत्व वगैरह मतलब होना चाहिए मौजूद, और मिट्टी उस काबिल हो कि वो मतलब फसल का उत्पादन दे सके।
3: सर, स्वस्थ मिट्टी से आपका क्या तात्पर्य है?
4: मिट्टी स्वास्थ्य मतलब है मेरा कि मिट्टी में सबसे पहले मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, नरम होना चाहिए। अगर मिट्टी ठोस होगी तो मिट्टी के पौधों की जो जड़ें होती है वो जड़ें मतलब मिट्टी में फैल नहीं पाती और वो अपने पोषक तत्व तो ग्रहण नहीं कर पाते। दूसरी चीज, मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व तो होना चाहिए। मतलब उसमें अब आप कहेंगे कि हमने तो बहुत सारा खाद दिया था, कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर यह है कि आप सबसे पहले अपनी मिट्टी का परीकक्षण करवाएं, मिट्टी में किस किस चीज की कमी है, ये आप मतलब अपने जो कृषि अधिकारी हैं या कृषि जो कार्यकर्ता हैं आप उनके साथ बैठ के आप उनसे यह मालूम करिए कि आपकी मिट्टी में कमी किस चीज की है। तो आप अगर उसके अनुसार रासायनिक खाद डालें तो बेहतर होगा। यदि आपने मतलब कुछ भी मतलब खाद डाल दिया, आपने बहुत सारा यूरिया डाल दिया या बहुत सारा फास्फेट डाल दिया या बहुत सारी, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। वो खाद जितना ज्यादा से ज्यादा आप डालेंगे वो जाके और एसिड बनाएगा मिट्टी में, एसिड बनाएगा, और ये मिट्टी के में जो एसिड बन रहा है ये फसल को फायदा देने के बजाय और नुकसान कर जाएगा। तो मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है। दूसरी बात मैं जो बता रहा था आपको कि देखिए आजकल हम लोगों ने जैविक खाद का उपयोग तो बिल्कुल करना बंद ही कर दिया लगभग। अगर हम जैविक खाद का उपयोग नहीं करेंगे तो मिट्टी

0: वो मर जाएंगे, और वो मर जाएंगे तो उससे पौधों को काफी नुकसान होगा।
1: जैसे आपने अभी कहा कि मिट्टी भुरभुरी होना चाहिए,
0: जी
1: मिट्टी नर्म है और भुरभुरी है
0: जी,
1: तो उसका लाभ क्या हो जाएगा?
0: देखिए अगर मिट्टी मतलब भुरभुरी होती है तो क्या होता है कि जो पौधों की जड़ें होती है चार बार बखर चलाते हैं जमीन तैयार करने के, और एक बार अपन बोनी मशीन चलाते हैं, फिर ट्रैक्टर चल गया, कितने बार हो गया
1: जी?
0: पांच बार। फिर दूसरी फसल लेने के लिए हमने कई काम किया, फिर पांच बार मतलब ट्रैक्टर चलाया। एक ट्रैक्टर का औसत वजन बताइए कितना होता? 2000 किलो। पांच बार आपने ट्रैक्टर निकाला खेत में से, यानी मतलब 10 टन वजन निकाल दिया एक बार, दूसरी बार फिर चलाया फिर 10 टन वजन निकाल दिया, यानी आपने अपने खेत में साल भर में दो बार रोड रोलर चलवा लिया।
1: वाह सही बात है।
0: नहीं चलवाया?
1: बिल्कुल सच।
0: अगर आपने दो बार रोड रोलर, मैं आपसे कहूंगा आप अपने खेत में रोड रोलर चलवाओ तो क्या आप चलवाएंगे? नहीं चलवाएंगे। तो इसलिए जरूरी, अब होता क्या, जब हमने जमीन तैयार करना, हमने बखर से अपने 4 इंच ऊपर जमीन छीला और बो दिया, जो पौधे बन रहे हैं उनकी जड़ें कहाँ जा रही? जो जमीन की 4 इंच नीचे वाली जो परत है वो जड़ें तो उसमें जा रही हैं।
1: बिल्कुल सच बात।
0: तो ये जड़ें जब मतलब वो नीचे की परत को तो आपने ठोस बना दिया ट्रैक्टर चला चला के, ट्रैक्टर चला चला के, अब वो नीचे की परत जब ठोस बन गई तो उसमें जड़ें कैसे फैलेंगे? जब जड़ें नहीं फैलेंगी तो आपने कितना भी खाद डाला, वो खाद या जो भी केमिकल्स वगैरह डाले वो सब ऊपर ही ऊपर रह गए, वो खेत मतलब पौधों की जड़ों तक तो वो न्यूट्रिएंट्स उसको मिले ही नहीं। जो भी गोबर का खाद डाला वो भी सब ऊपर ही ऊपर रह गया, पौधों की जड़ों को तो मिला ही नहीं। क्या होता है, पौधे अपनी जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो पानी में मिल के तो न्यूट्रिएंट्स वो पूरे खींच के पौधे को वो बनाते हैं। तो अब क्या होता है कि जब ऐसी ये सिचुएशन आ गई है आपकी, क्या आपने अपनी मतलब नीचे की मिट्टी को बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर दिया है, तो उसमें क्या होता है कि जो पानी बैठने की जो क्षमता होती है ना वो भी कम हो जाती है।
1: बिल्कुल सच।
0: पानी जब बैठता ही नहीं है तो पानी रुकता भी नहीं है उसके अंदर। अब आप लोग आजकल महसूस कर रहे होंगे हर एक के खेत में आप देखिए वाटर लेवल नीचे चला जा रहा, नीचे चला जा रहा। उसकी वजह यह है कि हम बहुत ज़्यादा जो इम्प्लीमेंट चला रहे हैं, जितना भी बरसात का पानी आ रहा है वो ज़मीन में ऊपर रुक नहीं रहा है, वो बह के निकल जा रहा है। अगर मतलब मिट्टी भुरभुरी हो, नरम हो, तो वो पानी उसके अंदर होल्ड करेगा। तो जहाँ आप देखिए पहले 21 दिन में आप पानी देते थे गेहूं की फसल में, अब आप क्या हो रहा कि 15 दिन या 10 दिन बाद ही आपको मतलब पौधे पीले होते दिखने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि ज़मीन के अंदर पानी रुक नहीं पा रहा, और इसलिए कि इसलिए सब इसलिए हो रहा कि आपकी मिट्टी भुरभुरी नहीं है। अगर मिट्टी भुरभुरी होगी तो
1: मिट्टी में नमी ज़्यादा रहेगी और उर्वरता बढ़ेगी। बाकी सर जैसा हम बात कर रहे हैं कि मिट्टी को भुरभुरा होना चाहिए, जो आपका जो काम रहा है पिछला वो सब तकनीक से जुड़ा हुआ काम रहा है
0: जी,
1: मिट्टी को भुरभुरा बनाने की तकनीक क्या है, सही तकनीक क्या है?
0: देखिए मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए आपको दो तरह की तकनीक इस्तेमाल करना पड़ेगी। सबसे पहला ये कि आपको हर 3 साल में एक बार कंपलसरी बिल्कुल आपको 3 साल में एक बार गहरी जुताई मोड़ हल से करवाना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी, मैं बता रहा हूँ ना, आपने ट्रैक्टर चला चला के आपने मतलब नीचे की परत को जहाँ पे पौधों की जड़ें जाती है उनको उसको तो कॉम्पैक्ट कर दिया। अगर आप गहरी जुताई करा लेंगे तो मतलब मिट्टी थोड़ा नरम होगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ कि आप उसमें ऑर्गेनिक खाद, चाहे वो ग्रीन खाद हो या कंपोस्ट खाद हो या केचुआ खाद हो, इन खादों को आपको मिट्टी में मिलाना ही पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि अपनी फसल की ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले। तो ये मिट्टी को भुरभुरा बना, ये बात नहीं है कि खाली मतलब गोबर की खाद से या ये अपने हरी खाद से आपको पोषक तत्व मिलते, नहीं, ये मिट्टी को भुरभुरा भी बनाते हैं। आप देखिए मेरी एक बात मान के देखिए, आप एक काम करिए कि आप थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, थोड़ी सी काली में अपने खेत की काली मिट्टी निकाल के लाइए और उसका एक लड्डू बना लीजिए जब वो मिट्टी गीली हो, और आप उस लड्डू को रख दीजिए, जब वो सूख जाए तो आप उसको जोर

0: किसान भैया हरो, जो किसान होत है वो अपने आप में एक बहुत बड़ो वैज्ञानिक होत है। ओके अपने अनुभव खेती बाड़ी में ओके लाने भी काम आते हैं और सबके लाने भी काम आते हैं। तो चलो सुनत है एक प्रगतिशील किसान के विचार जैविक खेती के लाभ के बारे में। सुनत है डॉक्टर राधेश्याम कुंभकार, जो कि प्रगतिशील किसान है, उनकी बात जैविक खेती के लाभ का है।
1: किसान भाइयों, आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे किसान से जो जैविक खेती करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उनका उत्पादन बहुत अच्छा हो और साथ में पर्यावरण का भी संरक्षण हो। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक सफल किसान है जो जैविक खेती करते हैं, डॉक्टर राधेश्याम कुंभकार भोपाल से हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार जी। कहेंगे तो मेरे पास तो अलग

0: अलग जगह पे करीबन 40 से 50 एकड़ खेती है, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ जहाँ तक पहुँच सकता हूँ वहाँ पर 11 एकड़ खेती का कार्य करते हैं। जैविक खेती का मतलब होता है बिना जहर वाली खेती। आज के वर्तमान में अलग अलग प्रकार के लोग कीटनाशक और अलग अलग चीज़ों में फ़ायदा दिलाने के लिए या उनको गुमराह करने के लिए कई प्रकार की कीटनाशक ऐसी दवाएं आ चुकी हैं जो खेती को तो नुकसान पहुंचाती पहुंचाती है, साथ में ज़मीन को भी नुकसान पहुंचाती है।
1: तो किस तरह से जैविक खेती आप करते हैं, थोड़ा सा बताएं।
0: सिर्फ गोबर, गोमूत्र, जीवाणु और प्राकृतिक के इस्तेमाल से जैविक खेती की जा सकती है। जैसा कि खासकर सोयाबीन, दलहन व जैविक का बहुत स्कोप होता है। इसमें आप जब भी फसल बोएं तो आपको सबसे पहले गोबर का सड़ा कर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे जो भी जैविक खेती से भूसा निकलता है या अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती है उसको हम ज़मीन में गड्ढा खोद कर उसको सड़ाया जा सकता है, और सड़ाया जा सकने के बाद में उसको निकाला जाता है और फिर उस खेती के ऊपर छिड़काव किया जाता है और उस पर डाला जाता है। जैविक खेती में हमें खेती को कैसे तैयार करना चाहिए? पिछले 3 साल से उस खेती में कोई भी रासायनिक खाद दवा नहीं पड़ी हो। दूसरा पॉइंट, मिट्टी की जांच कराएं, जैविक खाद डालकर मिट्टी में केचुए और जीवाणु बढ़ाएं।
1: तो अगर उर्वरक बनाना हो तो वो किस तरह से बनाए जा सकते हैं?
0: उसके अलग अलग मापदंड हैं। जैसे जब भी आप बाहर से कुछ भी चीज़ें नहीं खरीदना है तो जीवामृत कैसे बनाएं, तो मैं आपको उसकी विधि बताता हूँ। 200 लीटर पानी प्लस 10 kg गोबर, 10 लीटर गोमूत्र और 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन और मिट्टी 7 दिन सड़ाएं, मतलब उसको एक मिक्स करके उसको सड़ाना पड़ता है। उसके बाद कब डालें, बुआई के समय और हर 15 दिन में फसल पर छिड़काव। इसके बाद ये इसमें भी आपको कैसे बनाना है मैं विस्तार से बता देता हूँ एक बार। 100 kg गोबर, 100 किलो मतलब 100 किलो गोबर, 10 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, 1 किलो मिट्टी, 5 दिन में खाद बन जाएगा। मतलब इस चीज़ों को अगर आप डालते हैं एक साथ मिक्स करते हैं तो 5 दिन में तैयार हो जाएगा। बुआई से पहले खेती में बिखेरे, मतलब जब आप बुआई करते हैं तो उसके पहले 10 दिन पहले आपको उसको उसमें डालना है। इसके बाद बीजामृत, 20 लीटर पानी, 5 किलो गोबर, 5 लीटर गोमूत्र और 5 किलो चूना, मुट्ठी मिट्टी मतलब मुट्ठी में लेना है तो 5 मुट्ठी चूना हो जाता है। बीज को इसमें 15 मिनट डुबाए, इसके बाद वो चीज़ें आपकी तैयार हो जाती है। नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र, मतलब इसका एक जो हमारे प्राकृतिक के ऊपर जो भी चीज़ें होती है उससे संबंधित ये है। नीम पत्ती, गोमूत्र, लहसुन, मिर्च उबाल कर, ये चीज़ें जब आएगी ये चीज़ें उबाल कर कीड़े लगने पर 15 दिन से एक एक बार छिड़काव करें, मतलब उसमें कीड़े लगने से पहले हर 15 दिन में एक बार इसका छिड़काव करें। कीट नियंत्रण में फेरोमोन ट्रिप, कीड़ों को पकड़ने के लिए खेत में लाएं। दर्शनपन अर्क, 10 तरह की पत्तियां पीसकर स्प्रे करें। पक्षी बसेरा बनता है, तो इसी प्रकार से पक्षी बसेरा खेत में जब हम किसी प्रकार की टी टाइप का मतलब होता है एक लकड़ी गाड़ेंगे तो वो पक्षी उस लकड़ी पे आके बैठेगा, आकर चिड़िया कीड़े खाती है तो उससे भी कीट नियंत्रण होता है। फसल चक्र और सह फसल, हम जब भी किसी भी प्रकार की फसल खेती में उगाते हैं तो हमेशा इसका ध्यान रखें कि हर बार फसल को हम दूसरे रूप में बोएं। जैसे एक बार गेहूं बोया तो दूसरी बार चना बोएं, तीसरी बार मूंग बोएं, चौथी बार हम सोयाबीन बोएं। ऐसे हमेशा जब जब भी हम फसल को बदल कर बोते हैं तो उससे खेती में ताकत बनती
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे चर्चा की।
2: और अब किसान भैया हरो टाइम हो रहा है आप सबसे बेदा लेवे को, तो अपनी रानी बहन के देव अनुमति स्वीकार करें दो हाथ जोड़ के।

0: राम राम, जय सीताराम।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच
1: है? एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम किसान
1: वाणी। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये तीसरा सप्ताह था। इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग तथा अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि इस दौरान कुछ अहम विधेयकों को बिना चर्चा के या संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही, जिस कारण से कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया। मेघवाल ने मॉनसून सत्र के पहले दिन ही 20 जुलाई को सदन में यह विधेयक पेश किया था। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2:10 पर ही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।

उधर राज्यसभा में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर सभापति ने आपत्ति जताई। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ोतरी हुई है। मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा और नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। मंगलवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे शुरू होने पर पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखने को कहा। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। उधर राज्यसभा में भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियां आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की बैठक 12 बजे शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को और संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही और उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी पहले जैसी स्थिति ही रही। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग दोहरा रहे थे। हंगामा देखते हुए अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी।
कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों।

0: बनी रही।
1: विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने चर्चा और पारित करने के लिए बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। सदन ने हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक होते ही विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर करीब 2.5 घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदन में विपक्षी सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे और अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। विपक्ष के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एन के प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इसके बाद बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुए अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। सुबह 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा थमते न देख सभापति ने कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और उपसभापति हरिवंश ने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर बैठक दोबारा शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक

0: संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलू उठाए। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगे 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति पीएसी की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर इसे लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांग दोहराते हुए नारे लगाने लगे। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतनराम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में यह विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण लगातार 15वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल शुरू नहीं हो सके। राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति ने इसके बाद शून्यकाल शुरू कराना चाहा। विपक्षी सदस्यों के ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद सदन में हंगामा जारी रहने पर करीब 5 मिनट के भीतर ही बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: संसद में यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशित कुमार।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया और जिसमें लगभग 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उनकी डिग्रियां प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं का देश के लिए, खास करके विकसित भारत 2047 के लिए योगदान करने का आह्वान किया और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आमंत्रित हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश। कार्यक्रम में बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका।
4: जी धन्यवाद।
3: सुरेश जी, जैसा कि हमने सुना, प्रधानमंत्री ने युवाओं का जैसा आह्वान किया है आज, खास करके क्यूरियोसिटी और कंटिन्यूअस लर्निंग की बात की उन्होंने और साइंस और टेक्नोलॉजी पर काफी बल दिया। हालांकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा जाना जाता है और उन्होंने बहुत ही एक, जिसे कहते हैं, एक सार्वभौमिक रूप से युवाओं का आह्वान किया है 2047 के विकसित भारत में अपना योगदान करने के लिए। आप कैसे देखते हैं इसे?
4: जी बिल्कुल, देखिए मुझे तो याद आ गया, हम लोगों ने सुना है कि किसी जमाने में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, उनका एक अभिभाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये एक ऐसा अभिभाषण था जहां प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि देश आपके लिए क्या कर रहा है और साथ में जो है यह भी बताया कि आपको भी अपने देश को जो है केंद्र में रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री पहली बार नहीं है, चाहे वो एग्जाम की बात हो, चाहे वो पूरे देश भर में कहीं भी जाते हैं, युवाओं को और

0: महिलाओं को उन्होंने हमेशा केंद्र में रखकर ही काम किया है, और चाहे वो उनकी योजनाएं हों प्रधानमंत्री कौशल विकास से लेकर, स्टार्टअप से लेकर, स्टैंडअप इंडिया से लेकर, इतनी योजनाएं मुद्रा योजना से लेकर, किस तरीके से देश के युवा पीढ़ी के लिए व्यवस्थाएं की जा सकती है, उच्च शिक्षा में जितने IITs खोले गए, नए IIMs खोले गए, नए नए संस्थाएं खोली गई, तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के हमेशा जो है युवा पीढ़ी उनके जो है सबसे केंद्र बिंदु रहा है उनके सभी नीति निर्धारण में। और आज भी जब IIT में 3000 से ऊपर जब विद्यार्थियों को उन्होंने संबोधित किया और उनको जो IIT से जो निकले, यानी कि जो देश के बहुत ही हमारे एक तरह से बुद्धिजीवी वर्ग है, जो जिसमें देश के बेहतरीन इंजीनियर्स हैं, बेहतरीन जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको उन्होंने संबोधित किया, उनको प्रेरित करने का प्रयास किया, तो मैं समझता हूं कि ये उन्होंने आज अपनी मन की बात जो है उन विद्यार्थियों के साथ साझा किया जो देश के भविष्य हैं, जिनसे बहुत उम्मीद भी है और जिनको जो है प्रधानमंत्री जी ने उनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी एहसास दिलाया और सरकार उनके लिए क्या कर रही है अलग अलग योजनाओं के तहत, अलग अलग पहल के तहत, इसके बारे में भी उनको सूचित कराया। तो एक तरह से इस IIT ग्रेजुएशन के बहाने मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने देश के हर युवक को स्पर्श करने का प्रयास किया और बहुत ही प्रेरणादायी उद्बोधन था उनका, जहां उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही जो निश्चित ही हमारे युवा पीढ़ी को प्रेरित करेगी।
1: सुरेश जी, तो उभरते हुए शोध के अवसर जो हैं, वो जो IIT जैसे संस्थान और भी जो अन्य ऐसे संस्थान हैं देश में, वो काफी अवसर ऐसा प्रदान करते हैं, और इस दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को रिसर्च करने का अवसर दे रही है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी हुई है। रिसर्च सेक्टर में 1,00,000 करोड़ रुपए तक की फंडिंग की व्यवस्था की जा रही है। एकेडमिक रिसोर्सेज के एक्सेस को भी आसान बनाया गया है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आज दुनिया की प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल्स देश के छोटे से छोटे शहर में बिना किसी अतिरिक्त लागत के पहुंच रही है।
1: सुरेश जी, आपने सुना प्रधानमंत्री ने उभरते हुए जो शोध के अवसर हैं उस पर उन्होंने काफी बल दिया है, और खास करके भारतीय प्रौद्योगिकी के संस्थान जैसे संस्थाओं के विद्यार्थियों का उन्होंने जो आह्वान किया कि अगले आने वाले 2 से 3 दशक हैं ये देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, और किस तरह से वो इसे एक दिशा और दशा देते हैं उससे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि हमारा देश कैसे विकसित बनेगा 2047 में। कैसे देखते हैं इसे आप?
0: बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में भी, उन्होंने शोध को जो है बहुत महत्व दिया, और उन्होंने कहा कि अगर अन्य मुल्कों के विश्वविद्यालय अगर आगे हैं तो उसका एक बड़ा कारण उसका है कि उनका शोध पर जो जोर देना है। इसलिए जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बनी तब उसमें जो है उन्होंने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जो है कल्पना की थी, और आज भी उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि ये जो भारतीय युवा हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है शोध अनुसंधान। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप की बात कही। उन्होंने कहा कि जो रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम जो भारत सरकार का है उसके बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात कही, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत का जो शोध का जो इकोसिस्टम है, जो उस माहौल को जो है और उसमें जो है ज्यादा प्रतिबद्धता के साथ हमारे युवा जुड़े, उसको आगे बढ़ाएं। तो मैं समझता हूं कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि विश्व में अगर हमें अपना स्थान बनाना है, हमें अपने पेटेंट्स लाने हैं, हमारे अपने शोध के क्षेत्र में जो है विश्व स्तरीय हमारा जो है उपलब्धियां अगर हमको हासिल करना है, IPs लेने हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे युवा जो है शोध पर जो है जोर दें, और आज का उनका आह्वान बिल्कुल मैं समझता हूं कि समय के अनुकूल है और हमारे युवाओं के लिए एक प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
1: जी सुरेश जी, ऐसे कई विकासशील ऐसे क्षेत्र हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में किया, खास करके ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्पेस, ऐसे जो उभरते हुए जो क्षेत्र हैं उस पर उन्होंने युवाओं का खास आह्वान किया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में खास क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं।
2: आज आप हमारे ड्रोन सेक्टर को भी देखिए, आज इस सेक्टर में युवा नई नई संभावनाएं तैयार कर रहे हैं। कहीं ड्रोन से खेतों में काम दिया जा रहा है, ड्रोन दवाइयां पहुंचा रहा है, ड्रोन देश की रक्षा सुरक्षा में मदद कर रहा है। और आज कहीं कोई युवा कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ ड्रोन। साथ

0: क्यों भारत के स्टार्टअप रेवोल्यूशन को इसी पीढ़ी के आप जैसे युवाओं ने ही तराशा भी है, ताकत भी दी।
1: जी सुरेश जी, प्रधानमंत्री जी ने एक आत्मनिर्भरता की भी बात की, सेल्फ रिलायंस इन न्यू सेक्टर्स, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात थी, ड्रोन की बात है, स्पेस की बात है, और भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि हमारे युवा जो हैं काफी उनकी भागीदारी हो सकती है। कैसे देखते हैं इसे?
2: देखिए, जो प्रौद्योगिकी का जो क्रांतिकारी प्रगति आज हो रहा है और उसमें युवा भारतीयों के लिए बहुत सारे अवसर के दरवाजे खुल रहे हैं, चाहे आपने जैसे जिक्र किया स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कही, ड्रोन्स की बात कही, सेमीकंडक्टर्स की बात कही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही, डेटा सेंटर्स की बात कही, क्रिटिकल मिनरल्स की बात कही, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कही, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो आज ईवी व्हीकल्स को हम इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं उसकी बात कही, एनर्जी स्टोरेज की बात कही। और उन्होंने कहा कि आज हमारे पुराने, हम देखते हैं कि कई जगह जो है पुरानी नौकरियां, पुराने जो शैली की थी वो आज समाप्त हो रही है और नई नई चीजें उभर रही है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि पहले पहले सवाल खड़े करते थे कि क्या भारत कभी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आ सकते हैं क्या, और उन्होंने ये सूचना भी दी कि हमारे पहला सेमीकंडक्टर यूनिट में जो है हमने उत्पादन का कार्य शुरू कर लिया है। और उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही कि आपके हाथों से सब कुछ बनेगा, चिप से लेकर शिप्स तक। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने हर तरह के विधाओं में युवाओं की जो हमारी प्रतिभा है उसको उजागर करने की बात कही और उनको नए चुनौतियों के बारे में बोला, नए अवसर के बारे में बताया और कहा कि आपको इन क्षेत्रों में जो है सक्रिय रूप से आपको प्रतिभागिता आपको करनी है, उसमें भाग लेना है।
1: जी सुरेश जी, और खास करके प्रधानमंत्री जी ने आज इन क्षेत्रों के अलावा सेमीकंडक्टर की बात आपने भी की। अभी सेमीकंडक्टर एक ऐसा एक सेक्टर है जहां पर कि अभी तक कुछ वक्त पहले तक हम विदेशों पे निर्भर करते थे, विदेश के कुछ ऐसे देश हैं जहां से वो हम इंपोर्ट करते थे सेमीकंडक्टर, और आज के वक्त में अगर हम देखें तो भारत में भी इसका उत्पादन एक बड़े पैमाने पर हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र भी किया, आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने।
0: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा।
1: सुरेश जी, प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन किया जो कि एआई पावर्ड हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी के लिए एक एडवांस्ड, जिसे कह सकते हैं एक प्रोसीजर है, और आईआईटी दिल्ली जैसे संस्थाओं के साथ मिलकर इस चीज को आगे बढ़ाना, और खास करके आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस जो है वहां पर एआई और डेटा साइंस को बूस्ट देने के लिए, उसके रिसर्च को, शोध को बूस्ट देने के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम है। आप कैसे देखते हैं इसे?
2: बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था जब हमने पहली बार जब परम बनाया।
1: जी,
2: परम जो सुपर कंप्यूटर था वो भारत ने बनाया और पूरे विश्व को दिखा दिया था कि कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में हमारे कोई सानी नहीं है। और आज एक और कदम आगे बढ़ा के उसके बाद बहुत प्रौद्योगिकी में बदलाव आया और एआई बड़े पैमाने पर आया। और आपको याद होगा कि हमने कुछ ही समय पहले जो है भारत मंडपम में दिल्ली में जो है हमने एआई का समिट का भी आयोजन किया था, जहां विश्व के जो एआई के नेतृत्व है वो वहां जो है उनकी उपस्थिति हमने देखा। और उसी एआई को आज कटिंग एज टेक्नोलॉजी, हम इसको किस तरीके से एआई के क्षेत्र में हम वर्ल्ड लीडर, सॉफ्टवेयर में तो भारत ही है आज, चाहे वो सिलिकॉन वैली हो या बैंगलोर हो या साइबराबाद हो, आप देखेंगे कि हमारा विश्व में एक तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे भारतीयों ने खड़े किए हैं और भारतीयों का नेतृत्व है, भारतीय वहां कार्यरत है। और वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम किस तरीके से जो है न सिर्फ भारत की तरक्की के लिए, पूरे मानवता के लिए हम उसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, और उसमें मात्र मुनाफे को देखकर नहीं विश्व कल्याण को केंद्र में रखकर हम एआई का किस तरीके से सदुपयोग कर सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड जो है, इससे एआई को इस्तेमाल करते हुए ये सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी हमने जो है सोनीपत कैंपस में आईआईटी दिल्ली के, इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं निश्चित ही समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा कदम है एआई के क्षेत्र में भी और सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी।
1: जी जी जी, सुपर कंप्यूटिंग की बात की आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे बढ़ करके भी अब हम क्वांटम कंप्यूटिंग की ओर भी हम जा रहे हैं, और विश्व कल्याण के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही एक महत्व महत्वपूर्ण बिंदु पर बल दिया, जिसमें कि नेशनल इंटरेस्ट की बात की कि युवाओं को खास करके जो ऐसे युवा जो

0: आईआईटी जैसे संस्थाओं से बाहर निकल रहे हैं, वहां से पढ़ाई करके निकल रहे
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: उन्हें
1: जी
0: नेशनल इंटरेस्ट केंद्र बिंदु में रखना चाहिए ताकि आने वाले 30 से 35 से 40 वर्षों में भारत एक
1: जी
0: एक सुपर पावर के रूप में एक उभर करके ऊपर आए। आपका क्या कहना है इस बारे में?
1: बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे कहा कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो है उन्होंने याद दिलाया, क्योंकि अब हम 15 अगस्त भी जल्दी ही मनाने जा रहे हैं, तो उन्होंने युवाओं को याद दिलाया कि देखिए हमारे हमने गुलामी का दौर भी हमने देखा है और हमारा एक ही लक्ष्य उस वक्त होता था कि हमारा देश स्वाधीन हो, और उन्होंने बहुत संघर्ष किया उस वक्त के युवाओं ने, और उन्हीं के कुर्बानियों के वजह से, बलिदानों के वजह से हम जो है आज एक स्वतंत्र देश में हम लोग रह रहे हैं। लेकिन अब हमारी चुनौतियां अलग हैं, हमारी जिम्मेदारियां भी। तो उन्होंने कहा कि जो है आप अगले 25-30 वर्ष में जो भी करेंगे वो विकसित भारत, देखिए याद रखिए कि हमारा 2047 का जो है विकसित भारत का लक्ष्य है जो प्रधानमंत्री ने हम सबके सामने रखा है। तो उन्होंने युवाओं को कहा कि आप अपने आप से पूछिए कि मैं देश के लिए इस विकसित भारत बनने की दिशा में मैं क्या योगदान कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, ये विकसित भारत के जो मजबूत जो बुनियाद है उससे पता चलता है, और ये जो मजबूत बुनियाद विकसित भारत का है ये आपको बनाना है। तो ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी युवा पीढ़ी के कंधों में आपने रखा है कि ये जो विकसित भारत बनेगा उसका बुनियाद जो है हमारे आज के युवा तैयार करेंगे। ये जिम्मेदारी, ये दायित्व बोध प्रधानमंत्री जी ने जो है उनको दिया है।
0: जी जी जी सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस विषय पर आपने चर्चा की, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में कार्यक्रम सुर्खियों में मीडियम वेव DTH और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं आशिकी फिल्म का गीत। स्वर हैं कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल के, बोल हैं समीर के और संगीत है नदीम श्रवण का।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और कुमार शानू के स्वर में। बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत है जतिन ललित का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए फिल्म फूल और कांटे से। स्वर हैं अलका याग्निक और कुमार शानू के, रचना है रानी मलिक और समीर की, संगीत है नदीम श्रवण का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला कार्यक्रम दिल्ली से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
3: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
3: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका

0: और मैं साफ मानता हूं चीप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
0: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है जिसका उद्देश्य UPI की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच

0: राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
1: 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरा तवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
2: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी सम्पन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीम बैठका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरु मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़े एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त

0: की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
1: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। IMD ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गांवों में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए हैं और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकियन ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian President says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Flood threat again looms over Odisha with rising river levels. And in badminton, Ashmita Chaliha to face China's Che Han in women's singles final of Korea Masters tournament. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory, addressing the 57th convocation of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. Mr. Modi urged the students to keep national interests at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Vikasit Bharat.
3: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
2: Further elaborating on India's efforts in the semiconductor sector, Prime Minister Modi said production has begun at India's first semiconductor unit.
3: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और शाबिर कुमार के स्वर में सुनिए बेताब फिल्म का ये गीत। रचना है आनंद बख्शी की।

इस गीत के साथ ही चित्रगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका दिल्ली से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: संस्कृति केवल हमारी स्मृतियों में सुरक्षित अतीत का नाम नहीं, वो उन विचारों, मूल्यों, कलाओं और अनुभवों की एक निरंतर यात्रा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हुए हमारे वर्तमान को अर्थ देती है और भविष्य की दिशा तय करती है। भारत की सांस्कृतिक चेतना और समृद्ध ज्ञान परंपरा में स्वतंत्रता का विचार भी कुछ ऐसा ही है। केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता, ज्ञान की स्वतंत्रता, अपनी पहचान और अपनी परंपराओं को समझने की स्वतंत्रता। इसी विषय पर आज की पत्रिका के संपादकीय में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैचारिक धरोहर है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह किसी एक रूढ़ी, डॉग्मा या संकीर्ण विचारधारा से बंधी हुई नहीं है, बल्कि इसके मूल में स्वतंत्रता का एक ऐसा गहरा, व्यापक और बहुआयामी मूल्य निहित है जो मनुष्य को न केवल बाहरी बंधनों से मुक्त करता है, बल्कि उसे आंतरिक और आध्यात्मिक धरातल पर भी परम स्वतंत्र बनाता है। आधुनिक युग में जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारा ध्यान राजनीतिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की आज़ादी, नागरिक स्वतंत्रताओं और व्यक्तिगत स्वायत्तता की ओर ही अधिक जाता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भारतीय चिंतन में स्वतंत्रता केवल अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव अस्तित्व के चरम लक्ष्य और उसके लोक परलोक के कल्याण से भी जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता शब्द दो पदों से मिलकर बना है, स्व और तंत्र, जिसका अर्थ है अपने तंत्र या अपने नियम के अधीन होना। यहाँ स्व का अर्थ व्यक्ति की वह अंतर्निहित चेतना है जो समूचे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, जिसका लक्ष्य है वासनाओं, विकारों, अज्ञान और इंद्रियों की अधीनता से मुक्ति। इस स्वतंत्रता की सिद्धि तब होती है जब मनुष्य अपने विवेक और धर्म के अनुशासन में रहकर

आचरण करता है। इसीलिए भारतीय चिंतन धारा में स्वतंत्रता का लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति है, जिसे सभी आस्तिक दर्शनों में जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वीकारा गया है। स्वतंत्रता का यह बोध भारतीय ज्ञान परंपरा की पहचान है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जहां वेदों को परम प्रमाण मानने वाली आस्तिक परंपराएं जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन हैं, तो वहीं वेदों की सत्ता को खारिज करने वाली नास्तिक परंपराएं जैसे जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शन भी समानांतर रूप से हैं। विचार और अभिव्यक्ति की इसी स्वतंत्रता का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें उपनिषदों के संवादों में भी मिलता है, जहां गुरु और शिष्य के बीच अत्यंत लोकतांत्रिक और स्वतंत्र माहौल में संवाद मिलता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद् गीता में भी जब अर्जुन विषाद से घिर जाते हैं और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें जीवन, प्रकृति, कर्म और आत्मा का गहनतम ज्ञान देते हैं और पूरे 18 अध्यायों के बृहत उपदेश के बाद अंत में अर्जुन से कहते हैं, मैंने तुम्हें यह परम गोपनीय ज्ञान दिया है, अब तुम इस पर पूरी तरह से विचार करो, इसका विश्लेषण करो और फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। निर्णय लेने की यह स्वायत्तता और स्वतंत्रता ही भारतीय ज्ञान परंपरा का वास्तविक गुण है, जो भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में भी धर्म के माध्यम से प्रतिध्वनित होता है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि यहाँ धर्म का तात्पर्य किसी विशेष कर्मकांड या संप्रदाय से नहीं है, बल्कि उन सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों और नियमों से है जो समाज के विनियमन के लिए आवश्यक हैं। इसी धर्म का प्रभाव है कि भारतवर्ष में कभी भी राजा की सत्ता को निरंकुश और असीमित नहीं माना गया है। ऋग्वेद का संगच्छध्वम् संवदध्वम् समवो मनांसि जानताम का उद्घोष सामाजिक स्वतंत्रता और समता का एक ऐसा ही प्रमाण है जो सभी को अपने साथ चलने, साथ बोलने और सभी के मनों को समान रूप से समझने के भाव पर केंद्रित है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि सामूहिक चेतना के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परस्पर संवाद को कितना अनिवार्य माना गया है। इसी प्रकार भारत ही नहीं विश्व में समादृत रामचरितमानस के उत्तर कांड से एक उदाहरण द्रष्टव्य है, जहां राज्याभिषेक के बाद राम प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई जो अनीति कछु भाखो भाई तो मुहि बर जहु भय बिसराई, जिसका अर्थ है कि वही मेरा सच्चा सेवक है और वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। हे भाई, यदि मैं कभी कोई अनुचित या अनीति बात कह दूं, तो तुम सारा भय भुलाकर मुझे टोक देना। अपने शुद्ध विचार को निर्भीक भाव से रखना ही भारतीय चिंतन धारा का स्वतंत्रता चिंतन या स्वातंत्र्य बोध है, क्योंकि भारतीय मनीषा एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति की विश्वासी है। आज जब दुनिया में अपने विचार को ही एकमात्र सत्य मानकर दूसरों पर थोपने की हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है, तब भारतीय ज्ञान परंपरा का यह मूल्य हमें सह अस्तित्व, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक विमर्श की वास्तविक राह दिखाता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस स्वातंत्र्य बोध की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज का व्यक्ति राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, उसे मतदान का अधिकार है, बाजारवादी संस्कृति ने उसे अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदने की असीमित आजादी भी दी है, वह समाज, प्रकृति और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक बिखराव जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ स्वार्थ सिद्धि प्रमुख है, स्व का बोध या स्वातंत्र्य बोध का विचार यहाँ दूर दूर तक नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा इस एकांगी स्वतंत्रता के

0: और शाश्वत है। यह काल और भूगोल की सीमाओं से परे जाकर संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात करता है। विश्व को यह समझने की आवश्यकता है कि आज के आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों को यदि अधिक मानवीय, संवेदनशील, न्यायपूर्ण और टिकाऊ बनाना है तो उन्हें स्वतंत्रता की केवल बाहरी व कानूनी अवधारणाओं तक ही सीमित रहने के बजाय भारतीय चिंतन धारा के चेतना और कर्तव्य आधारित स्वतंत्रता मूल्य को आत्मसात करना होगा।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता के मूल्य, इसी विषय पर आज के संपादकीय में अभी आपने सुना दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक को। भारतीय ज्ञान परंपरा की यही विशेषता है कि वो हमें केवल उत्तर नहीं देती, वो प्रश्न करने का साहस भी देती है, और शायद यही किसी भी जीवंत संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। साहस अज्ञानता के विरुद्ध प्रश्न करने का हो या किसी अन्याय के विरुद्ध। हमारे देश में ऐसी प्रबुद्ध और साहसी आवाजों की कमी कभी नहीं रही।

0: ए मातरम।
1: आज जब हम भारत की आजादी की कहानी याद करते हैं तो हमारे सामने कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े आंदोलन और कुछ ऐतिहासिक घटनाएं उभरती हैं। लेकिन आजादी की ये कहानी सिर्फ उन्हीं नामों की नहीं थी, ये उन अनगिनत स्त्री पुरुषों की भी कहानी थी जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी ही एक आवाज को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज।
2: चौदह जनवरी 1902, दक्षिण सिक्किम के संगमू गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। लेपचा समुदाय के एक परिवार में जन्मी हेलेन उनके माता पिता की 7 संतानों में तीसरी थी। बाद में उनका परिवार करसियांग आ गया, वो पहाड़ी इलाका जहां चाय के बागान और शिक्षा के नए अवसर उनके जीवन को एक नई दिशा देने वाले थे। लेकिन हेलेन की राह आसान नहीं थी, कम उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। मगर पढ़ाई छूटने का अर्थ ये नहीं था कि सीखने और आगे बढ़ने का सिलसिला भी रुक गया। सन 1917, पहाड़ियों में चरखे और खादी का आंदोलन चल रहा था। कलकत्ता से आए एक वक्ता के भाषण ने युवा हेलेन के मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने तय कर लिया उनका जीवन अब देश की सेवा के लिए होगा। अगले ही वर्ष 1918 में वो कलकत्ता पहुंची, चरखा प्रशिक्षण केंद्र में सूत कातना सीखा। उनकी प्रतिभा और लगन ने उन्हें मुजफ्फरपुर बिहार में आयोजित खादी और चरखा प्रदर्शनी में कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी दिया। फिर आया वर्ष 1920, बिहार भयंकर बाढ़ की चपेट में था, हजारों लोग प्रभावित हुए थे। ऐसे समय में हेलेन लेपचा राहत कार्यों में जुट गई निस्वार्थ भाव से लगातार, और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। हेलेन की सेवा और समर्पण से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें साबरमती आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने उनके व्यक्तित्व और देशभक्ति को करीब से देखा। यही गांधी जी ने उन्हें नया नाम दिया, सावित्री देवी। लेकिन जिस आवाज में इतनी दृढ़ता हो, वो सत्ता को भला कैसे सुहाती? ब्रिटिश सरकार की निगाहें अब उन पर थी। उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। गिरफ्तारी से बचते हुए वो इलाहाबाद पहुंची और कुछ समय आनंद भवन में रही। वहां उनका संपर्क कांग्रेस के कई नेताओं से हुआ, लेकिन पहाड़ उन्हें पुकार रहे थे। वो वापस करसियांग लौटी और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में जुट गई। घर घर जाकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान, ब्रिटिश प्रशासन की पाबंदियां और उनके सामने एक दृढ़ निश्चय, वो पीछे नहीं हटी। 29 जनवरी 1922, हेलेन लेपचा गिरफ्तार कर ली गई

0: दार्जिलिंग सदर जेल में 3 महीने, फिर करसियांग में नजरबंदी। समय आगे बढ़ा, सन 1939 और 40। नेताजी सुभाष चंद्र बोस करसियांग में नजरबंद थे। हेलन लगातार उनके संपर्क में रही। कहा जाता है कि वो संदेश पत्रों के माध्यम से पहुंचाती थी।
1: मैं दिलीराम दुलाल, एक पत्रकार और इतिहास के विद्यार्थी।
2: कोलकाता में मोहम्मद अली पार्क में आयोजित सभा में हेलन लेप्चा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गई थी। उन्होंने झारिया कोयला क्षेत्र के 10,000 से अधिक मजदूरों का नेतृत्व करते हुए आदिवासी श्रमिकों को शोषण के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन भी किया था। उनको इसी आंदोलन में शामिल होने के कारण गिरफ्तार भी किया गया था। और बाद में जब उन्होंने दार्जिलिंग में अपने साथियों के साथ सदर जेल में 3 महीने तक, बाद में 3 वर्षों तक खरसांग में जब उनको नजरबंद रखा गया था, उस समय में भी उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में योगदान दिया था। जैसे कि 1939-40 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस खरसांग में नजरबंद थे, तब उन्हें उनके साहसिक पलायन में महत्वपूर्ण सहायता की थी। बताया जाता है कि पठान की भेष तैयार करने में हेलन लेप्चा ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया था। उनके योगदान के कारण सिक्किम सरकार ने हाल ही में सरकारी मेडिकल कॉलेज को उनके नाम पर रखने के लिए हेलन लेप्चा मेडिकल कॉलेज निर्णय लिया है।
3: मैं सोमनाथ पांडे, सिक्किम से। मैं एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हूँ। हेलन लेप्चा के खोज में हम लोग ने सक्रियता से काम किया। उनका सभी इष्टजन थे, उनका जो मित्रों था, उनका परिवारजन था, उनसे मिलके उनका जो पेपर्स वगैरह ताम्र पत्र सब हम लोग ने निकाल के अभी पूरा ऑडियो विजुअल्स पूरा इतिहास हम लोग ने समेट लिया है। सिक्किम में 1973 से पहले उस समय में भी सिक्किम के लोग भारत के आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में किस तरह से भाग लिया करते थे, इस प्रश्न में हम लोग पूछ करते हैं। इसी दौरान में सावित्री देवी जो हेलन लेप्चा है उनका संदर्भ में हम लोग ने काम किया है। वो विशेष करके मजदूरों को इकट्ठा करना, मजदूरों को स्वावलंबी कैसे बनाना, इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। सबसे पहले तो बीमारियों को देखा, दवाई औषधियां किया, उसके बाद में उन्होंने स्वावलंबी बनाने का काम किया। तब ये तब वो बड़ा स्वाभिमानी, वो एक तो निडर माता के रूप में परिचित है। उनका 3 नाम है। एक तो सबसे पहले नाम उनका हेलन लेप्चा था। तो बाद में जाके ये नाम थोड़ा सा अंग्रेज का जैसा लगा, अंग्रेजी स्कूल से ये शिक्षित हुई थी, तो अंग्रेज का जैसा नाम होने के बाद में महात्मा गांधी ने उनको सावित्री देवी नाम दे दिया। तब उनका गांव में जो खरसांग और सिक्किम में उनका नाम साइली दीदी करके परिचित था। साइली मतलब होता है नेपाली भाषा में थर्ड, तीसरा होता है। तब साइली करके थर्ड करके साइली दीदी करके ऐसा नाम उस प्रसिद्ध हुई। तो उनको ताम्र पत्र भी मिला उस समय में स्वाधीनता संग्राम की। लेकिन वो थोड़ा सा समाज में वो ओझल हो गई, क्योंकि हमारा ऐसा है कि जो आगे निकल गए उनका इतिहासकारों ने समेट दिया, लेकिन जो ट्राइबल तो उन्होंने विशेष करके दुर्गम क्षेत्र में ही काम किया, तो उनका नाम थोड़ा इतिहास में थोड़ा सा पीछे रह गया था। तो अभी बहुत अच्छा से उनका नाम आगे आ रहा है। सिक्किम में तो उनका नाम से मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। तो और उनका कई रास्ता का नाम हेलन लेप्चा का नाम से अभी बन रहा है।
0: वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने समाज सेवा का काम जारी रखा। 15 अगस्त 1972 को भारत सरकार ने उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें ताम्र पत्र प्रदान किया। 18 अगस्त 1980 को हेलन लेप्चा ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है।
4: हेलन लेप्चा, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज। अभी आपने ये लघु रूपक सुना। आलेख अंकुश रोनियार का था, वाचन स्वर प्रांजल।

स्वतंत्रता संग्राम केवल रणभूमि में लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, ये घरों में लड़ी गई, विद्यालयों में लड़ी गई, लेखन और पत्रकारिता में लड़ी गई, गीतों और कविताओं में लड़ी गई। और इस संघर्ष में भारतीय महिलाओं ने अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। किसी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, किसी ने जेल की यातनाएं सही, किसी ने भूमिगत रहकर क्रांतिकारियों की सहायता की, तो किसी ने अपने लेखन और विचारों से राष्ट्र की चेतना को जगाया। ऐसी ही कुछ साहसी महिलाओं की स्मृति को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं, स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी महिला सेनानियां। आलेख और स्वर है प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का।

0: जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले स्मरण होती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिस अदम्य साहस का परिचय दिया वह भारतीय इतिहास की अमर गाथा बन चुका है। अंग्रेजी सत्ता के सामने उनका यह संकल्प मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी आज भी राष्ट्रीय स्वाभिमान का उद्घोष प्रतीत होता है। इसी संघर्ष की एक और तेजस्वी कड़ी बेगम हजरत महल। अवध की इस वीरांगना ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और लखनऊ में विदेशी सत्ता को खुली चुनौती दी। स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने वाली एक सशक्त आवाज थी सरोजनी नायडू। अपनी वोजस्वी वाणी और राष्ट्रवादी विचारों के माध्यम से उन्होंने हजारों महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। वे मानती थी स्वतंत्र भारत का निर्माण तभी संभव है जब महिलाओं को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो।
1: आई बिलीव दैट आई मस्ट डिस्प्रूव द एज ओल्ड प्रोवर्ब दैट द वुमन हैज द लास्ट वर्ड एंड द लॉन्गेस्ट वर्ड। आई हैव द लास्ट वर्ड नो डाउट नॉट बिकॉज़ आई एम अ वुमन but because I'm acting today as a hostess of the Indian National Congress।
0: महात्मा गांधी के संघर्ष में एक मौन किंतु अत्यंत सशक्त शक्ति थी कस्तूरबा गांधी। उन्होंने सत्य अहिंसा और सेवा के आदर्शों को जीवन में उतारते हुए अनेक आंदोलनों में भाग लिया और जेल यात्राएं भी की। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हर बड़े परिवर्तन के पीछे त्याग धैर्य समर्पण की एक शांत धारा भी बहती है। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब अधिकांश राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए तब अरुणा आसफ अली ने ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर अंग्रेजी शासन को सीधी चुनौती दी। उनका साहस उस दौर के युवाओं के लिए प्रेरणा बना। स्वतंत्रता संग्राम की चेतना को जन जन तक पहुंचाने में साहित्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस क्षेत्र में सुभद्रा कुमारी चौहान का योगदान अविस्मरणीय है। वो केवल एक कवित्री ही नहीं बल्कि सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने जेल यात्रा की और राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी अमर कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी ने भारतीय जनमानस में देशभक्ति और स्वाभिमान की ऐसी लौ प्रज्वलित की जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। इसी आंदोलन के दौरान एक युवा महिला ने अपनी आवाज को स्वतंत्रता का हथियार बना लिया। यह थी उषा मेहता। उन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना कर पूरे देश में स्वतंत्रता का संदेश पहुंचाया। जब अंग्रेजी सरकार समाचारों और सूचनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी तब उनके साहसिक प्रयासों ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की।
2: दिस इज द कांग्रेस रेडियो कॉलिंग ऑन 42.34 मीटर। टुडे वी शैल रीड टू यू A stupid reasoning of the CNC।
0: सुचेता कृपलानी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में

0: महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल का परिचय देते हुए भूमिगत आंदोलनों को सशक्त बनाया। बाद में वे स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी और यह सिद्ध किया कि संघर्ष से निकला नेतृत्व राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। बंगाल की वीरांगना मातंगिनी हाजरा का बलिदान भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 73 वर्ष की आयु में भी वे आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। अंग्रेजों की गोलियां लगने के बाद भी उनके हाथों में तिरंगा नहीं छूटा और उनके मुख से वंदे मातरम का उद्घोष निरंतर निकलता रहा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तब कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व संभाला। उन्होंने महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर यह स्थापित किया कि राष्ट्र रक्षा और बलिदान के क्षेत्र में स्त्रियां किसी से कम नहीं हैं।
1: नेताजी हमसे 5 घंटे बात किया, हमारे देश का और दुनिया का आधा हिस्सा को कैसे नजरअंदाज करें, यानी महिलाओं को। अगर महिलाओं को भी देश का प्रेम है, उन लोगों को आजादी का जरूरत है, इसलिए आप महिलाओं को भी हम लेने के लिए तैयार है, उनका भी एक फौज बनाएंगे।

अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं। आलेख और स्वर था प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का। इन दीपशिखाओं ने अपने समय को तो रोशन किया ही, आज भी उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है कि परिवर्तन की शुरुआत अक्सर एक अकेले साहस भरे कदम से होती है। संस्कृति का संसार बहुत विस्तृत है। कभी वो करघे पर आकार लेता है, कभी किसी पुस्तक के पन्नों में, और कभी उन समुदायों की स्मृतियों में जीवित रहता है जिन्होंने प्रकृति और परंपरा के साथ सह अस्तित्व की अनूठी संस्कृति रची है। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भारतीय हथकरघा परंपरा और देश के बुनकरों के योगदान को सम्मान देने के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन की उस ऐतिहासिक भावना की स्मृति से भी जुड़ा है जब 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था।

किताबें हमारी स्मृति हैं और पुस्तकालय उस स्मृति का सार्वजनिक घर। हर वर्ष 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं बल्कि ज्ञान के संरक्षण और उसके प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। और डिजिटल युग में भी वो पढ़ने, शोध और विश्वसनीय ज्ञान तक पहुंचने की संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। भारत की आदिवासी परंपराएं अपनी भाषाओं, लोक कथाओं, संगीत, नृत्य, कला और प्रकृति केंद्रित जीवन दृष्टि से बेहद समृद्ध हैं। हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के आदिवासी समुदायों के अधिकारों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और उनके योगदान के लिए जागरूकता बढ़ाना है। करघे के धागों में बुनी हमारी हस्तशिल्प परंपरा, पुस्तकालयों में संरक्षित ज्ञान की दुनिया और आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ये तीनों मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक बेहद सुंदर और समृद्ध चित्र रचते हैं। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में भारत के सार्वजनिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। लोकमान्य बाल गंगाधर

तिलक, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, राम किंकर बैज, वीएस गायतोंडे, जहांगीर सभावाला, फिरोज शाह मेहता, प्रफुल्ल चंद्र रे, पंडित रविशंकर शुक्ल और अभी हाल ही में दिवंगत हुए पंडित जगन्नाथ बेहरा। इन विभूतियों का स्मरण उन विचारों, कर्मों और सृजनात्मक ऊर्जा को याद करना है जिनसे हमारा सांस्कृतिक वर्तमान निर्मित हुआ। इन महान विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री शहनाई की प्रारंभिक शिक्षा श्री रंगाचारी काकंडिकी से प्राप्त की। उसके बाद श्री चन्वीर बन्नूर के मार्गदर्शन में लगातार 9 वर्ष तक शहनाई वादन की उच्च शिक्षा प्राप्त की। श्री चन्वीर बन्नूर डॉक्टर पंडित पुटराज गवाई के प्रमुख शिष्य थे। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं, जैसे कि कलाश्री पुरस्कार, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार इत्यादि। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री देश विदेश के कई प्रमुख संगीत सम्मेलन में अपना शहनाई वादन प्रस्तुत कर चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे हैं।
1: This is Akashvani. In tonight's national program of music, we bring you a Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri. Shri Girimallappa Bhajantri started his initial training in Shahnai from Shri Rangachari Kakandiki. Later, for 9 years, he was under the able guidance of Shri Channavira Bannur, a prominent disciple of Pandit Puttaraja Gavayi of Gadag. Shri Girimallappa Bhajantri is a recipient of many awards like Kalashri Award, Karnataka Rajyotsava Award, etc. He has performed in many important music festivals of India and abroad. In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Shri Male Mallesh Hugar Desai Kallur.
0: Shri Girimallappa Bhajantri apne karyakram ka prarambh rag Rageshri se kar rahe hain. Isme do bandishe जपताल और द्रुत तिंताल में निबद्ध है। सुनिए राग रागेश्वरी।
1: श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री बिगिन्स हिज शहनाई रिसाइटल विद राग रागेश्वरी इन विच ही इज प्रेजेंटिंग टू कंपोजिशंस सेट टू जपताल एंड द्रुत तिंताल।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग रागेश्री। आइए अब सुनते हैं राग जोग।
1: That was राग रागेश्री। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री विल नाउ प्रेजेंट राग जोग।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग जोग। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे थे।
1: That was राग जोग। With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri, and he was accompanied on the tabla by Shri Male Malesh Hugar Desai Kallur.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was recorded earlier in the studios of Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और एनएफएसयू फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर

वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में तेज बारिश हुई, राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।